मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, आज सोमवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 44 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचार कुछ ही पलों में अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम आरंभ करते हैं समूह स्वर में मातृवंदना के साथ। देश हमारा प्राणो प्यारा, आओ बलि बलि जाएं, अमर रहे गणतंत्र हमारा, जन गण मन मिल गाएं।

आइए अब सुनते हैं शर्मा बंधुओं के स्वर में शिवजी की वंदना। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश आकाश वशम भजेहम।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: सुख की खोज सृष्टि के आदि से लेकर आद्य पर्यंत प्रत्येक प्राणी सुख की तलाश में प्रयत्नशील है, परंतु वास्तविकता यह है कि यदि सत्यता पूर्वक विचार किया जाए तो पूर्ण रूपेण कोई भी जीवधारी सुखी नहीं प्रतीत होता। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि नानक दुखिया सब संसार। हाँ, यह बात अवश्य है कि कभी कभी एक व्यक्ति की दृष्टि में दूसरा व्यक्ति सुखी प्रतीत होता है, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत ही होती है। अब विचारणीय विषय यह है कि ऐसा होता क्यों है। बात यह है कि सुख अथवा दुख का सीधा संबंध मन से होता है। मन ही सुख या दुख का अनुभव करता है। कोई व्यक्ति कितना ही भूखा या प्यासा क्यों न हो, परंतु यदि उसे कोई शुभ समाचार प्राप्त हो जाए तो वह खुशी के कारण झूम उठता है और उसकी समस्त भूख प्यास समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक सुस्वाद भोजन का आनंद ले रहा हो और तत्काल उसे किसी प्रकार की दुखद सूचना प्राप्त हो जाए तो वह सुस्वाद भोजन छोड़कर उठ जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में प्राणार्पण कर देने वाले शहीदों ने जंग आजादी में प्राणों को निछावर कर देने में ही सुख का अनुभव किया था। बड़े बड़े संतों, महात्माओं, ऋषियों, महर्षियों ने सांसारिक सुखों को त्याग कर तपस्या का कठोर जीवन व्यतीत करने में ही सुख की अनुभूति प्राप्त किया था। तात्पर्य यह है कि सुख अथवा दुख का सारा खेल मन का ही है। एक बात और भी गौरतलब है, पूर्ण रूपेण सुख या सच्चा सुख और स्थायी सुख हमें प्राप्त क्यों नहीं होता। इस कारण को समझने के वास्ते सृष्टि के तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्वों पर दृष्टिपात करना होगा। प्रथमतः हम प्रकृति तत्व पर विचार करें। नदी, पर्वत, जल, वायु, भूमि, रजत, स्वर्ण, धन, मकान और शरीर आदि इसी प्रकृति के विभिन्न रूप हैं। इस प्रकृति में अथवा इसके विभिन्न अंगों में मात्र एक ही गुण विद्यमान है, वह है सत्य। इसे हम असत्य नहीं कह सकते, परंतु इसमें न तो चेतना है और न ही आनंद है। मगर फिर भी हम इसी प्रकृति के अंदर आनंद की खोज करते रहते हैं, इसी वास्ते हमें स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। अब दूसरे तत्व जीवात्मा अथवा आत्मा के संबंध में गौर करने की आवश्यकता है। जीवात्मा में केवल दो गुण पाए जाते हैं, जीवात्मा सत्य है और साथ ही साथ वह चेतन भी है। उसे सुख और दुख की अनुभूति भी होती है। उसके अंदर अनेकानेक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रयत्न भी करता है। द्वेष की भावना भी होती है। वह ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ज्ञान अर्जन भी करता रहता है, परंतु उसके भीतर भी सुख का अभाव है, आनंद का अभाव है। यदि उसके अंदर आनंद होता तो वह आनंद की तलाश में घूमता ही क्यों। अब देखना यह है कि वह आनंद कहाँ छिपा है, जिसकी खोज में प्रत्येक प्राणी जीवन पर्यंत भटकता रहता है। इसे समझने के वास्ते हमें सृष्टि के तृतीय तत्व पर विचार करने की आवश्यकता है, और वह तत्व है ईश्वर। ईश्वर में तीनों गुण विद्यमान हैं, अर्थात वह सत्य तो है ही, साथ ही साथ चेतन भी है, और इसके अतिरिक्त वह पूर्ण रूप से आनंद से परिपूर्ण भी है। इसीलिए उसे सच्चिदानंद भी कहा जाता है, अर्थात सत्य, चित और आनंद। आनंद की प्राप्ति होना कदापि तब तक संभव नहीं हो सकता जब हम उसकी शरण में नहीं जाएंगे। शरण में जाने का तात्पर्य इतना ही है कि उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना के माध्यम से मानसिक तथा आध्यात्मिक शांति का संचय करते हुए हम उसके गुण, कर्म और स्वभाव का अनुसरण करें। अपने समस्त क्रियाकलापों को उसे समर्पित करते हुए क्रियान्वित करें। तभी और केवल तभी हम सच्चे सुख या स्थायी आनंद को प्राप्त करने में सर्वथा समर्थ हो सकते हैं, जब हम यह समझेंगे कि हमारा उद्देश्य जियो और जीने दो है।
0: ये था आज का चिंतन। आलेख और स्वर था परमात्मा प्रसाद शुक्ल का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर है अनुराधा पौडवाल का, संगीत सतीश भाटिया का है।

गरुड़ की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से काकभुशुंडी ने विस्तार से सतयुग, त्रेता और द्वापर में सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों की व्याख्या की। फिर अयोध्या के शूद्रकुल में कलयुग का अपना वो अनुभव सुनाया जब भीषण अकाल पड़ा था और जिससे त्रस्त होकर वो उज्जैन चले गए थे।

0: अभी श्री रामचरितमानस के गायन का प्रसारण किया गया। स्वर था अनुराधा पौडवाल का, संगीत सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कृषि सामयिकी बेड़ा खाड़ा चुगोट।
1: काश्तकार दादा दीदी मन पाक फर ले आम के बल बपू मिरे से, संगे संगे टोंड चो सुवाद तो मिरे से चे। असनी साग सब्जी बले आमचो खादी ने असन जी निसाय, जेचो नहलो आमी जीव नहीं रहुक सकूं। पाक फर आरु साग भाजी के आमी खाऊं से, एके तो जानास मांतर खूबे दिन ले एके कसन संगाऊ सकूं। एचो काजे गुट की उपाय आए और हुन उपाय आए साग भाजी के नहले पाक फर के सुखाउन भाती संगातोर। सुखा तो काजे कसन कसन सावधानी मन संगातोर आए एके मैं आजी सांगे से। सबले पहिल पाक फर नहाले साग के नंगत नीरो पानी ने धोन, उनके हिसाब दखून ऊपर चो छाली के उछला तोराय आरु काटून दे तोराय। और जसन कोनी पाक फर नहाले साग काटलो पाछे लहरा ने रलो ने करिया नहाले धमस्या होन जाय से, उनके काटून भाती खिंडिक महा लोन चो पानी ने संगाते जा तोराय। और जसन पाक फर के आमी सुखाऊ से तो उनके सुखा तो काजे आम के समय आगर लागे से। यही काजे सुखा तो बेरा पाक फर नी नसो बलून हुता गंधक चो कुमला देतो राय। कुमला देतो काजे एक किलो पाक फर काजे 3 ग्राम गंधक खूबे होय से। मांतर पाक फर दखुन एके खेडी कम और आगर बले करतोर होय से। दादा दीदी मन ये तो होली पाक फर काजे, मांतर साग काजे गंधक चो कुमला नी देतो राय। आरु गंधक बीती लोन जिनिस जसन पोटेशियम मेटा बाइल सल्फाइट एके घोरून होता चोबरून भाती साग के डंडिक संगातो राय। ये चोले काय होय से कि साग ने गंधक मिसे से आरु सुखालो पाछे साग ने नानी नानी कीड़ी मन नी पड़त। दादा दीदी मन गोटोक और गोठाए जेके लेख करतो राय हुनाय कि जसन आमी पाक फर के नहाले साग भाजी के घाम ने सुखाऊ से, जाले आमी सुखा तो ठान के बले ध्यान देऊ। सुखा तो ठान ठसठसा ठान होले आगर नगत आए, नहाले कहाँ बोले सुखाऊ। हर 2 नहाले 3 घंटा ने सुखालो जिनिस चो कुटकी मन के उलट पलट करते रहूं। असन करते रलो ने हुता सब पाए बाटे बराबर घाम पाउ सके दे। सुखा तो ठान कचरा कूड़ा चिखल पानी असन ठान ले लाफी रहो। काय काज बल्ले असन करलो ने हुता मोची आरु तीसर कीड़ा माकड़ा मन नी बसुक सक दे। और सुखा तो बेरा सुखा तो जिनिस के हाथे धरून टूटाउन बोले दख तो राय। काय काज बल्ले दखा दे दे कि नगत सुखली से कि नहीं। और जसन पाक फर आरु साग भाजी सुखुन जाए दे तेबे हुनके कूड़ी बनाउन 2 हफ्ता तक बल्ले 15 दिन तक साफ सुथरा और सुखलो ठान ने संगातोर आए। एके एक हार और सुना, जसन पाक फर आरु साग भाजी सुखुन जाए दे तेबे हुनके कूड़ी बनाउन 2 हफ्ता तक बल्ले 15 दिन तक साफ सुथरा और सुखलो ठान ने संगातो राय। और जसन 15 दिन होली हुंचो पाछे एक कूड़ी मन के उठाउन पाछे हुनके कांच नहले 3 चो डब्बा मन ने संगातो राय। और पाछे जेबे खातो काजे मन करे दे उदल दाए निकरातो राय और मन हिसाब ने रांधुन जमक बनाउन काय रसिया घर चो लोग संगे खातोर बले आए।
0: आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी बेड़ा खड़ा चुगोट। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में आज सुनिए गुंडरू भैरम पाड़, वादक कलाकार हैं भारत और साथी।

0: हलहोली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुंडरू भैरम पाड़। वादक कलाकार थे भारत और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज सुबह 8:30 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ ही लोक संस्कृति पर केंद्रित कार्यक्रम लोकसुर, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:05 पर सुनिएगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर, जिसमें आकर्षण होंगे श्री आलोक दुबे की वार्ता धरती को माता समझें और होगी सुरीले फिल्मी संगीत, फिल्मी गीतों से सजी मधुरिमा। सुबह 9:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आज की फिल्म होगी घातक। गुलशन कार्यक्रम में सुबह 10:00 हम लेकर आएंगे पुराने फिल्मी नगमे। गुरदुम कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर आज सुनिएगा हड़मा राम और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत, एक ही कलाकार। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 11:00। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्म अभिनेत्री अमृता राव पर। सुबह 11:30 पर सुनिएगा पाटा केंजा। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा गणेश मंडावी और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। दोपहर 12:00 सुनिएगा लोक साहित्य पत्रिका मोचो मांटी, संपादन होगा बलवीर सिंह कच्छ का। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार हम प्रसारित करेंगे दोपहर 12:30 पर। बेड़ा खड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण किया जाएगा दोपहर 1:05 पर। फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं कार्यक्रम श्रोता सुमन में दोपहर 1:10 पर। कला और कलाकार, ये कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे दोपहर 2:30 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:05 पर सुनेगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में। शाम 5:10 पर सुनिएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:35 पर सुनिएगा नीला और साथियों के स्वर में भतरी लोकगीत। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर का प्रसारण हम करेंगे शाम 7:00। शाम 7:21 पर सुनिएगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव। रात 8:00 कार्यक्रम नानोली में आज आप सुनेंगे दसरू राम और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत पीला मन का जेगोट। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 8:30 पर। आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुति होगी राम सिंह कश्यप की। रात 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम जीवना चो सोर। आज इस कार्यक्रम में श्रीमती शकुंतला ठाकुर से बातचीत करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात 9:30 पर भेंटघाट कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा श्री बलदेव मौर्य से ली गई बलबीर सिंह कच्छ की भेंटवार्ता। और रात 10:00 होगा लोकगीतों का कार्यक्रम कोदो माली। आज इस कार्यक्रम के कलाकार होंगे मणिराम मंडावी और साथी। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज वन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6:55 होने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार।
2: आकाश

0: प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमन्त्री श्रीमोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी सह प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तान्तर्गतम् उभौ नेतारौ भारत स्वीडन सम्बन्धानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम् अन्तरिक्ष रक्षा अनुसन्धानं समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय सम्बोधने श्रीमोदी आतंकवादम् आलोचयन् नैकेषु विषयेषु विस्तृतेण वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्रीमोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतम् श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानम् स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्रीमोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्व युतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथि युतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्रीशाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्रीशाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्रीशाहः AI तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु IPL इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन की प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूर

0: दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

आज नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम में हाजिर हूँ मैं भरत कुमार गंगादित्य। श्रोता साथी स्वीकारे मेरा प्यार भरा अभिवादन। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता धरती को माता समझें और होगी मधुरी माँ।

श्रोताओ, आज 18 मई है और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषता और महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसका मूल उद्देश्य जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना था। इसका यह भी उद्देश्य था कि लोग संग्रहालयों में जाएं और अपने इतिहास और प्राचीन समृद्ध परंपराओं को जानें और समझें। श्रोताओ, संग्रहालय में ऐसी अनेक वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं जो मानव सभ्यता की याद दिलाती हैं। संग्रहालय में रखी वस्तु हमारी सांस्कृतिक धरोहर तथा प्रकृति को प्रदर्शित करती है। वर्ष 1992 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष वे नए विषय का चयन करेंगे और जनसामान्य को संग्रहालय विशेषज्ञों से मिलने के लिए जागरूक करेंगे। श्रोताओं, हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजना हमारी हम सबकी जिम्मेदारी है और ये धरोहर चाहे वस्तु के रूप में हो, चाहे किसी पारंपरिक सांस्कृतिक परंपरा हो, चाहे पुरातात्विक रूप से सहेजे गए इमारत हों, पुराने प्राचीन मंदिर हों, विशिष्ट इमारतें जैसे कि ताजमहल, जो कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। आज क्यों न हम इस पर मनन चिंतन करें कि हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को हम कैसे सहेज कर रखेंगे। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
6: श्रोताओं, अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और निश्चित ही बच्चे इस अवसर का लाभ उठा रहे होंगे। ये एक ऐसा समय होता है जब बच्चों को अपना हुनर तराशने का मौका मिलता है। ऐसे में अभिभावकों को भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चों के पास ऐसी कौन सी प्रतिभा है जिसे निखारा जा सकता है। श्रोताओं, ग्रीष्मकाल में कई समर कैंप शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। अभी भी कुछ बच्चे उसका लाभ उठा रहे होंगे और ये अच्छा भी है कि बच्चों को हम कुछ अच्छा सीखने और करने की प्रेरणा ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में देते हैं।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
3: श्रोताओं नमस्कार, जगदलपुर के अगले क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता धरती को माता समझें। वार्ताकार हैं आलोक दुबे।
4: वर्तमान में सारा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के दौर से गुजर रहा है। पूरे विश्व ब्रह्मांड का तापमान विगत 100 वर्षों में 1 डिग्री बढ़ गया है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हिमालय नग्न होता जा रहा है। बेमौसम की बारिश, ओलों की मार और मौसम की अनियमितता ने मानव प्रकृति को भ्रमित सा कर दिया है। जिस समय ठंड होती थी उस समय वसंत का वातावरण नजर आ रहा है। जब ठंड बीत गई तो जमकर हिमपात हो रहा है, जिसके कारण बड़ी सीमा तक फसल चौपट हो गई। मौसम चक्र के इस असंतुलन ने एक महाविनाश की विभीषिका हम सबके समक्ष प्रस्तुत करती है, जो घटनाक्रम सन 2050 में देखे जाने की बात सोची जा रही थी वह शायद हमें 2015 में ही दिखाई पड़ना लगे। ऐसे सवालों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें तो हम पाते हैं कि आज के इस भौतिकवादी युग में इंसान ने बहुत कुछ पाने की लालसा में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और थल यानी धरती माता भी सम्मिलित है। यह एक अकल्पनीय त्रासदी कही जा सकती है कि धरती जो हमारी माता है उसे भोग्या मानकर हमने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है कि न जाने कब प्राकृतिक आपदाएं अपना विकराल रूप लेकर हम पर बरसने लगें। सारे विश्व के मौसम में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, जिसका कारण हम स्वयं हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं, मल्टीप्लेक्स, मल्टी स्टोरीड भवनों के निर्माण के साथ शहरीकरण तेजी से बढ़ा है। गांव, कस्बे अब शहरों में विलीन हो रहे हैं और महानगर विद्रूपता के साथ फैलते जा रहे हैं, पर सामान्य सुविधाएं वहीं न्यूनतम है। आज पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है, सरिताएं विषाक्त होती जा रही हैं, गंदी बस्तियां हर महानगर में

पैर फैला रही हैं, जिसके कारण धरती का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जीने की शैली में विलासिता के साधनों के अनाप शनाप समावेश से कभी तो लगता है कि मध्यम वर्ग में बड़ी तेजी से रईसी आई है, पर यह सब खोखला सा लगता है जब उसके जीवन में रिक्तता, तनाव, विक्षोभ बढ़ता सा दिखाई देता है। ऐसी समृद्धि किस काम की, इस बात पर हमें आज नहीं तो कल निसंदेह गौर करना पड़ेगा। आज का मानव धरती की गोद में अटखेलियां करने की बजाय उस धरती माता को ऐसे कष्टों में डुबो रहा है जिसकी कल्पना भी असहनीय है। आज हम धरती माता और उसके सभी अंगों के साथ एक ऐसा गंभीर मजाक कर रहे हैं जिसका दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ी को सदियों भोगना पड़ सकता है। फर्नीचर और साज सज्जा के नाम पर वनों का विनाश हो रहा है, जिसके कारण जड़ी बूटियां प्रायः लुप्त होती जा रही हैं। प्लास्टिक और पॉलीथिन का प्रयोग धरती माता के सीने को तार तार कर रहा है। खनिज उत्खनन के नाम पर पहाड़ों की बेतहाशा खुदाई प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर रही है। शहरीकरण एक अभिशाप के रूप में सामने आ रहा है। गांवों की समरसता, सौंदर्य और प्राकृतिक वातावरण लुप्त सा होता जा रहा है और कृषि प्रधान राष्ट्र कहे जाने वाले भारतवर्ष की उर्वरा भूमि प्रतिक्षण समाप्त होती जा रही है। क्या हम भावी पीढ़ी को ऐसी पृथ्वी देने जा रहे हैं? यह सवाल शायद आज भी अनुत्तरित है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व की ज्वलन समस्या है गर्म होती धरती, बढ़ता तापमान और अनियमित वर्षा। यद्यपि सारी विश्व वसुधा इसकी परिधि में आ रही है, पर न जाने क्यों अपने अपने देश में परिवर्तन लाने के लिए कोई भी विकसित विकासशील देश तैयार नहीं है। बढ़ता शहरीकरण, औद्योगीकरण, वाहनों की भीड़, बढ़ती विमान यात्राएं, प्रकृति के साथ किया जा रहा खिलवाड़ और हमारे विलासी जीवन का कहर आज पूरे विश्व पर पड़ रहा है। कहा जाता है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास में प्रकृति दत्त पंच तत्वों की एक विशेष अहमियत है, जिनके सानिध्य और प्रकाश से जीवन को सहज सफलता के मुकाम पर पहुंचाया जा सकता है। यह तत्व संसार के प्रकाशक तत्व हैं, अर्थात यह समस्त संसार को प्रभावित करते हैं और इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह सुंदर, दर्शनीय और मनोरम है। धरती माता हमें पोषण, संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करती है। इस संबंध में मिशिगन विश्वविद्यालय के मनोविज्ञानी स्टेफन कैप्लॉन द्वारा विकसित आर्ट यानी अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी बड़ी महत्वपूर्ण है, जो इस तथ्य को उद्घृत करती है कि रचनात्मक चिंतन सदैव शांत प्रकृति के सानिध्य में ही संभव है। प्रकृति और मानवीय मानसिकता के बीच एक गहरा संबंध हुआ करता है। धरती माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए आज सर्वोपरि आवश्यकता है एक अखंडित अनुशासन की। इस मूल मंत्र को मानकर धरती के विनाश को रोका जा सकता है। प्रकृति के सारे घटक अनुशासित और नियमबद्ध तरीके से परिचालित हैं। सूर्य और चंद्रमा नियमबद्ध तरीके से अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। ताप और शीतलता हमें सहज ही मिल जाती है। जल नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो अग्नि आकाश की ओर उठती है और पर्वत अपने स्थान पर अडिग अटल रहते हैं। यदि ये सब भी इंसान की भांति अपनी सीमाएं लांघ जाएं तो प्रलय सुनिश्चित है। इसलिए क्या ही बेहतर हो कि हम भी अपनी सीमाओं में रहकर प्रकृति के प्रत्येक घटक का सम्मान करें, क्योंकि इनके संरक्षण में ही हमारी सुख, शांति और समृद्धि समाहित है। मानव का इतना सा प्रयास उसे उन तमाम संकटों से दूर रखने का संबल रखता है जिनकी कल्पना मात्र हमारे लिए असहनीय हो जाती। आज के परिवेश में धरती माता का सम्मान और प्रकृति

0: की रक्षा हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हमारा देश एक विकासशील राष्ट्र है। हमें आर्थिक तौर पर मजबूत होना है, पर प्राकृतिक असंतुलन के बढ़ते तापमान से गरीब और अमीर के बीच की दूरी और अधिक बढ़ने का अंदेशा है। इसी प्रकार धरती के क्षरण से समुद्री स्तर बढ़ेगा, जिसके कारण किनारे के क्षेत्र बीचेस पानी में डूब जाएंगे या फिर सदा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। यदि गैस उत्सर्जन और ग्लोबल तापमान में बढ़ोतरी नहीं रुकी तो कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे शहर भविष्य में कभी भी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा के शिकार हो सकते हैं। ऋतु चक्र की अनियमितता बढ़ने से खाद्यान्न उत्पादन घटेगा और अकाल, सूखा, महामारी जैसी स्थिति बढ़ेगी। ऐसे में वर्ग संघर्ष, छीना झपटी इस सीमा तक हो सकती है कि संभव है यह एक सिविल वार का रूप ले ले, जैसा हमने अफ्रीका में देखा है। प्राकृतिक असंतुलन से समुद्री तूफानों के आने की दर बढ़ेगी और इससे भारत का लगभग सघन आबादी वाला क्षेत्र प्रभावित रहेगा। वर्षा कम या अत्यधिक होगी, जो सामान्य जीवन को बुरी तरह प्रभावित करेगी। इस प्रकार प्रदूषित होती नदियां भी गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की जनक होंगी। उज्ज्वल भविष्य की आकांक्षा में कालिदास का यह वंशज आज जिस डाल पर बैठा है उसे ही काटने में गर्व की अनुभूति कर रहा है, पर हो सकता है अपने इस कृत्य पर वह आने वाली पीढ़ी की घृणा और तिरस्कार का पात्र बन जाए। इसलिए क्या ही बेहतर हो कि हम अपने जीवन को जियो और जीनो दो के पावन सिद्धांत से ओतप्रोत करें और धरती माता के सम्मान में गर्व से कहें, जननी जन्मभूमि स्वर्गादि अपि गरियसी।
1: अभी आप सुन रहे थे आलोक दुबे की वार्ता, धरती को माता समझी। श्रोताओ, अब समय है मधुरिमा का, पर उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: बदलो बदलो, आदत बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
5: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: पेश है मधुरिमा।

किसी के प्यार को पा लेना ही मोहब्बत नहीं होती है, किसी के दूर रहने पर उसको पल पल याद करना भी मोहब्बत होती है।

डोर, चरखी, पतंग, सब कुछ तो है, बस इंतजार है कि उसके घर की तरफ हवा चले।

तो मिले या ना मिले, ये मेरे मुकद्दर की बात है। सुकून बहुत मिलता है तुझे अपना सोचकर।

श्रोताओं, आज मधुरिमा में आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वे थी आई मिलन की रात, कोयल, जुनून और सैनिक। आवाजें थी मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति, विपिन सचदेवा और साधना सरगम की। अब मधुरिमा के इन गीतों के साथ ही आज के नमस्कार जगदलपुर से मुझे यानी भरत कुमार गंगादित्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। समाचार प्रभात अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोटेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये

0: ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोटेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोटेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
6: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
8: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल VA वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आलेख संपादन और प्रस्तुति वीरभान साहू, संयोजक पंकज मेश्राम, वाचन स्वर तारकेश्वरी आसुदानी।

सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की त्रिवेणी आकाशवाणी ने दशकों की इस यात्रा में तमाम मील के पत्थर स्थापित किए हैं और अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्थ करते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपने कार्यक्रमों में पिरोते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा में जोड़ने का अद्भुत प्रयास किया है। जन जन की वाणी बन मूक को वाचाल बनाने का प्रयास आकाशवाणी ने किया है। आकाशवाणी ग्रंथालय में संग्रहित छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर केंद्रित इस कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर ही रहे हैं। साथ ही आकाशवाणी की इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों से भी परिचित कराने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है हमारे सुधी श्रोताओं के लिए ये प्रयास उपयोगी सिद्ध होंगे। आज के अंक में हम छत्तीसगढ़ के विविध गीतों की चर्चा करेंगे और साथ ही सुनवाएंगे कुछ सरगुजिहा गीत। इससे पहले आइए आकाशवाणी की इस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हैं। प्रसारण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उद्घोषक पर। किसी भी प्रसारण केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को सुनने के लिए श्रोता जब रेडियो ऑन करते हैं तो आकाशवाणी संकेत धुन के बाद केंद्र की आरंभिक परिचयात्मक उद्घोषणा सुनाई देती है। फिर जो भी कार्यक्रम उस प्रसारण सभा में निर्धारित होते हैं वे कार्यक्रम बारी बारी से श्रोताओं तक पहुंचने लगते हैं। एक कार्यक्रम के समाप्त होते ही दूसरे की उद्घोषणा, फिर अगले कार्यक्रम की। ये उद्घोषणाएं प्रसारण को एक आकार देती हैं, उसे व्यवस्थित करती चलती हैं, उसे निखारती हैं। किसी भी केंद्र का श्रोताओं से जीवंत परिचय उद्घोषक की उद्घोषणाओं के माध्यम से ही होता है। केंद्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम निर्माताओं प्रसारणकर्ताओं के अतिरिक्त महत्वपूर्ण भूमिका होती है उद्घोषक की। प्रसारण सभा चाहे एक या दो घंटे की हो या उससे अधिक की, उसमें उद्घोषणाएं जितनी जीवंत सारगर्भित और ऊर्जावान होंगी प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम श्रोताओं को उतने ही रुचिकर लगेंगे। इतना ही नहीं, उस जीवंत उद्घोषणाओं से श्रोताओं में उत्साह और उमंग का संचार होते रहता है। लेकिन यदि उद्घोषणाएं नीरस बुझी बुझी सी काम चलाऊ और खाना पूर्ति वाली होंगी तो ऐसे में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम चाहे कितने भी अच्छे और रोचक हों श्रोताओं को प्रभावित करने में असफल रह जाएंगे। इसलिए ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रसारण में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उद्घोषक। वो कार्यक्रमों और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। जीवंत और प्रभावी उद्घोषणाओं के लिए एक उद्घोषक में कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक है। संप्रेषण हुनर, संप्रेषण कौशल या कम्युनिकेशन स्किल, जो भी कहा जाए, एक उद्घोषक की पहली शर्त है। उद्घोषणाएं जो भी हों उसमें विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण है। आवाज अच्छी तो हो ही, उस आवाज का सही प्रयोग और साफ होना भी उतना ही जरूरी है। उच्चारण में शुद्धता और स्पष्टता हो। उद्घोषक बहुआयामी भूमिका में होता है। विभिन्न विधाओं की प्रस्तुति में उसकी संबद्धता होती है, जैसे भेंटवार्ता, विवरण प्रस्तुतकर्ता और अन्य प्रसारण रूपों में भी उसे प्रतिभागिता करनी होती है, तो उनके लिए भी उसे अपने आप को तैयार करना होता है और ये तैयारी निरंतर अध्ययन और समसामयिक घटनाक्रमों की जानकारी रखने से बेहतर हो सकती है। उद्घोषक रेडियो का संपूर्ण प्रस्तुतकर्ता होता है, इसलिए उससे अतिरिक्त सजगता की अपेक्षा की जाती है। जितनी प्रभावपूर्ण उद्घोषणा होगी उतना ही प्रभाव श्रोता पर पड़ेगा। वास्तव में उद्घोषक पूरे कार्यक्रम का अहम सूत्रधार होता है, इसलिए उनसे उनकी भाषा में सरलता, सहजता, स्पष्टता, बोधगम्यता होने की अपेक्षा की जाती है। आइए अब आपको छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को समर्पित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर से जोड़ते हैं।

साहित्य की अत्यंत सूक्ष्म कमनीय एवं प्राणवंत विधा है गीत। गीतों का जन्म किसी अज्ञात कवि के मुख से लोक जीवन में हुआ। यही कारण है कि लोकगीत लोक जीवन का श्रृंगार ही नहीं उसकी आत्मा भी है। लोकगीतों में वस्तुतः कवि की नहीं वरन जन समाज की वाणी मुखरित होती है। ये लोकगीत हमारे खेतिहर समाज की जीवन पद्धति और संस्कृति का दर्पण है। सदियों से प्रचलित लोकगीत वाचिक परंपरा का ऐसा प्रवाह है जिसमें उसके अंतर्मन की व्यथा कथा छलकती है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। लोक का भावुक और निर्लिप्त मन जन्म से मृत्यु तक लोकगीतों का संबल ढूंढता है। लोक जीवन के सुख दुख उल्लास हर्ष विषाद और संघर्ष को अभिव्यक्त करते हुए लोकगीत कोटि कोटि हृदयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पनिहारिन और बोझा ढोती हुई स्त्रियों के साथ साथ घर में चक्की पीसती हुई महिलाओं के सुरीले कंठों में रचे बसे लोकगीत जन जीवन में इतने गहरे बैठे हुए हैं कि जन जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं।

लोक गीतों की गंगोत्री आदिम युग से निरंतर गतिमान है। मानव जाति के उत्थान पतन की गाथा गाते हुए इन गीतों में व्यक्ति अपने उल्लास और आक्रोश के साथ साथ मन में दबी इच्छा को सबके सामने रखता है। ग्रामीण जनजीवन में ही नहीं, गांव के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों में भी ये लोकगीत रचे बसे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है, मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसकी सत्ता का ज्ञान लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता या किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है। छत्तीसगढ़ी एक सरस, सरल और लचीली भाषा है, जिसमें सौहार्द, सामंजस्य और प्रेम के घुंघरू बजते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की समृद्ध परंपरा लोकमानस के कंठ कंठ में समाई है। छत्तीसगढ़ का ददरिया सावन भादों की बरखा की तरह नहीं, वरन बारहों महीने रस विभोर करते हैं और गुदगुदाते रहते हैं।

किसी भी देश के अंचल की सभ्यता और संस्कृति की झलक लोक गीतों में मिलती है। असंख्य नारियों के हृदय की झंकार का ये ताना बाना करुण, हास्य और श्रृंगार रस से लिपटकर सुरीले कंठों में गूंजता है। सुआ, भोजली, ददरिया, कर्मा आदि गीतों में उनके प्राणों की वेदना फूंकती है। इन गीतों में भावनाओं का वेग इतना अधिक प्रबल होता है कि हृदय द्रवीभूत हो उठता है। बड़ी से बड़ी बात का उलाहना देने और नाराजगी जाहिर करने में लोकगीतों ने नारी जाति की बड़ी मदद की है। हृदय में लगी ठेस, दुख और पीड़ा को जिन्हें कई कारणों से जबान पर नहीं लाया जा सकता, उन्हें गीतों की लड़ियों में पिरोकर डंके की चोट पर समाज को सुना दिया जाना लोकगीतों का ही कमाल है।

आइए अब चलते हैं सरगुजा की सुरम्य वादियों में, जहाँ के लोक जीवन में लोकगीतों में श्रृंगार के सहज ही दर्शन होते हैं। मानव की श्रृंगारिक प्रवृत्ति सहजात है, वह अनादिकाल से अपने शरीर को आकर्षक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। श्रृंगार प्रसाधन की ये प्रवृत्ति आज भी लोक जीवन में विद्यमान है। लोक जीवन में केवल नारी ही नहीं बल्कि पुरुष वर्ग भी नृत्य उत्सवों के अवसर पर प्राकृतिक उपादानों से अपने शरीर को सुसज्जित करते रहता है। ऐसे उपादानों में नृत्यरत होने के अवसर पर पगड़ी में पुष्पित टहनी खोसना, कौड़ियों का झालर कमर में बांधना, कमर में मयूर पंख बांधना आदि सम्मिलित है। सरगुजिया लोकगीतों में नारी सौंदर्य प्रसाधन के अनेक मनभावन चित्र अंकित हैं।

और अब आज के अंक को यहीं विराम देते हैं। वाचन तारकेश्वरी आसुदानी का, आलेख संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की, संयोजक पंकज मेश्राम। विदा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति पर केंद्रित समन्वित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान।

0: जिज्ञासा विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
0: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
0: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
0: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
1: जी,
0: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
0: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, what do you like most?
6: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
10: Yes, sir.
11: We like.
2: Lovely butterflies?
10: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
10: Yes.
2: That's very nice, children.
7: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
10: Yes, sir.
2: The rivers, the mountains, and the green trees.
10: Yes, sir.
2: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
10: Like us?
2: Would you like to listen?
10: Yes, sir.
7: We love to listen the story.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
10: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me, okay?
10: Okay, sir.
11: We love to recite it.
2: As I lie on my back.
10: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
10: Looking up at the sky.
2: I see a big white bear.
10: I see a big white bear.
2: Looking down at me.
10: As I lie on my back.
2: As I lie on my back. Looking up at the sky.
10: Looking up at the sky.
2: I see a ship sailing.
10: I see a ship sailing.
2: On a white sea.
10: On a white sea.
2: As I lie on my back.
10: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky. I see an elephant.
10: I see an elephant.
2: Waving its trunk at me.
10: Waving its trunk at me.
2: As I lie on my back.
10: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
10: Looking up at the sky.
2: Oh, it's fun. It's fun to me.
10: Oh, it's fun. It's fun to me.
2: To see whatever I want to see.
10: To see whatever.
2: So, children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?
10: Yes, sir.
7: They are beautiful.
5: They are very big.
6: They change the shapes.
2: Wonderful. You have very rightly said. So now listen to the same poem in a song. Would you like to listen to this song?
10: Yes, sir.
2: So, kids, here comes the song. As I lie, what?
10: As-

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir!
3: I have seen rainbow.
4: It has seven colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Langlingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका.
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
12: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
13: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
12: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
14: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम में वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
2: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
2: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
2: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
2: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
4: अच्छा।
2: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
2: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं, वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं। समझे
4: जी? ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मात वृक्षों के बारे में।
2: हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
4: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज की फिल्म है घातक। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म का पहला गाना, सुरेश वाडकर और साधना सरगम की आवाजों में।

श्रोताओं, फिल्म घातक सन 1996 में बनी थी। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी। फिल्म की कहानी और पटकथा भी राजकुमार संतोषी ने ही लिखी है। आइए सुनते हैं फिल्म का अगला गाना आशा भोसले की आवाज में।

फिल्म घातक के गीत लिखे हैं राहत इंदौरी और मजरूह सुल्तानपुरी ने। फिल्म के सारे गीतों को आरडी बर्मन ने संगीतबद्ध किया है। एक गीत अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया है। फिल्म का छायांकन किया है ईश्वर बेदरी ने। संपादन किया वीएन माइकल ने। पेश है फिल्म का अगला गाना शंकर महादेवन, अलका याग्निक और अनु मलिक की आवाजों में।

फिल्म घातक में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, डेनी डेंग जोंगपा, अमरीश पुरी, ओम पुरी, मुकेश ऋषि, अंजन श्रीवास्तव, टीनू आनंद, के रैना, बीजू खोटे, हरीश पटेल, सुरेश भागवत, रोहिणी हट्टंगड़ी, इला अरुण, शिवा शर्मा, नवनी परिहार, टीनू वर्मा, दीप ढिल्लों, ब्रिज गोपाल, मुख्तार खान, राजीव वर्मा, मकरंद देश पांडे, पोन्नान बलम, शिवा रिंदानी और ममता कुलकर्णी ने। फिल्म में अतिथि भूमिका में अमिताभ बच्चन भी थे। फिल्म घातक को फिल्म फेयर पुरस्कारों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार अमरीश पुरी को प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार राजकुमार संतोषी को प्राप्त हुआ और सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार वी एन मायेकर को प्राप्त हुआ। आइए सुनते हैं फिल्म का अगला गाना कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

इस गीत के साथ ही आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी घातक। मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। आज और कल रायपुर तथा बस्तर में अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हो रहा है। और सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने कल धमतरी में 465 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर बीती शाम रायपुर पहुंचे। रायपुर विमानतल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री शाह का स्वागत किया। श्री शाह आज और कल रायपुर और बस्तर में अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अपने दौरे के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ देर बाद रायपुर के माना में स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद

0: मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू होगा। 25 मई तक चलने वाला यह अभियान प्रदेश के 8,000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है। अधिकारी गांवों में जनसुनवाई करेंगे और आदि सेवा केन्द्रों में शिकायतों का निराकरण होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल धमतरी में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जिले के विकास के लिए 465 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने धमतरी में 4-लेन सड़क इंटरक्वेल और गौरव पथ निर्माण कार्य को मंजूरी दी। इसके अलावा उन्होंने कुरुत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन के लिए 1.5 करोड़ रुपए और पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। जगदलपुर के बालिंगा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर आज सुबह एक बस के पलटने से एक यात्री की मौत हो गई है, वहीं 30 अन्य यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बस रायपुर से कोंटा की ओर जा रही थी। जशपुर जिले में स्थित घोघरा डैम में डूब रही अपनी बेटी को बचाने के प्रयास में मां ने भी जान गंवा दी। इस हादसे में मां और 8 वर्षीय बेटी की मौत हो गई, जबकि बड़ी बेटी किसी तरह तैरकर बाहर निकलने में सफल रही। बताया जा रहा है कि मृतक महिला गर्भवती थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। आज और कल रायपुर तथा बस्तर में अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हो रहा है और सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने कल धमतरी में 465 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिन्दी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम गुलशन। आज गुलशन कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के गाये गीत से। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

आइए अब सुनते हैं तलाश फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, संगीत से सजाया है SD बर्मन ने।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया गीत। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने। गीत रचना है हसरत जयपुरी की, संगीत एस डी बर्मन का है।

अगला गीत हमने लिया है किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन बनाई है SD बर्मन ने, फिल्म का नाम है 3 देवियां।

अगला गीत है फिल्म तीसरी मंजिल से आवाजें हैं। आवाज है मोहम्मद रफी की, शब्द मजरूह के हैं, संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

0: गुलशन कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे पुराने फिल्मी नगमे। मीडियम वीवो और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाएं रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक। तो आपन मन सपाए सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं हड़मा राम और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत।

0: बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम गुरदुम अभी आप सुन रहे थे। इसमें आप सुन रहे थे हड़माराम और साथियों के स्वर में गाए गोंडी लोकगीत। ये है आकाशवाणी जगदलपुर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो,
5: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव।
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हां, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी कि 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस वक्त दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार की दास्ता है, एक ऐसी अभिनेत्री की जिनके मुस्कान में एक सादगी भरी चमक है जो सीधे दिल को छू जाती है। उनकी अदाकारी में मासूमियत और गहराई का अनोखा संगम देखने को मिलता है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी से हमेशा एक शांति और अपनापन का अनुभव कराने वाली फिल्म जगत की मशहूर अदाकारा अमृता राव की।

श्रोताओ, अमृता राव एक बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री और मॉडल है जिन्होंने खास तौर पर हिंदी फिल्म जगत में काम किया है। अमृता राव का जन्म मुंबई में एक कोंकणी भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अमृता एक विज्ञापन एजेंसी के मालिक की सुपुत्री है। उन्होंने मुंबई के कैनोसा कॉन्वेंट गर्ल्स कॉलेज से पढ़ाई की और सोफिया कॉलेज से मनोविज्ञान में स्नातक किया। श्रोताओं, सादगी में भी एक अलग चमक होती है और यही चमक अमृता राव की पहचान है। उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि सफलता केवल शोर से नहीं बल्कि शांत और सच्चे प्रयासों से भी मिलती है।

अभिनेत्री अमृता राव के फिल्मी करियर की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। उन्होंने एक फेस क्रीम के एड से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस विज्ञापन के बाद अमृता ने ढेरों विज्ञापनों में काम किया। कैडबरी पर्क से लेकर ब्रू कॉफी तक के एड को अमृता ने बड़ी ही सादगी से पेश किया और इतने एड्स करने के बाद उन्हें बॉलीवुड से फिल्मों के ऑफर्स आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। इनके फिल्मी करियर के बारे में आगे आपसे और भी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले इनके फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत हम आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओ, अभिनेत्री अमृता राव ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में आई फिल्म अब के बरस से की थी, जिस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। जी हाँ श्रोताओं, इस फिल्म का निर्देशन राज कंवर ने किया था। अमृता को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिली फिल्म इश्क विश्क से, जो कि पर्दे पर आई थी वर्ष 2003 में। इस फिल्म में अमृता राव की अदाकारी को बेहद पसंद किया गया था। आइए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, फिल्म इश्क विश्क के बाद अमृता राव कई फिल्मों में नजर आईं। इन्हें वर्ष 2003 में स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर की तरफ से फिल्म इश्क विश्क के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, वर्ष 2003 में ही इसी फिल्म के लिए ही स्टारडस्ट पुरस्कार, वर्ष 2006 में अमृता राव को फिल्म विवाह के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। फिल्म विवाह और फिल्म वेलकम टू सज्जनपुर के लिए भी इन्हें पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। श्रोताओं, अमृता राव सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि सादगी और गरिमा की वो मिसाल है जो हर दिल में अपनी अलग पहचान छोड़ जाती है। हमारी दुआ है कि रब उनकी राहों को हमेशा रोशन रखे और उन्हें हर मंजिल तक आसानी से पहुंचाए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। हमारा आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री अमृता राव पर। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त दिन के 11:30 हुए हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप सुनिए कार्यक्रम पाटा केंजा में गोंडी लोकगीत। गायक कलाकार हैं गणेश मंडावी और साथी।

Gracias.

Amanabasu Yuliro. Ano

nunile mai mama lunayo nunile veale bai spara kilem nunile.

kunda nu su jawab ayo anu nile

अभी आप कार्यक्रम पाटाकेंजा में सुन रहे थे गोंडी लोकगीत। गायक कलाकार थे गणेश मंडावी और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। समय दिन के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 400 अत्याधुनिक डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हो रहा है। और जगदलपुर के पास बस पलटने से एक यात्री की मौत, 30 यात्री घायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 400 अत्याधुनिक डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। ये कार्यक्रम माना स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। अभी तक प्रदेश के सिर्फ 16 जिलों में यह सुविधा थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने डायल 112 सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। इक्के नंबर सबो बर थीम पर आधारित ये सेवा पुलिस, मेडिकल इमरजेंसी, आगजनी, सड़क दुर्घटना और आपदा जैसी हर आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगी। इस आधुनिक व्यवस्था के तहत 24 घंटे और सातों दिन अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह आज जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज दोपहर वे जगदलपुर स्थित बादल अकादमी में शहीदों के परिजनों, सुरक्षा बलों के जवानों, नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों और विभिन्न स्थानीय समाज के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कल 19 मई को जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक होगी। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू होगा। 25 मई तक चलने वाला यह अभियान प्रदेश के 8,000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है। अधिकारी गांवों में जन सुनवाई करेंगे और आदि सेवा केंद्रों में शिकायतों का निराकरण होगा। सिकल सेल और टीबी जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। राष्ट्रपति

0: फलाह लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया जाएगा। जगदलपुर के बालिंगा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर आज सुबह एक यात्री बस के पलटने से एक यात्री की मौत हो गई है, वहीं 30 अन्य यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बस रायपुर से कोंटा की ओर जा रही थी। जशपुर जिले में स्थित घोघरा डैम में डूब रही अपनी बेटी को बचाने के प्रयास में मां ने भी अपनी जान गंवा दी। इस दर्दनाक हादसे में मां और 8 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 400 अत्याधुनिक डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हो रहा है। और जगदलपुर के पास बस पलटने से एक यात्री की मौत, 30 यात्री घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 12 बजे हैं।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है, जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी। संपादक हैं बलवीर सिंह कच्छ।

0: সবুর ভবানী কে উচাইসি বা ডেওনা খরা লেউটো বলে জনি উজার বলে লেউটো, খরা লেউটো বলে জনি উজার বলে লেউটো, মোর কোপার নে নাও হাতার লিকো, মোর কোপার নে নাও হাতার লিকো, তেবে থমনার লালি লেউটসি, তেবে থমনার লালি লেউটসি। মার দুসর কবিতায় ওটি নে ইংরা সঙ্গা, ওটি নে ইংরা সঙ্গা গোট নে বপু সঙ্গা, ওটি নে ইংরা সঙ্গা গোট নে বপু সঙ্গা, জিবার মন আছে আলে মরবার তিয়ারি সঙ্গা, জিবার মন আছে আলে মরবার তিয়ারি সঙ্গা, সবুর হরিক নে যা, সবুর হরিক নে যা, দুঃখ নে পুনি ধর্ম করা, দুঃখ নে পুনি ধর্ম করা, সর লে ধুর আকা রাহা, সর লে ধুর আকা রাহা, গাঁও আরি খোরি লে মায়া সঙ্গায় রাহা, গাঁও আরি খোরি লে মায়া সঙ্গায় রাহা। মোর তিসর কবিতায় এ জীবন আয় মাটির পুতরা, এ জীবন আয় মাটির পুতরা পানি পগলে ভসড়ে যাইসি, এ জীবন আয় কাগতর গোঁদা, এ জীবন আয় কাগতর গোঁদা, জয় লগে আইলে পড়ে যাইসি, এ জীবন আয় রোঁডার কালি, এ জীবন আয় রোঁডার কালি, খারা পাইলে লেমজি যাইসি, খারা পাইলে লেমজি যাইসি, এ জীবন আয় সোনার রূপা মতি, এ জীবন আয় সোনার রূপা মতি, জুরু লোকমনার হাতে যাইসি, জুরু লোকমনার হাতে যাইসি, এ জীবন আয় ধোঁগার খেঁদা, এ জীবন আয় ধোঁগার খেঁদা, জয় ধরলে ঢকঢকি যাইসি, এ জীবন আয় পানির থিপা আসন, এ জীবন আয় পানির থিপা আসন, খরা নে সুখি আঁটি যাইসি, খরা নে সুখি আঁটি যাইসি। মোর আগলা কবিতায় দুকা আউলি লেরা মোর হরিক কে কতরবাত, দুকা আউলি লেরা মোর হরিক কে কতরবাত, লকলকানি আউরি হায়তা নে আসন সাংকে না সকে, লকলকানি আউরি হায়তা নে সাংকে না সকে, লেরা আরি জীবন নে মাতর উঠকে না সকে, লেরা আছে জীবন নে মাতর উঠকে না সকে, খোলো খোলো ভিতরে পানি আছে মাতর বোড় কে না সকে, খোলো খোলো ভিতরে পানি আছে মাতর বোড় কে না সকে, চাটু টুটি গলা আছে মাতর বদলবার তাকত নি আয়, চাটু টুটি গলা আছে মাতর বদলবার তাকত নি আয়, ডোঙ্গা নে কানা আছে মাতর সাংকে না সকে, ডোঙ্গা নে কানা আছে মাতর সাংকে না সকে, বলি দেবাস মুই জানি এ গোটার উল্টানিকে, বলি দেবাস মুই জানি এ গোটার উল্টানিকে, কাল টাকাছে এ বলবায় কি দুঃখ সহি কে না সকে, লাজে হই কেবে হায় রেলা কি সুরতা না যায়, লাজে হই কেবে হায় রেলা কি সুরতা না যায়, হাসানি থুকানি আসন যাকে সহি কে না সকে। মোর সরাসরি কবিতায় কাম বুতা ঝটকে সরা কি রাতি ঝটকে আইসি, কাম বুতা ঝটকে সরা কি রাতি ঝটকে আইসি, কর সকালে আপনার বুতা, যেবে রোঁডা ওসলে ভিজি রেসি, যেবে রোঁডা ওসলে ভিজি রেসি, তেবে না সোয়েতে রাহা, তেবে না সোয়েতে রাহা, যেবে উজর বাড়তে যাইসি, যেবে উজর বাড়তে যাইসি, হইসি বের জোয়ের ঘর, যেবে উজর বাড়তে যাইসি, হইসি বের জোয়ের ঘর, বুতা কর কি রাতি ঝটকে আইসি কাম নে তোর, বুতা কর কি রাতি ঝটকে আইসি কাম নে তোর, মহমত কর কি রাতি ঝটকে আইসি, মহমত কর কি রাতি ঝটকে আইসি, মুন্ডে বেরার ঘাম নে বলে কর, মুন্ডে বেরার ঘাম নে বলে কর, হায় সময় আয় নঙ্গত বেরা, হায় সময় আয় নঙ্গত বেরা, ওগায় নারা খুব্বে মহমত কর, ওগায় নারা খুব্বে মহমত কর, গোটক গোটক সময়া আসন কি যার কাই মহাং নাই, গোটক গোটক সময়া আসন কি যার কাই মহাং নাই, যেবে উজর বাগতে যাইসি হইসি বের জোয়ের ঘর, যেবে উজর বাগতে যাইসি হইসি বের জোয়ের ঘর।
1: হ্যাঁ, তো দেখা এ ভত্রি কবিতা পাঠ কে আম কি শোনাতে রা শ্রী সুনীল কুমার নিসার, এ কবিতা নে বলে কই কসন আমচো জীবনাচো শিখ রলি, এদায় সুনা ঠসা, আর এ ঠসা কে সঞ্চালন করসোত শ্রী রাম সিং কশ্যপ।
2: দাদা দিদি মন, আমচো বস্তর বলো নে খুবই সুন্দর আয়, কসন বলো নে আমচো বস্তর কে নেই বাহারিচো লোক মন বল দখতো কাজে, আর এতাচো রীতি রিওয়াজ কে জানতো কাজে, कितलो लोग मन रोजे बर कसन एसोत कसन बल्लो ने आमचो बस्तर ने काय सुंदर रान बन और काय सुंदर एताचो ठान मन और ए बस्तर ने कई प्रकार चो एताचो बोली होय से और एताचो बोलो ने रीति रिवाज बोलो ने सपाय बाटे अलग अलग और काय सुंदर होय से। दादा दीदी मन उसने देखा आमचो बस्तर चो रीति रिवाज आमचो बस्तर चो तीज तिहार ये सपाय के आम के भूलक तोरनो है कसन बोलो ने यही रीति रिवाज और यही परंपरा ने आमचो बस्तर के जान सोत और दूसरा लोग आमचो बस्तर के दख्तो काजे एसोत। जसन मैं बोल रहे कि आमचो बस्तर ने कई प्रकार चो बोली मन रहे से हल्वी भतरी गोंडी और बल बोली होय से उसने देखा दादी दी मन आमचो बस्तर ने जसन आमी कई बले काम बूता करूं से नाले बिया होय से बोलो ने कई बले बूता बनाऊ सुदल लाए गोटक बोलो ने हाँसी खेली बोलो ने उन मन के गोट बात ने बोलू से कसन बोलो ने एक अमी रिस उन बोल तो बोलू नहीं हुए उन्हें कहा हाँसी खेले ने अमी कहीं ना कहीं अमी बोलू से उनके बोलू से अमी ठसा तो यही ठसा के आजी सुना तो आज हम चल अमर ला सोत ये मनात संतोष कुमार बघेल अंजना नाग और पूरन सिंह कश्यप और उनमन संगे मैं राम सिंह कश्यप अमी बेर नहीं करू और आजी चो कार्यक्रम ने मूर करू तो दादा दीदी मन सबली पहल नहीं मई मूल कर आमचो बाड़ी ने बुनलू खेड़ा आमचो बाड़ी ने बुनलू खेड़ा दुआरी इली छाय आमचो बाड़ी ने बुनलू खेड़ा दुआरी इली छाय छाय दकुन दकुन हिंड तेरले अल्टी ओली
3: चुचाय सुकलो बांगा चुचाय सुकलो बांगा एबे काज थेवा तुमे एबे काज थेवा तुमे बियान के होय दे कुकड़ा भाजा
2: बोललो ने ये बोलत रहे ने कुकड़ा भाजा बोले पाचे का संगौ रहे ने दख ये तू काय नगत ठसा के सुना लिस अरे दख उसने और बोले आसे ये मन के बोले आले सुना
4: मुझे लग बोले सनी ठसा आसे बरसा बेरा चो शुरू तिहार बरसा बेरा चो शुरू तिहार अमूस लागे से दखा काय अमूस लागे से बिहानत ले झिमिट झिमिट पानी मारे से पानी मारे से ए दे जोगनी कीड़ा बुग बाग हासुन नाचे से
5: गोटोक थारी दुई अंडा गोटोक सीतर गोटोक गरम
2: कसन
5: कसन कसन बोले फिर दक गोटोक माई चुबल दुई जान पीला मन रहे गोटोक खिनिक धीरान रहे से और गोटोक खिनिक चांट रहे तेज रहे
2: सत्य बोल ली दादा देखो उसने मैं बोले और गोटक मारे था माता गुड़ी चो बोतलो बोकड़ा माता गुड़ी चो बोतलो बोकड़ा नाजुन था के माता गुड़ी चो बोतलो बोकड़ा नाजुन था के तू के नी बोल ले बलुआई मैं कोके
3: रंग रंग चो पिलपिली रंग रंग चो पिलपिली सब चो मन के भाये से सब चो मन के भाये से फूल ने बोसुन रस के चौकुन फूल ने बोसुन रस के चौकुन सब चो मन के ललचाए से लालच
4: बोलो ललचाए से उसनी मोके बोले ठसाचो और लालच आलेसनी गोटो का से बोले से
2: मैं
4: बस्तर चो बस्तरिया भाई मन बस्तर चो बस्तरिया भाई मन काके नी कर अभिने मारून पेटून खाउन गेला अंग्रेज चो दिने
2: बोलन दक हम चो बस्तर के बोलन ने कोनी बोले डरा तोलन मारून पेटुक लाय तो होय दे
4: चीने
2: काय
5: मैं बोल अमरान दक अदक नाही बोतलक नाही सगा घरे गेले काय मतलब
3: सत्य बोलले
5: मान सम्मान एउटा दखलो पाच बल भोतलक निकरावत ना दख निकरावत उता फेर हम तो सगा घर गेलो बिती काय
3: मतलब
5: मान सम्मान आगे हम तो आई दीदी मनुष्य करत
3: लो सगा घर चल कोंडक पानी राल तो काय मतलब काय
2: सत्यवल्लीस दख संतोष दादा तुम्ही ठसा पण किती चांगलास नाही आल तर कुसने और बला से आले की बोले मैं बोल सुनायस ना तुका पाल चो रोपा डांडा तुका पाल चो रोपा डांडा बारी गेली चेर
3: बारी गेली चेर
2: बारी गेली
3: चेर
2: बियावलीस गोनो ओलीस छांडरी ओलीस
3: फेर तो तू बोल डांडा भी तिक सांगलीस ने मीठा डांडा मीठा डांडा तिरका तेतर
4: तिरका तेतर
3: तिरका तेतर मीठा डांडा तिरका तेतर चेहरे से छेरी चेहरे से छेरी जतर
2: खता मीठा और तिरका के बोलो नहीं खा लो तो छेरे छेरे दे दे
4: चेहरे से जतर खता आले असनी गोटो और सुनू फिर धान सौकार ठाने बोल लो धान सौकार ठाने बोल लो नियाय बाबू धान धान सौकार ठाने बोल लो नियाय बाबू धान नांगर आना बेठिया करा तेबे पावा से धान
5: ताके पैसा मांगले कौन देव कौन कई बूता करता ना तेबे तुक मेरे दुई पैसा बल चाउर बल ना धान
2: उसने आके तक दा देती मन बोलवात की मसा गच्चो मुसा मार बोलन बिना मसा गच्चो ना आलो कसन मिरे दे आम के कहीं बोले काम बूता करू से तो आम के कड़ी मेहनत मसा गत करू पड़े से
5: उनकी तो बोलवात ना आगे रेली सोली पहली एबे होली किलो आगे रेली सोली पहली एबे होली किलो खूबे धान के न्यूरले मयन पड़ के से ठगुन दिल सेठ सौकार होता कसन
3: ये भी बस तो ठग सत किलो ने
5: अगर सेठ सौकार कम ठगते रहता मन पड़ना
3: ये भी बल ठग सो
4: हिंदुस्तान ने जन्म कर लू हिंदुस्तान ने जन्म कर लू जन्म भकवा रलू
3: जन्म भकवा
4: दादा दीदी जन्म भकवा रलू बस्तर ने स्कूल हो तो के एबे चतुर होलू
3: एबे चतुर
2: होलू चतुर रूप लाए पढ़े से बोलन पढ़ा लिखा बोलन तो चतुर रूप हो पढ़े से दख दख अंजना बहिन का रचिया ये जो ठसा के तुम्ही सुना लास दख उसने मतलब बोला और पढ़ा लिखा भी तीना से लेके बोला ले सुनो
4: आले
2: सियान पढ़ा जुआन पढ़ा पढ़ा धंगड़ी मन सियान पढ़ा जुआन पढ़ा पढ़ा धंगड़ी मन नी पढ़ले बसानी बुलवात नी पढ़ले बसानी बुलवात पढ़ले भारी मान
5: ठान दे दे मान सम्मान अलग
2: दख और आम चल लगे पूरन सिंह दादा से आले आले तुम बल मुर करना
3: बस्तर चो नुआ तियार बस्तर चो नुआ तियार साल ने हो से
2: एक हार
3: साल हो से नानी पीला के चुमुन देऊ से नानी पीला के अमी चुमुन देऊ से सियान सजन के करू से जुआ सियान सजन के करू से जुआ
2: सत्य
5: सत्य सत्य सत्य मात्र आमचो दका आमचो बस्तर के दका दादा दीदी रंग रंग चो पिंदा ओड़ा रंग रंग चो नाचा कसन रंग रंग चो पिंदा ओड़ा रंग रंग चो नाचा दिहार बाहर लोग ही लेने नी भूल को देसी के चाउर भाजा
2: चाउर
5: भाजा लोग बाग इतना नवा बीता बोली हम चुपाटून के हम चो गोटो व्यंजन आए बोलू आम ठोली काई काई होली तो हम चो व्यंजन आए हम बस्तर चो
2: सत्य बोली दख और उसने दख अंजना बहन मन लग बला सका
4: पढ़ुक लिखुक सीखा तुम्ही राज के चलावा पढ़ुक लिखुक सीखा तुम्ही राज के चलावा जुहार बाबू बोल ले कोनी मुंड के हलावा
3: जुहार बोल मत मुंड के हलावा
2: आपका कंडी पढ़ा लिखा रहो पढ़े से कसन बोल तक कोनी बोल तक दादा दीदी मन पढ़ा लिखा रहो रसत नहीं तो उन मन के मान सम्मान ने कंडी पूछ पचारा बोल कर सो और जुहार उन मन के जुआर
3: बोल नमस्कार बोलन बोल कुन कुन मुंड के बोल
2: सत्य बोलिस अंजना मईन उसने आम लगे तक दादा लगा से ए दादा तुम बोल मुर करा ना
5: तो देखा आमचो बस्तर खूबे सुंदर सबले पूरे हिंडे से दादा दीदी सबले पूरे हिंडे से बड़े बड़े बाट होली रिक्शा मोटर जोड़ा जोड़ी अदाय ठेबा बस्तरिया दादा दीदी कोना कोना ने रेल अमरे से
2: देख दादा दीदी मन काय रसिया देख बोलो ने ठसान बोले कई प्रकार चो आम के जान तो गोट सिख तो गोट मन बोले रह से तो असन गोट मन के आम के लेख कर तराय और देख ए आम चो जन बस्तर चो परंपरा बोल रह से ने तो ये मन के आम के भूलक तोरनो आय देख आज चो कार्यक्रम ने ठसा के आम चलोगे तुम चलोग सांगते रहोत ये मन रहोत संतोष कुमार बघेल और अंजना नाग और पूरन सिंह कश्यप और मैं बोलने राम सिंह कश्यप इतरो आज चो जो कार्यक्रम रहे ये मन के सुनाला देख एना आम चो जातो समय हो से तो विदा दिया आज जो कार्यक्रम सुन तो सपाय दादा दीदी मन के हमी सपाय करूं से
3: जुहार।
1: हाँ तो देखा ठसा के संचालन करते रला राम सिंह कश्यप और ये ठसा ने बोले देखा गोट गोट ने हासी हासी ने कई कसन बोले ने आमचू जीवनाचू सीखचू गोट मन रली तो एदाय सुनाय सोत हल्बी कहानी श्रीमती आशोवती कश्यप
6: मुझो कहानी चो नाव है मूसा और हाथी चो मीत खुबे दिन चो गोट है गोटोकरा ने सपाई जीव जानवर चढ़ी चुड़ूंग मिलून मिसुन हरी कुदिम ने रते रो मारपीट चोरी हारी और कई दूसर तीसर कई नहीं होते रहे बाघ और छेरी मेंढी गोटक घाट ने पानी पीते रहो हुन रान ले खुबे नदी नाला बहते रहे मांतर गोटक बरक इतलो गर्मी पड़ली कि नदी नाला चो पानी सुखुन गेली लाटा उटा मरसोत पानी पजरा डबरा मन बोले सुखली रान बन ने जीव जानवर चढ़ी चुड़ू मन चो आहाकार मछली डहाल बिकल होए सोत सपाय पानी डगर ने ए रान हुन रान बुले सोत कोनी लगे पानी चो पता नी चले सब जानवर ले ए जानवर के भारी आफो दिली और मार पड़ली कसन बोलेन हुंचो सुपा आसन कान मोंगरीडेरी असन पाए और मुसर मुंडसन लेंगड़ी पर हुंचो भजन बोले हाय लाई फुटलो असन गर्मी मांतर गोटक बूंद बोले पानी नी आए हाथी मंचो मुखिया हुंचो नाम रहे बड़े दांत खुबे चिंता फिकर पड़ली और सोचे से कि पानी चो जुगाड़ कसन कर ले होय दे नहातर तो दूर दूर पीतर बोले मुश्किल होली से उदली दाए गोटक हाथी हुन लगी लो और बोले से मुखिया के हुजूर मके पानी पानी मालूम होए से कि पानी चो कौन दिशा ने मिरे दे समुद्र लेंगड़ा बाटे पानी मिरतो असन आसे आमचो संगवारी चो गोट के सुनुन मुखिया बड़े दांत छाती फुलाउन सांस धरलो और आपलो गोहड़ा चो सपाय हाथी मन के हुताले समुद्र लेंगड़ा बाटे जाऊ बोललो जोन हाथी पानी मिरतो गोट के सांगते रहे हुन हाथी पूरे पूरे जाए से बाकी हाथी मन बोले उनचो पाट पाट जहाज जाए सोत ए रान हुन रान होते हाथी मन थकुन गेला डंडी सुस्ता तो काजे गोटक हाथी बोले से सपाय हाथी हुन हाथी चो गोट के सुनुन थेबला और डंडी सुस्ताला हुनी लगे गोटक सियान बुड़गा हाथी के बड़े असन झरना दखा दिली सपाय झरना लगे अमरला और पानी के दखुन इतलो हरी खोला जोर जोर ले गरजुक मुरियाला पानी पीऊन पानी भीतरे ढबरुक धरला और पानी ने पीला हाथी मन बोले खेलुक मुरियाला खुबे दायले पानी थाने रोन पासे पानी ले निकरला सपाय हाथी पेट भर पानी पीला और निकरला आप लोग मंद मस्त रेंगा ने जाते रहोत हाथी घोड़ा जोन बाटले गेला हुन बाटले भूई ने मूसा मंचो भील बोले रे हाथी मंचो पायले खुबे असन मूसा मंचो मूसा मन दबुन कुचलुन मरला जोन बाकी बाचला हुन मन के फिकर धरली कि कसन ले हाथी मंचो ले जीव के बचा तो राय बोलून सोच विचार करे सोत और सपाय मूसा मन हाथी मंचो मुखिया बड़े दांत लग गेला और गुहार करला मूसा मंचो मुखिया बोले से हुजूर तुम चो ये तो जातो बाट के आमचे घर भील लगेले बदला असन बोलून गोटक सियान मुसा फिराद मांगलो आमचे पुरगा पाटी ई जगाने रते येऊसे आमचे पिढी पुरकाचो बनालो घर आसे तुमन मन गोहडा गोहडा ए बाटले येतो जातो रुआस तो खुबे आमचे लोक तुमचे पायने देऊन मरेसत तुमके विनती करूसे एदाय येतो जातो बाट के बदला नाले आम्ही उपडता मरून दे आम्ही नानी जरूर आव मांतर केबी बोले तुमचे काम येऊ शकून दे असन बोलून गोटक सियान मुसा बोललो असन गोट के सुनून गोटक हाती हासलो और बोले से नानी असन मुसा आमचो काय काम येसे आमचो इतलो डोंगरी असन दे पाय हाती के मुसाचो काय काम मांतर हाती मनचो मुखिया बड़े दात खुबे समझदार और दयालु रे हुन बोले से तुम्ही चिंता फिकर नी करा मैं हाथी मन के बाट बदलें दे बोले से असन गोट के सुनून मुसा मंचो मुखिया बोले से तुमचो खुबे कृपा आसे आमचो लायक कई बोले काम पड़ लेन याद करा आमी यूं दे बोलून मुसा मन बोले सोत हाथी मन और मुसा मन आप लोग काम काज बाटे गेला खुबे दिन होली नदी झील कटा हाथी मन और मुसा मन हंसी खुशी में रहते रहो गोटक रोज जो असन हाथी मन झील झरना बाटे जाते रहत उदली दाए गोटक के हाथी चो पाए ने सिरका फांसी धरली हाथी जोर जोर ले कोलार करुन चटपटाउन थाकुन गेलो फांदा ले फसुन और कोनी हाथी बोले हुनके निकराव नी सको हाथी मन चो मुखिया बड़े दांत समझ लो असन करनी कोनी शिकारी मन कर लासोत फांदा के निकराउक नी होए से सांझ होते जाए से फांदा ने लटक लो हाथी के छाड़ून आप लो रतो लगे गेला रात भर विचार करे सोत कसन आमचो संगवारी के फांदा ले छंडावा हुनी मौका ने शिकारी मन फांदा लगी गेला फांदा ने हाथी के देखुन हरी खोला हाथी तो मरलो असन थाकुन रहे काय करतो शिकारी मन चारो बाटले पाए के बांधला और हुनके हुताले नीला नेउन डोंगरी कटाचो एकटा बोर्ड रुके बांधला और आपलो घरे गेला ए बाटे बड़े दांत संगे सपाय हाथी मन सोच विचार करे सोत मात्र सपाय परेशान हो रोत तेबे बड़े दांत के मूसा मंचो गोट के याद दिली हाथी मन के भी सपना ने बोले नी सोचुन रला मूसा मंचो बोले मदद धरुक पड़े दे हाथी मंचो मुखिया बड़े दांत मूसा मन लगे खबर पटालो और पूरा घटना चो जानकारी दिलो खबर सुनुन मूसा मंचो मुखिया संगे सपाय मूसा मन हाथी मन लगे इला हाथी मंचो मुखिया लगे अमरला बड़े दांत के जुहार करला और विपत्ति की पूछला हाथी मंचो मुखिया सपाय घटना के सांगलो सुनुन मूसा मंचो मुखिया पूछे से आमचो मित्र के कोन थाने बांधला से हुन जगह ने आमके निया आमके जश्न बोले काम पड़े दे करुन दे सपाय मूसा मन हाथी मंचो पाट गुते बसला और राती बेरा डोंगरी कटाचो एकटा बोर्ड रुके गेला शिकारी मन बांधलो हाथी लगे नीरोत उदली दाए सपाय मूसा मन बांधलो डोरी के आपलो छुरा आसन दांत ने गोंदा गोंदा करला बड़े मसागत ने सपाय बांधलो डोरी के कतरला हाथी के बांधलो डोरी छीडली हाथी के झटपट उठाला और हुनके हुताले झटके झटके सपाय रान बाटे नीला हुनी हाथी रहे जोन मूसा मन के हासुन नानी समझुन रहे खुबे लाज पड़लो और मूसा मंचो मुखिया के माफी मांगलो और मूसा मन संगे मीत बांधलो दख्तो ने नानी होले बोले कोनी नानी नी होत बड़े दख्तो ने हाथी के डोरी ने बांधुन रहत हुनके कई करुक नी सकला मूसा मन नानी आत्मांतर आपलो बुद्धि ले हिम्मत करुन डोरी के कतरला और हाथी के डोरी ले छंडाला आजकल जो दिन दिन ने नानी बड़े गरीब अमीर सपाय गोटकी मंचो मुखिया सपाय घटना के सांगलो सुनुन मूसा मंचो मुखिया पूछे से आमचो मित्र के कोन थाने बांधला से हुन जगह ने आमके निया आमके जश्न बोले काम पड़े दे करुन दे सपाय मूसा मन हाथी मंचो मूसा मन नानी आत्मांतर आपलो बुद्धि ले हिम्मत करुन डोरी के कतरला और हाथी के डोरी ले छंडाला आजकल जो दिन दिन ने नानी बड़े गरीब अमीर सपाय गोटकी संगे मित्र भावन रत राय के भी बोले कोची बोले काम पोड़ खोए दे नानी बड़े सपाय संगे मिलुम निशुन नगत रत राय मचो कहानी हिताय सरे से।
1: हाँ तो दखा आसो वती कश्यप चू कहानी के आमी सुनलु दखा एता बोले कितलो बोले ने सीख रली जसन की आपन मन कहानी ने सुनलास मूसा आरु हाथी मंचो कहानी बोले ने हाथी कितलो बड़े भारी रहे से भरसम रहे से आरु मूसा बल्ले नानी नानी असम रहे से मांतर ये मंजी ने आम के जीव तो काजे सब चो संग हो तो जरूरी है नानी हो कि बड़े हो गरीब हो कि सौकार हो दुखी हो कि सुखियार हो बल्ले ने सपाय मिलुन मिसुन बाती रलो ने बल्ले ने कई चीपा अटकनी इली बल्ले ने आम के बोले ने नानी लोग बोले संग देव सको तारु बड़े लोग बोले संग देव सको दुखी लोग बोले संग देव सको आरु सुखी लोग बोले संग देव सको गरीब लोग बोले संग देव सको आरु सौकार लोग बोले संग देव सको ये सपाय चो संग ने आमचो जीवना चले से। तो दखा असने सुनते रहा आमचो लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी के तो सपाय सुनतो लोक के मोचो बाटले खूबे खूबे सेवा जोहार।

अभी आप लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी सुन रहे थे। संपादक थे बलबीर सिंह कच्छ। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। समय दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

घर दुआर कार्यक्रम सुन तो सपाए आया मन, दीदी मन, बहन मन और सपाए संगजौरिया संगवारी मन के, मैं तुम्हें सपाए चो तारा करे से जुहार, और सपाए पीला मन के मचो बाटले खूबे खूबे मया और चूमा। तो बहन मन कसन आसस तुम्हें सपाए, नंगत नंगत आसस बेकाए, आशा करे से तुम्हें सपाए बहन मन नंगत नंगत आसस बे। बहन मन तुम्हें सपाए असनी नंगत नंगत रहा और हरि को दिमने रहा, तेवे तो तुम्हें सपाए नंगत नंगत और हरि को दिमने रला साले, मके बले हरि का और नंगत लागे दे हाय कसन। बहन मन जसन की एबे आए घाम बेरा छो समिया ने, चरचड़ा घाम छे के से जेठकार जो समिया आए ने, घाम तो छे के देची डहा डहा लागे से, तो असन ने काया है तुम्ही आप लो जोन सेहत बलू से उनचो नगत दखा रखा करा, घामे तपे जातोर ले बाचा छाता नहाले फिर तुआल के ढाके हो रहा घामे कहाँ जाऊ कुलाए पड़े से बल्लो ने, और सियान सज्जन होला पीला झीला होला ए मनचो खिंडिक आगर ले आगर दखा रखा करा। ए गोट मन तो होली बहन मन, मांतर मैं काय बलते रहे दखा रखा ले सुरता एली, आमी सपाए दखा जोन बहन मन आओ आप लोग काम बूता मन ने भूलू रहू से ने, घर चो काम बूता होली बाहर चो काम बूता मन होली, असनी काम बूता मन ने ची आमी बियान ले धरून संस तक ले भूलू रहू से ने, असन ने आम के ए लोग काजे समया नी मिरुआ, आमी खुद चोपरे ध्यान बल दे उकलाई नी सकुआ ने। सत्य गोट मन आए मन कएक बहिन मन असन आसोत जे मन घर चो हर बूता के करुआत बियान उठून भाती, रांदा बाड़ा होली घर चो बूता भयना पीला झीला के नहा तोर धुआ तोर तैयार कर तोर खाद खवई सपाए ने, और फिर बाहरे वाले काम बूता कर उकलाए जासोत उतरो काम बूता कर लो पाचे वाले, और फिर संजबेरा ए उन भाती फिर घर चो काम बूता ने बोरलो रसोत। तो असन ने कहा बहिन मन खिंडिक बल्ले जो नए समिया नी मिरे ने, मूरे समिया नी मिरे खुद चो काजे, मांतर मैं तुम्हें सपाए बहन मन काजे बलुकलाए चाहे से कि आम के आम चो खुद चो जिम्मेदारी खुद के ही धरुकलाए लागे दे। सबले पहल आप लो नगद स्वास्थ्य काजे, हरिक उदिम काजे, शिक्षा काजे, नगद भविष्य काजे और घर परिवार काजे बले ने, और खुद के ही खुद काजे खिंडिक समय निकरौन भाती आम के काई बल करुकलाए पड़े दे, भले हु ना आम चो स्वास्थ्य ले जुड़लो काई बले तीज हो नहाले हरिक उदिम हो ने। ये तो खूबे नगद गोठ मनाए बहिन मन, फिर बले और गोटोक नगद गोठ में बलुकलाए चाहे सा तुम्हें सपाए के, जसन के कई बहिन मन घरे रसोत तो उन मन घर चो काम बूता के कर सोत, और खिंडिक समय उन मन के मीरे से काम बूता कर लो पाचे खाद लो पीलो पाचे ने। तो असन बहिन मन का है आप लो घर ने ची रहून भाती काई बले काम बूता के।

0: मूर्ख रुकलाय सकोत। कई बल काम बुता के मूर्ख रुकलाय सकोत, जहाँ अचार बना तो बीती होली, पापड़ बना तो बीती होली, बोड़ी बना तो बीती होली। और बोड़ी बले असन रहे से कि कहे बानी बानी चो बने से बोड़ी मन, और संदान बले बानी बानी चो बने से ने। तो ए मन के बनौन बाती आप लोग घर ले ची कई काम बूता चो मूर के करुक लाए सकोत, आप लोग खुद ले बले करुक लाए सकोत, नहाले फिर जोन घरे लोग मन रसोत बहिन मन और बले उन मन संगे मिसुन भाती बले करुक लाए सकोत। और हुतरो होलो पाचे बले और कोनी हुन थाने मिसुक लाए चाहे सोत, नहाले फिर सीखुन भाती उन मन बले काम करुक लाए चाहे सोत, तो उन मन के बले मिसा उन भाती उन काम के सीखा उक लाए सकोत, उन काम काई बले हुक लाए सके बहिन मन। जसन की मैं ये बेची बल ले पापड़ बना तोर होली, संदान बना तोर होली, बोड़ी बना तोर होली, नहले पर और कई एक तीज मना से जसन के कपड़ा लता सिल तोर होली। और कई बल्ले जो कला हुनर भी तीज मन रहे से जेके कई एक बहिन मन जान सोत, तो उन सब तीज के बल्ले दूसर बहिन मन के बल्ले सीखा उकला ऐसा कोत गाँव पारा चो। और उन मन के बल्ले रोजगार मीरे दे असन ने, और तुम के बल तो रोजगार मीरे दे संगे मिसुन भाती करा से तो बले नंगत आए, और खुद बले करा से तो बले खूबे नंगत आए। असन ने कहा है बहिन मन तुम ही आप लोग पाए ने ठिया हुआ से और दुई पैसा कमावा से बले काय सुंदर, और उन दुई पैसा कमाऊ रहा से तो उन पैसा घरे खाजा चरवन चो इतरो बले काम आए दे जो पीला मन रसो तुन मन काजे, नहाले फिर कहीं समय आने काम पड़ लो ने उन पैसा काम बले आए दे, नहाले फिर तुम चो तो काम ही चाहिए दे उन पैसा के तुम्हें संगा उला साले आए कसन बहिन मन। तो आम के काया है अगर चाहो से बल्लो ने अमी असन नानी नानी काम बूता के मूर्ख रुक लाए सकू घर ले समय निकरण भाती, कसन बल्ले ये काम बूता असन आए जहाँ दिन भर जो समय तो देव लाए नहीं लागे, खिंडिक समय निकरण भाती करुक लाए सको ते काम बूता के। और सबले अच्छा ये बले रहे दे कि झंझट नहीं हुई हो बलून भाती, एक समूह चो रूप ने बले बहिन मन तुम ही काम लाए काम के करुक लाए सका से काम के। और ये चौका जी का सरकार बाटले लोन बल तो बीती बले मीरे से, लोन बल लो ने फिर उन पैसा हो से नहीं बैंक ने जाऊन भाती उन काम बूता के मूर कर तो काजे लोन धर सो कई बहिन मन समूह चो माध्यम ले, तो असनी बल्ले तुम्ही बहिन मन करुक लाए सकास। तो बहिन मन ये तो काय सुंदर नगत गोठ मन रहे तुम लेख करा तुन मचो बल्लो गोट बात मन के, तो अदाया और बल्ले नगत झाला बीती गोठ मना से ए गोठ मन के बल्ले सुनुता उनचो पाचे फेरा मी गोठिया मा।
1: इत बदले मत्ता अच्छा मानेडा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्ता जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे। यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दोरकिता। GST तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: बहिन मन जसन की मैं बलते रहे स्व सहायता समूह रूप ने बले तुम्ही काम करूक लैसा का समूह रूप ने मिलून भाती, असनी ये गोटोक दखा गोटा से भेंट वार्ता भीतरे जसन की अमी आमचो कार्यक्रम मन ने कहेगी अंध्यान बीती गोट बात मन के धरुण भाती, तो एते रुआ असनी आज ये गोटोक भेंट वार्ता कार्यक्रम के मैं तुमचो का जे धरुण भाती इले से एथा ने गोट बात कर सो बहिन लवली कश्यप एमना स्व सहायता समूह ले, और एमन संगे भेंट घाट करून गोट बात कर सोत एमन आद बलबीर सिंह कच्छ अले एमन काय काय गोट बात मन के गोठिया सोत, और ए लवली कश्यप बहिन काय काय गोट मन के सांग सोत। पहिल एमन चो गोट बात मन के सुनुता उनचो पाचे फिर अमी गोठिया मा
4: घर द्वार सुन तो बहिन मन आज गोटोक स्व सहायता समूह छो फिर गोटोक मैं इली से आमचो लगे सबले आगे तुझो नाव सांग
5: लवली कश्यप।
4: लवली कश्यप अच्छा, तो लवली ए सांग जसन की तुम चो स्व सहायता समूह से काय नाम है?
5: सुरभि समूह।
4: सुरभि समूह अच्छा, तो समूह ने कितने लोग आसा साले?
5: दस लोग।
4: हाँ। कितलो दिन असन होली समूह बना लो?
5: होली 10-11 साल होली।
4: 10 साल होली हाँ। अच्छा बोले ने समूह बोले ने काय चीज का जो बनाओ रोला काय काम करो ने सन काई सोच ला सोती?
5: हाँ, यही सब काई स्कूल वगैरह चला तो ये काई काई चला तो का जो धरो।
4: अच्छा हाँ हाँ, तो ये भी समूह ने काय काम कर सा चाले?
5: ये भी कुमार पर आयुर्वेदिक ने मरीज मन के खाना दे तो काम धर लो से।
4: अच्छा, ये जिला आयुर्वेदिक अस्पताल।

0: अच्छा, भले ने मरीच मन के होता
1: खाना देते हुए दोनों टाइम।
0: दोनों टाइम
1: हाँ
0: अच्छा, भले तुम खुद बनाए साथ।
1: हाँ
0: समोच लो,
1: समोच लो बनाओ सर।
0: अच्छा
1: न्यून दो।
0: अच्छा, तो जसन की खाना जोन बनाए साथ बोले
1: हाँ,
0: हनुमान चो जन पूरा सामान है बोले खाना बना तो सामान।
1: हाँ,
0: बोले तुम के तुम जो खुद चो है कि
1: कुछ है?
0: कुछ चो है
1: कुछ।
0: अच्छा, बोले ने तुम के खाली बोले ने उन चुका जे पैसा मेरे से।
1: पैसा मेरे से।
0: अच्छा, पैसा कितना आन दिन ने मेरे साले?
1: एक हर महीना।
0: हर महीना मेरे
1: हर
0: से।
1: महीना मेरे।
0: अच्छा, दक खाना बना तो काज तो कहीं उनचो मेनू असन रहे से भी ना।
1: हाँ,
0: मतलब काय कौन दिन कसन बना
1: काय देते रहे।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो ये सब चीज बने ली से।
1: हाँ,
0: कौन दिन
1: बने
0: काय
1: से।
0: साग आए, काय
1: हाँ,
0: रोटी आए कि भात आए, काय आए?
1: रोटी आए,
0: हाँ,
1: दाल आए, सूखा सब्जी अलग,
0: अच्छा
1: चावल
0: अच्छा बोले रोज देना?
1: रोज दोनों
0: अच्छा,
1: टाइम।
0: दोनों टाइम।
1: हाँ,
0: अच्छा, बोले रोटी चावल दाल सब्जी दोनों टाइम।
1: दोनों टाइम।
0: अच्छा, सब्जी कितलो प्रकार चो देसा जाले?
1: सब्जी बोले भाजी बोले केवे
0: हाँ,
1: तो जोन सब्जी मेरे उन सब्जी।
0: नहीं मतलब कितना आइटम रहे से गोटो एक
1: एक ही
0: संग?
1: सब्जी,
0: एक ही
1: एक
0: सब्जी।
1: ही सब्जी और दाल अलग।
0: अच्छा, और उनचो संग संग और काई?
1: और काई नहीं, केवे
0: अचार
1: कबार,
0: पापड़ काई?
1: केवे अचार, केवे कबार है,
0: हाँ,
1: और थोड़े बहुत पापड़ वापड़ बोले,
0: हम्म,
1: और केवे केवे अंडा बोले मरीज दहुन भाती
0: अच्छा
1: उबला अंडा।
0: उबला अंडा।
1: हाँ,
0: अच्छा, हम्म, और कहीं ऐसा मांस मछली वगैरह बोल दे तो भी?
1: नहीं
0: नहीं,
1: नहीं मरीज
0: बिल्ले पूरा
1: मन
0: शाकाहारी।
1: शाकाहार।
0: हाँ, अच्छा, कहीं उन मन के गोरस वगैरह बोल दे तो रहे ऐसे कहीं? नहीं,
1: नहीं ये भी तो वो सन नहीं बल्ला सोत।
0: हम्म,
1: और सवेरे नाश्ता,
0: हाँ, अच्छा सुबह नाश्ता बोले?
1: नाश्ता मिले
0: अच्छा, नाश्ता कितने बजे देसा साले?
1: 7 साढ़े 7 केवे केवे 8 बजे जाओ है।
0: अच्छा, खाना दो ही टाइम ने है
1: हाँ, खाना 2 टाइम,
0: और नाश्ता एक टाइम ने?
1: एक टाइम।
0: अच्छा, तो बोले ने चो जैसन की घोटक मरीज चो हिसाब ने बोले
1: हाँ,
0: ने तुम के कितलो पैसा मिले?
1: 100 रुपया।
0: 100 रुपया
1: हाँ
0: एक मरीज?
1: हाँ
0: हाँ, तो ये मन चो हाजिरी वगैरह बोले हो ऐसे होती?
1: हाँ रोज दिन है मैडम, मन पे डाटा बना हुआ अर्धवत महीना ने की बार,
0: एक के बाद?
1: एक ही बार।
0: अच्छा, हाँ, पे डाटा बोले ने होता है ले?
1: हाँ, जानकारी
0: हाँ, अस्पताल ले बोलने से?
1: अस्पताल ने
0: अच्छा,
1: अर्धवत
0: हाँ, ये कितलो
1: हो
0: दिन सुनो लिए खाना बनाते भी थे काम?
1: 2 साल।
0: अच्छा, 2 साल ले।
1: हाँ,
0: अच्छा, मतलब होता जैसे कि खाना बना तो काज बोले तुम के काय करुक लाए पड़ली काचो लगे भेंट गाँट मिल कहो पड़ली कसन
1: तो
0: जान?
1: जो जो मेन सर आए
0: हाँ
1: तो उसने पता कर लू और गेलू,
0: हाँ
1: फिर उनकी फार्म आम
0: हाँ
1: धर लू, पता कर लू और फिर तुरंत चालू कर लू।
0: अच्छा, हाँ, तो ये चुका जैसन कि चावल वगैरह जैसन भात बनाए सर,
1: हाँ,
0: तो उनचो कहीं क्वालिटी वगैरह रहे से कौन चावल के बना तो?
1: नहीं नहीं
0: नहीं,
1: नहीं
0: अच्छा तुम चे हिसाब ने रहे सर।
1: हाँ,
0: हाँ, तो जैसन कि एक मरीज 100 रुपया ने
1: 100 रुपये।
0: आए बोल साथ, तो तुम सब लोग मिले उन बातें बनाए साथ,
1: हाँ
0: तो तुम चुका तो फायदा वैसे होते भी ना कि नहीं?
1: हाँ फायदा हुआ है। हाँ,
0: वैसे अच्छा, तो एक मरीज के जैसे कि तुमके 100 रुपया मेरे से, तो एक मरीज के पीछे कितलो तुमके बाचे से जाले?
1: बाचू है 30-40 रुपये तो बाचू है।
0: 30-40 रुपये बाचे से? अच्छा,
1: तीस।
0: मेहनत तो लागे से
1: हाँ,
0: चीज।
1: मेहनत लागे से।
0: हाँ, तो ये चुका जे जैसन कि पूरा जो सामान आ से?
1: पूरा सामान इकट्ठा धरू हूँ
0: हाँ,
1: फिर।
0: नहीं जैसन गंजी आए कढ़ाई आए
1: हाँ,
0: चट
1: आसे
0: आसे
1: आसे
0: और थाली बर्तन काय काय जाले?
1: ए थाली में मरीज में नानू रुआ
0: अच्छा, उन मनानु रुआ?
1: आनू रुआ तो उन मन तो थाली नहीं देते रहे।
0: अच्छा, मतलब पूरा कहीं बोली चीज ने जंजगी वगैरह ने उन बातें पूरा
1: हाँ
0: बाटून दे साथ
1: हाँ
0: उन मन थाली धरून बातें ऐसा बोले?
1: हाँ
0: हाँ, तो खाना समय दे तो बोल रहे से टाइम होती दिन ने सांझ के?
1: हाँ दिन ने 12 बजे आज शाम के 6 केवे केवे 7 बजे।
0: अच्छा, हाँ, तो सोचे मरीज मन के ही दे तो रहे से कि उनसे संगीलो लोग के बोले आए?
1: उन चलो इलो लोग मन के बुलाए,
0: इलो लोग के
1: इलो
0: बोले?
1: लोग मन।
0: अच्छा, तो होने हिसाब में फिर तुम की मेरे से बेका है
1: हाँ,
0: जैसे गोटो
1: एक पेशेंट लगे एक जन
0: एक जन?
1: युवा तो उन दोनों से मेरे हुआ है
0: अच्छा,
1: पैसे।
0: दोनों चो मेरे से? हाँ, तो ये भी कितलो सन मरीज आसोता ले?
1: ये भी तो 15 मरीज आसन।
0: 15 मरीज आस?
1: हाँ, के भी
0: अच्छा,
1: 15, के भी 20,
0: हाँ,
1: के भी 25, के
0: अच्छा
1: भी तो 5, के भी 3
0: अच्छा
1: आसन रुआ,
0: बोले कम ज्यादा होते
1: कम
0: रहे?
1: ज्यादा होते रुआ।
0: हाँ, तू बोलू वे सब मिलुन बाते साग भाजी हाँ। बना तोर बोले सब हाथ बटाए साथ हाँ। दस जन जो ना सब हाँ। हाँ। संग और काय काम आ जाले
1: इच संग फिनाइल काम करते रहूं
0: फिनाइल
1: हाँ।
0: अच्छा
1: रायपुर ले आते रहूं केमिकल बिकती हूँ और मिलान भाती फिनाइल बिकते रहूं फिर भी खूब होली बिकत लोग मन
0: अच्छा
1: तू नहीं कहजे भी उन काम थोड़े कम आसे
0: कम आसे
1: कम आसे
0: अच्छा आगे शुरू शुरू में बिकला
1: हाँ, अच्छा बिकते रहे
0: अच्छा
1: शुरू शुरू
0: एवे तो बनात लोग बोले खूब बोला
1: हाँ,
0: दुकान मन ने बोले मेरे
1: दुकान मन ने बोले मेरे
0: बोले तुम चु फिनाइल चु बिक्री कम होतली होते जाइली वे ने
1: तेवे काम बाट
0: अच्छा तो ये चल कहीं अलग बोले तुम काम कर सास की जैसे व्यक्तिगत हिसाब ने
1: नहीं
0: नहीं ने अच्छा समूह ने ची बोले वे खाना ची बना तो काम है तो कसन लागे तुम की सब काम कर तो के
1: अच्छा लागे
0: अच्छा लागे से अच्छा नहीं जसन की दस जना साथ तो हन मन आप लान का जे और बोल कहीं दूसर बोल काम करू बात होती
1: नहीं ये समूच काम है सब
0: समूच काम है बाकी सब असन घर च घर ही रत
1: घर अच्छा रत लोग मन
0: अच्छा ठीक है तब अच्छा है बल्ले ने कहीं काम ने जुड़ू रोले
1: हाँ,
0: ने बल्ले मन बल्ले बहले से है कि नहीं और अच्छा बल लागे से ये
1: हाँ,
0: जसन खाना उना बना दे तो बीते गुटोक सेवा बल्ले
1: सेवा
0: है कि नहीं तो अल दिव्या कश्यप तो इतलो अच्छा बल्ले तू चो स्व सहायता समूह ने काय काय काम बुता करुआ से सब गोट के सांगली साल को जुआर जुआ
2: तो बहिन मन ए भी आमी ये भेंटवार्ता कार्यक्रम भीतरे कितरो सुंदर गोठ मन के सुनलू ने ए थाने बहिन लवली कश्यप मन गोठ बात करून भाती सांगते रहोत कि अमन जोनात 10 साल ले स्व सहायता समूह ने जुड़ला सोत और हुन थाने रहून भाती काम कर सोत ने और बहिन कितरो सुंदर मेहनत मसागत कर सोत ए समूह भीतरे और 2 पैसा कमा सोत बले ने और आत्मनिर्भर होला सोत आप लो पाए ने ठिया आसोत तो असनी ये भेंटवार्ता कार्यक्रम रहे तो दखा आम्ही आमचो कार्यक्रम मन ने कई ज्ञान ध्यान भीती गोडबात मन के झाला मन के धरुण भाती उची आऊ मानतर आम्ही गीत मन के बले धरुण भाती एवकलाय नी भूलकू असनी एक काय सुंदर गोटो गीता से एक गावला सोत रात्री देव और हुन मंचो संगवारी मन आले पहिल ए मंचो गावलो गीत के सुनुता उनचो पाचे फिर आम्ही गोठियावा

रासरी देव और हुन मंचो संगवारी मंचो गाँव लोई काय रसिया गीत के ने और दखा ये गीत के सुनून भाती तो खूब्बे हरिक लागली। मैं तुम चुका जे और बल्ले गीत मन के धरुन भाती इले से कसन बल्ले आम के गीत गोविंद के सुन लो ने हरिक बल्ले लागे से और मन के बल्ले अच्छा लागे से ने वसनी गोटोक और गीता आसेता एक गावला सोत ममता चंद्राकर और हुन मंचो संगवारी मंचो।

तो बहिन मन ए भी आमी सुन लो ममता चंद्रा कर और हुन मन चो संगवारी मन चो गावलो ए काय सुंदर गीत के अदाय फिर और गोटो गीत आसे ता ए गीत के गावला सो बुदरी और हुन मन चो संगवारी मन ए आय बिहाव गीत अले।

அடிதாட்டா ஜூனு தவேரா.

झूल तो वेरा।

因爱生。

primavera.

सुन लो बुधरी और हनुमंचो संगवारी मंचो गाओ लो एक काय सुंदर बिहाव गीत के ने। तो देखा अदाय मचो जात तो समिया होय से तो मके जाओ कलाई पड़े दे असनी में फेर के भई तुमसे संगे भेंट हो कलाए दे। तुम्हें सपाए बहिन मन नंगत रहा स्वस्थ रहा हरि कुदिम ने रहा और खूबे खूबे बाढ़ती उन्नति करा मचो बहिन मन। अले विदा धरे से घर द्वार कार्यक्रम सुनतो सपाए आया मन दीदी मन बहिन मन और संगजौरिया संगवारी मन के जातो पूरे मैं तुम्हें सपाए चौतारा करे से जुहार।

अभी आप ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले

0: में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब सुनिए कृषि समसामयिक की बेड़ा खड़ा चौकोट।
2: काश्तकार दादा दीदी मन पाक फर ले आम के बल बपू मिरे से, संगे संगे टोंड चो स्वाद तो मिरे से चे। असनी साग सब्जी बले आम चो खादी ने असन जी निसाय, जे चो नहलो आमी जीव नहीं रह सकूं। पाक फर आरु साग भाजी के आमी खाऊं से, एके तो जानास मांतर खूबे दिन ले एके कसन संगाऊ सकूं। ये चो काजे गुट की उपाय आए और हुन उपाय आए साग भाजी के नहाले पाक फर के सुखाउन भाती संगातोर। सुखा तो काजे कसन कसन सावधानी मन संगातोर आए एके मैं आजी सांगे से। सबले पहिल पाक फर नहाले साग के नंगत नीरो पानी ने धोन उनके हिसाब दखून ऊपर चो छाली के उछला तोराय आरु काटून दे तोराय। और जसन कोनी पाक फर नहले साग काटलो पाछे लहरा ने रलो ने करिया नहले धमस्या होन जाय से हुनके काटून भाती खिंडिक महा लोन चो पानी ने संगाते जा तोराय। और जसन पाक फर के आमी सुखाऊं से तो हुनके सुखा तो काजे आम के समय आगर लागे से। यही काजे सुखा तो बेरा पाक फर नी नसो बलून हुता गंधक चोक कुमला देतो राय। कुमला देतो काजे 1 किलो पाक फर काजे 3 ग्राम गंधक खूबे होय से। मांतर पाक फर दखुन एके खेडी कम और आगर बले करतोर होय से। दादा दीदी मन ये तो होली पाक फर काजे, मांतर साग काजे गंधक चो कुमला नी देतो राय। आरु गंधक बीती लोन जिनिस जसन पोटेशियम मेटा बाइल सल्फाइट एके घोरुन होता चोबरुन भाती साग के डंडिक संगातो राय। ये चोले काय होय से कि साग ने गंधक मिसे से आरु सुखालो पाछे साग ने नानी नानी कीड़ी मन नी पड़ोत। दादा दीदी मन गोटोक और गोठाय जेके लेख करतो राय हुनाय कि जसन आमी पाक फर के नहाली साग भाजी के घाम ने सुखाऊं से जाले आमी सुखा तो ठान के बले ध्यान देऊ। सुखा तो ठान ठसठसा ठान होले आगर नगत आए, नहाली कहाँ बोले सुखाऊं। हर 2 नहले 3 घंटा ने सुखालो जिनिस चो कुटकी मन के उलट पलट करते रहूं। असन करते रलो ने हुता सब पाए बाटे बराबर घाम पाउ सके दे। सुखा तो ठान कचरा कूड़ा चिखल पानी असन ठान ले लाफी रहो। काय काज बल्ले असन करलो ने हुता मोची आरु तीसर कीड़ा माकड़ा मन नी बसुक सक दे। और सुखा तो बेरा सुखा तो जिनिस के हाथे धरून टूटाउन बोले दखतो राय। काय काज बल्ले दखा दे दे कि नंगत सुखली से कि नहीं। और जसन पाक फर आरु साग भाजी सुखुन जाए दे तेबे हुनके कूड़ी बनाऊन 2 हफ्ता तक बल्ले 15 दिन तक साफ सुथरा और सुखलो ठान ने संगातोर आए। एके एक हर और सुना के उठाउन पाछे हुनके कांच नहले 3 चो डब्बा मन ने संगातोर आए। और पाछे जेबे खातो काजे मन करे दे उदल दाए निकरा तो राय और मन हिसाब ने रांधुन जमक बनाउन काय रस्या घर चो लोग संगे खातोर बले।
1: अभी आप कृषि समसामयिक की बेड़ा खाड़ा चौकोट का पुनः प्रसारण सुन रहे थे। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
3: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
4: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फरमाइशी नगमों का दैनिक कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम श्रोता सुमन में आप तमाम श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं मैं जूही जोशी। नमस्कार श्रोताओं। तो श्रोताओं, चलिए बिल्कुल भी देरी न करते हुए आगाज किया जाए फरमाइशी खतों में लिखे गीतों को सुनने का। ये पहला फरमाइशी नगमा आप सुनेंगे फिल्म हिमालय की गोद से। गीतकार है इंदिवार, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गायक है मुकेश, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। आप हैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट। सावरगांव महाराष्ट्र से आप हैं रघुनाथ नारे, पुष्पा नारे, श्रीधर नारे और मीनल नारे। ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव। दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सांवले, श्रीमती रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना चारुवी और प्रणव सांवले। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभादेवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र सेन, और यहीं से ही आप हैं खुशी रौनक सेन। डगेश्वर राम साहू, नूतन कुमार साहू, गौरव कुमार साहू आप हैं सुंदरपारा रोहासी से। दत्रेंगी से मनोज कुमार साहू, सूरज और सागर कुमार साहू। शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से आप हैं वीएस महोबिया, कमला महोबिया। रामगंज खंडवा से आप हैं विजय महोबिया, कविता, संजय, नंदिनी, विशाल, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज और भैयू दादा। सुनीता घायाल, सानिका घायाल, गजानंद घायाल आप हैं बोरला धरन मालेगांव से। महामाया पारा ग्राम दरचुआ से फिरंता राम साहू, दुलौरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। दरचुआ से ददुआ साहू, भूरी, रेखा और मोतीलाल साहू। अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी से आप हैं नारायणलाल साहू, कुलवंतेन देवी, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय और रुद्रांश प्रताप साहू। करपावन सतोषा से गेनूराम बघेल, गोमती, तनुजा, सुभाष और ईशान बघेल। तो लीजिए श्रोताओं सुनिए आप सभी का पसंद किया हुआ ये गीत।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत अब आप सुनेगा फिल्म पत्थर के सनम से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, शब्द है मजरूह के, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गीत के अनुरोध करता है आप सभी। आप हैं सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार। आदर्श नगर मलोट पंजाब से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी सौरव और शाइना शर्मा और निवान शर्मा। पटेल नगर मलोट से आप हैं डॉक्टर राजेश रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। गौरीनगर इंदौर से आप हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा। वरणा शाहपुर कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्वनी चौहान, अंकिता अनिकेत, करिश्मा माई और शौर्य कामले। कल्याण से आप हैं डॉक्टर सूरज सुर्वे, ननिता प्रकाश सुर्वे। गणेश नगर बिलासपुर से आप हैं अशोक कुमार यादव, श्रीमती अनीता यादव, प्रिंस कुमार यादव और गब्बर यादव। सुभाष वार्ड भाटापारा से भाई अजय यादव, श्रीमती पार्वती, गिरीश कुमार और प्रेरणा यादव। तो लीजिए श्रोताओं सुनिए आप सभी का पसंद किया हुआ फिल्म पत्थर के सनम का यह नगमा।

एक मुसाफिर एक हसीना, अब सुनिए इस फिल्म का ये फरमाइश किया हुआ गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। गीतकार है SH बिहारी, धुन तैयार की है OP नैयर ने और इस गीत के पसंदकर्ता हैं आप सभी। आप हैं मेघापारा चिल्फी से, मनोज कुमार साहू, कृष्ण कुमार, धनंजय और कुमारी गायत्री साहू, टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, तुलसी, जया राव, भाग्यलक्ष्मी राव, आनंद राव, मनीष राव, श्रवण कुमार राव, नानू राव, नंदिनी और राधिका, आप सभी हैं गीदम रोड जगदलपुर से। मेघापारा महामाया चौक लोरमी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या, दीपांजलि, दीपक और टेकलाल पटेल, जटपुरा पनवाड़ी महोबा से देवीदीन अहिवार, सुनीता अहिवार, दिनेश, कपिल और पूजा अहिवार, ग्राम लोहेड़ी, जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, दिव्यांशु, रेनू, रोनिका और समस्त यादव परिवार, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से ही आप हैं मुकेश कश्यप, सोनू कश्यप, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, ऊपरकोट मोहल्ला चौनखुटी बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अमान अब्बासी, ग्राम छिंदडीही पुजारी पारा जिला कोंडागांव से सेतुराम चक्रधारी, मंगतिन चक्रधारी, आशीष कुमार चक्रधारी और अस्तिका चक्रधारी, बिरसेपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा, अरुण कुमार विश्वकर्मा, चूड़ी लाइन मुंगेली छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी, ग्राम चरोदा बारनवापारा जिला बलौदाबाजार से नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी, आराध्या साहू, प्रकाश तिरसुनिया, नैतिक तिरसुनिया, धैर्य और आराध्या, आप सभी हैं उत्तर प्रस्तर कांकेर से हमारे श्रोता, ग्राम वटगांव डीघी बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोधवड़े, माधुरी बोधवड़े, आकाश कुमार बोधवड़े, संत गाडगेनगर बुलढाणा महाराष्ट्र से ही अनीता गाठोड़े, रमेश राव गाठोड़े, लोकेश कुमार गाठोड़े। तो लीजिए श्रोताओं सुनिए आप सभी श्रोताओं का फरमाइश किया हुआ ये गीत।

कार्यक्रम श्रोता सुमन में आप सुनिएगा श्रोताओं फिल्म गुमराह का ये गीत। महेंद्र कपूर के स्वर में गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत से सजाया है रवि ने और इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। आप हैं वन बघेरा राजनांदगांव से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश और अंजलि सारवा, देवशंकर तामोरिया, अजय तुषार तामोरिया, डॉली बेबी पूजा, प्रभा देवी तामोरिया। आप हैं डोंडी लोहारा से, ग्राम भंडार सिवनी से सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता मुस्कान अनुष्का चक्रधारी, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता है आप सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, कुमारी अंकिता जोशी और बेबी वैदही जोशी। ग्राम फरसगांव, जिला कुंडागांव छत्तीसगढ़ से आप हैं फागेश्वर मंडावी, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। आप हैं डोबरगांव छत्तीसगढ़ से। धाड़ी नादोरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे, गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। आप हैं देवरी भाटापारा से। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आप हैं अभिजीत गम्हाणकर, सरिता गम्हाणकर, सिद्धांत गम्हाणकर, प्रिंस एकांश गम्हाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गम्हाणकर, वैशाली गम्हाणकर, श्वेता सुमित गम्हाणकर, ध्वनि गम्हाणकर। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। तो लीजिए श्रोताओं सुनिए आप सभी का पसंद किया हुआ ये गीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। अब अगला फरमाइशी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गाइड से। स्वर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार के, लव्स है शैलेंद्र के और धुन बनाई है एसडी बर्मन ने और इस गीत की ख्वाहिश हमसे की है आप सभी ने। आप हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता रोहित, जयलक्ष्मी, ऋषभ, अंश, लक्ष्मी। सनावत मध्य प्रदेश से आप हैं हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन, श्रीमती प्रभा, कृष्णा, विराज, अर्नव और काव्यांशी कटारिया। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा बचेली से बलराम सेन, इंदु सेन, रितिका सेन, पुष्पराज सेन, पोषण और पंचू सेन। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा आप हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरेंगी से। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव आप हैं शिवाजी चौक राजीम से। दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवि श्रीवास्तव आप हैं अमरपुर पेंड्रा से हमारे श्रोता। नेहरू वार्ड भाटापारा से आप हैं प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू। देवपेट वाशिम से राजेश खंबायतकर, प्रेमा खंबायतकर, राजश्री भावसार और प्रीति। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरूला ठेकेदार, नसीमा बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा, सालिया शोएब खान, मुस्ताबा खान, राउ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव आप है धरसीवा से। छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव आप है दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से। तो लीजिए श्रोता सुनिए आपका पसंद किया हुआ ये गीत।

कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म दो कलिए दो कलियां का ये पसंद किया हुआ गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल सुरों में। गीत रचना है साहिल लुधियानवी के, संगीत निर्देशक हैं रवि, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। आप हैं तीतम हुआ खापरखेड़ा से तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत आरती, ममता गोमती, श्री श्रृंगी ऋषि, महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, कुंदानगर खरगोन से ध्रुवाश सोनवड़े, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनवड़े, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, ननन और तानिया, ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू, ग्राम पहारा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटोदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा, बेमितरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, नवागढ़ कटई से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, कन्नेवाड़ा से देवेंद्र कुमार सोनवानी, देवव्रत सोनवानी, लक्ष्मी देवी सोनवानी और गीतिका सोनवानी, प्रमीलागंज अलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। तो लीजिए श्रोताओं सुनिए आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

उम्मीद। अब सुनिए इस फिल्म का ये फरमाइशी गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने, गीतकार शकील बादायनी ने, संगीतकार रवि, और इस नगमे को सुनना चाहा है आप सभी ने। आप हैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, सनावत मध्य प्रदेश से आप हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा चंडीगढ़ से, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक, रतनपुर से भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष नायक, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद्र, आदित्य, गुनगुन, चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, अनीता मोटवानी, रमेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल, सेतपाल भूमिका सुशीला, सत्येंद्र मंडावी, उमेश नाग, कृष्ण नेताम, रंजीत भंडारी, आप हैं नयापारा फरसगांव से, जाभरून से आप हैं दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय आशीष, पृथ्वीराज और कुमारी साध्वी जोशी, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूड़त, गांव परसाटोला जिलांबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारनी मसिया, जिला अंबागढ़ चौक छत्तीसगढ़ से ही आप हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए फिल्म उम्मीद का ये गीत।

और अब श्रोताओं, कार्यक्रम श्रोता सुमन का अंतिम नगमा सुनेगा फिल्म यकीन से। मोहम्मद रफी के स्वर में हसरत जयपुरी की गीत रचना है, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है और इस गीत को सुनने की ख्वाहिश हमसे की है आप सभी ने। आप हैं जिला मुंगेली गोल बाजार खपरी कला छत्तीसगढ़ से, संतोष कुमार सोनी, सुनीता, खिलेश, नेहल, पीहू, छोटी, दानिश, दीक्षा, संजय, पूजा, रामा, पूर्वी और पुलकित। बलौदा अकलतरा से आप हैं दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। मछली गोदाम कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, ऋतु सिंह और ऋषभ सिंह। पुणे से प्रियंका आर्या, पंकज वाडोदे, बीटी वाडोदे। नसवाला चौक मलकापुर से आप हैं संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीरसागर, सतीश राव, जगदीश तांबार और नगीन दास। भाटापारा से तानसिंह रावत, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत। पेंशनवाड़ा रायपुर से रोमनाथ यादव, वंदना यादव, सूर्य प्रकाश और शीला देवी। कंवर कॉलोनी बड़वाह से आप हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए कार्यक्रम श्रोता सुमन का ये अंतिम और खूबसूरत नगमा।

0: question. Sakshi Singh, Akashwani News, Gothenburg, Sweden.
1: Defense Minister Rajnath Singh departed on a two-nation visit to Vietnam and South Korea today. In a social media post, the minister said he is looking forward to visiting the two Asian nations to further expand the scope of bilateral engagement. He said the focus will be on deepening strategic military cooperation, strengthening defense industrial partnerships, boosting maritime collaboration, and promoting peace and stability in the Indo-Pacific region. During his visit to Vietnam, Rajnath Singh will hold bilateral talks with the Minister of National Defense of Vietnam, General Phan Van Giang. Congress leader V.D. Satheesan was sworn in as the new Chief Minister of Kerala at a grand ceremony held at the Central Stadium in Thiruvananthapuram this morning. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath of office and secrecy to Mr. Satheesan. A 21-member cabinet took office alongside the Chief Minister. 16 members in the new ministry are becoming ministers for the first time. The Congress Party has 11 representatives in the new cabinet. The Indian Union Muslim League, IUML, has 5 ministers. The event was attended by leaders including Congress President Mallikarjun Kharge, Party leader Rahul Gandhi, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah, Telangana Chief Minister Revanth Reddy, Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu, and Kerala BJP State President Rajiv Chandrasekhar. Immediately following the swearing-in ceremony, the newly formed government convened its first official cabinet meeting today. The cabinet of the government of West Bengal has given in-principle approval to the formation of the 7th Pay Commission for the employees of the government of West Bengal, various government boards, corporation and other state-aided bodies and schools. In a significant decision, the cabinet today also gave in-principle approval to stop various direct benefit transfers from the 1st of June under the Information and Cultural Affairs Department and Minority and Madrasa Department of the state government. The scholarship schemes will continue under these departments. The state government also gave approval for the free transport facility for short and long distances for the women of the state. The Annapurna scheme will be introduced from the 1st of June for the women of the state, under which 3,000 rupees will be transferred under the direct benefit transfer. The OBC list for Bengal will be prepared afresh by the state government following the recent judgment of the Calcutta High Court. Chief Minister Shubhendu Adhikari chaired a cabinet meeting today at the state secretariat, Navarna. In Uttar Pradesh, the Yogi Adityanath cabinet today approved the constitution of an OBC commission. The commission's recommendations are a Supreme Court prerequisite for implementing backward class quotas in panchayat elections. The cabinet, under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath, today also cleared metro expansions in Agra and Lucknow, a 2,799 crore rupee power grid upgrade in Mirzapur, and a 855 crore rupee hospital complex at RML. The Election Commission has announced the schedule for the biennial elections to 16 seats of the Maharashtra Legislative Council. According to the Commission, the notification will be issued on the 25th of this month and the polling will be held on the 18th of June. The counting of votes will take place on the 22nd of June. The Model Code of Conduct has come into force with immediate effect in the concerned constituencies. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today flagged off a fleet of state-of-the-art Dial 112 emergency response vehicles and modern forensic mobile vans at a state-level function held in Raipur, Chhattisgarh. Chief Minister Vishnu Dev Sai, Deputy Chief Minister Vijay Sharma and State Assembly Speaker Raman Singh were also present on the occasion.
2: The Dial 112 emergency service was earlier available in only 16 districts of Chhattisgarh, but the state government has now expanded it to all 33 districts. The service has been integrated with artificial intelligence-based location tracking technology, which will help accurately identify the real-time geographical location of people in distress. Giving priority to women's safety, panic buttons and special monitoring features have also been added to the system. a total of 400 new advanced emergency vehicles, 33 special surveillance vehicles and 60 new highway patrol vehicles were flagged off today. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
1: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India is progressing rapidly despite global challenges and uncertainties. Launching the website of Bharat Vyapar Mahotsav in New Delhi today, Mr. Goyal emphasized that the enthusiasm to move forward should never diminish and everyone must continue working tirelessly.
3: India-made products and services should expand even more rapidly across the world. We should not be satisfied merely because we are the world's fastest-growing economy. We must never become complacent and should always think about bigger leaps forward. We need to continuously reflect on what more can be done, keep working tirelessly, and keep bringing new ideas and innovations forward.
1: Indian Railways has said a detailed inquiry is underway to ascertain the cause of the fire that broke out in one of the passenger coaches at Sasaram Railway Station in Bihar. According to East Central Railways, the incident occurred at around 5:30 a.m. when smoke was detected from one of the coaches of the Sasaram Patna passenger train, which was standing at the platform. During the incident, the coach was empty and no passengers were present. Railways informed that no injuries or harm to passengers or railway staff has been reported. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today travelled by Metro under Mera Bharat, Mera Yogdan and Metro Monday campaign to promote public transport and fuel conservation. Talking to reporters, Ms. Gupta appealed to all residents to use public transport as much as possible. She said the government is making every effort to ensure there is no inconvenience in public transport and to improve last-mile connectivity.
4: We are making every possible effort from the government side to ensure that there is no difficulty in public transport. Greater focus is being placed on improving last mile connectivity. When every individual contributes even a little towards this effort, it will greatly benefit the city of Delhi. It will help provide solutions to various problems in our city, from pollution to several other challenges.
1: Delhi Metro is running 24 additional train trips today to encourage the adoption of the metro over private vehicles. Delhi Metro Rail Corporation said the decision has been taken, keeping in view the significant role of public transport in ensuring energy efficiency, economic viability and environmental sustainability in the prevailing circumstances. U.S. President Donald Trump has warned Iran the clock is ticking as talks to bring the war to an end have stalled. The remarks come as Washington and Tehran sit locked in a test of wills, waiting to see who blinks first to end the stalemate in the war in the region. In a social media post, President Trump said time is running out and called upon Tehran to move quickly towards an agreement. Meanwhile, Iranian media has reported that the U.S. failed to make any concrete concessions in its response to Tehran's latest proposals to end the conflict. In IPL cricket, hosts Chennai Super Kings will take on Sunrisers Hyderabad at M.H. Chidambaram Stadium. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. In the latest standings, Sunrisers Hyderabad are currently placed third with 14 points from 12 matches, having won 7 matches so far and remain firmly in the playoff race. Chennai Super Kings are fifth with 12 points from as many matches, having registered 6 wins this season. India finished the Asian Weightlifting Championships 2026 in Gandhinagar with 10 medals, including 1 silver and 9 bronze, marking a big improvement from the previous edition in Chiang Shan, where India returned without a medal. Commonwealth Games bronze medalist Lovpreet Singh delivered India's best performance on the final day by finishing 5th in the men's 110kg-plus category. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave to severe heat wave conditions over the plains of northwest India and central India during many days of the week. According to IMD, heat wave conditions are likely to prevail over Uttar Pradesh till Saturday. Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi will also experience similar conditions. The weather agency predicted gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest parts of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Oslo to hold bilateral talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre this evening. Prime Minister Modi says his Sweden visit adds new momentum to bilateral relations as both countries agree to double trade in next 5 years. Congress leader V.D. Satheeshan takes oath as Keralam Chief Minister along with 20 cabinet ministers. West Bengal government approves 7th pay commission for state government employees. Union Home Minister Amit Shah flags off 400 emergency response vehicles in Raipur district of Chhattisgarh. And in IPL cricket, hosts Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. With that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
6: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
7: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एआई कॉरिडोर यानी सीटैक का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र एआई, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन एसएमई और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
8: ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും
5: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
9: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
5: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
10: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
2: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
5: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़

0: के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।
2: दादा दा, दादा दा, दादा दा, दादा दा।

0: कार्यक्रम सुन तो सपाए आए कलाकार दादा दीदी भाई बहन मन के और संगजौरिया संगवारी मन के मैं तुम्हें सपाए चो तारा करे से जुहार। तो कलाकार भाई बहन मन तुम्हें सपाए कसन आसास नंगत नंगत आसास बेकाय असनी नंगत नंगत रहा मचो कलाकार भाई बहन मन। तो भाई बहन मन मैं काय बोलते रहे दखा कला और हुनर गोटोक असन तीज होए से जे चो कोनी गिनती नहीं है आय कसन बेहिसाब आसे बानी बानी चो नाना प्रकार चो कला हुनर मन आसे जे के आम चो कलाकार भाई बहन मन जान सोत ने जसन कला चो गोट बात होए से तो असनी रहे से बांवस और लकड़ी कला बलुबे जोन बांस कला बलसोत नहीं और लकड़ी कला हुन बीते कला जसन की बांवस ले तो दखा कितरो सुंदर सुंदर आनी बानी चो मन मन चाचो जो नए कलाकारी बीति कला मन बने से जे के घर द्वार के सजा सोत लोग मन आए कसन घर के सजा सोत द्वार के सजा सोत और टेबल बने से कुर्सी बने से झूलना बने से और टाटी बले बने से ने टुकना टुकनी बले बने से टाकरा बले बने से असनी कितरो सुंदर सुंदर तीज मना से जोन बावसले बने से ने जो नाम चो जो रोजमर्रा ने काम धरू से बल्लो ने रोजी आम के कहीं ना कहीं काम ऐसे ने टुकना टुकनी बल्लो महाबीती बले उन मन बले रहे से ने जोन बावसले बने से संगे संगे असनी कई काउर सजावटी सामान मन बले आसे जे के लोग मन आप लोग घर द्वार के बले सजाए सोत असन तेज मन बले बावसले बने से असनी जोन सजा तो सामान मन आसे एचो बले दुकान मन लगे से नहाले फिर जहाँ जहाँ कला मंच मन मीरे से कलाकार भाई बहन मन के आप लोग जोन कला आए हुनर आए उनचो प्रदर्शन कर तो काजे जहाँ जहाँ प्रदर्शनी मन होए से एथाने नेउन भाती आप लोग कला मन के आमचो कलाकार भाई बहन मन प्रदर्शन कर सोतने। और देखा भाई बहन मन आमी कई कला के कई हुनर के जानू बल्लो ने आम के बिल्कुल पाटकुती निरतो राय आम के आप लोग कला के हुनर के बिल्कुल पूरे आंतो राय और जोन लोग सीखुक लाए चाहे सोत बल्लो ने उन मन के उन कला के उन हुनर के सिखा तो रहा है कसन बल्ले गोटोक गोठ बल्ले आसे के आमी आप लोग ज्ञान के जितरो बाटू दे उतरो हुन बाड़े दे। तो सत्य गोटाए असनी आमी आप लोग जान लो कला के जितरो लोग के आमी सिखाऊ दे हुन उतरे बाढ़ते जाए दे। तो जोन लोग आमी कहीं कला के जानू आराम चो लगे सीखूक लाए एवक लाए चाहे सोत बल्लो ने आम के बिल्कुल हुन मन के आप लोग जान तो कला के सिखा तो राय ने। और बावस कला चो गोड़ बात के तो कर ले मैं मानतर जोन लकड़ी बीती कला बल सोत जे दारू ले बनतो बीती जितरो बले हुनर मनासे कलाकारी मनासे और जसन की कलाकार भाई बहन मन आमी जानू से छी दारू ले तो नाना प्रकार चो जिनिस मन बने से तीज मन बने से ने कपाट होली कुर्सी होली टेबल होली और सजा तो मूर्ति मन होली कितरो सुंदर सुंदर आय कसन। तो असनी कैक तीज मन बल बने से दारू ले कितरो सुंदर सुंदर और एके बले जो नाम चो कलाकार भाई बहन मनात दुकान लगाउन बले संगाला सोत नहाले फिर कैक कला मंच मना से प्रदर्शनी मन लगे से जहाँ जहाँ उन तने नेउन भाती आप लोग कला हुनर चो प्रदर्शन के कर सोत। और अई लागुन भाती आज ही आम चो जो देश चो बांस कला आसे दारू कला आसे एक देश दुनिया ने अलग ही नाव चीना मिरली से। तो कितरो सुंदर ये काय सुंदर गोठ मन तो रहे कलाकार भाई बहन मन अदाय और भले झाला बीती नंगत गोठ मन आसे ये गोठ मन के सुनुता उनचो पाचे के फेरा में गोठिया वा।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: क्या बात है उमेश आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम पता फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेड़ा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दोरकिता। GST तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
0: कलाकार भाई बहन मन एवे आमी सुनलू ये काय सुंदर नगद चाला मन के ने अदाय समय होय से भेंट वार्ता कार्यक्रम बाटे जातोर जसन की पनाई ची मैं कला और हुनर मंचो गोड़ बात करते रहे तो असनी गोटो कलाकार भाई आसोत ए मंचो नाव है श्री जयप्रकाश कश्यप ए मनात वादक कलाकार और एमन संगे भेंट घाट कर सोत बलबीर सिंह कच्छ। तो आले पहले मंचो गोड़ बात मन के सुनू ता उनचो पाछे फेरा मैं गोठियावा।

0: गांवकारी भाई बहन मन जशन क्या मैं रोजी दीना कई कलाकार भाई बहन से गोट बात करूं से तो आजीबल में गोटुक जवान लेखा इमन बजाऊ कलाकार इमन से गोट बात करें से सब ले आगे तुचो नाव और गांव चो नाव सांगना
1: जी मुझे नाव बल्ले जयप्रकाश कसे पाए।
0: अच्छा
1: मैं गांव नानगुर चो आए।
0: अच्छा तो जयप्रकाश ये सांग जशन की तु बोले ने बजा तो भी थी कला के जानिस बोले ने काय काय सन बाजा मन की बजाऊ ना
1: मैं बाजा बल्ले नहीं ढोलक बजाऊँ टांगो सेट बोले टीन पैठन भी थी उनके बजाऊँ आर्गन केसियो उनके बजाऊँ
0: अच्छा
1: और बल्ले नहीं जितलो बल्ले साइड ड्रम आसे साइड ड्रम नाट भी साइड ड्रम उन
0: हाँ
1: सबके बजाऊँ मैं।
0: अच्छा हाँ तो अले गोड बात तो करूँ मानता तुझ मन ने कोनी बोले बड़ अच्छा भी थी पाड़ फुकुन बात सुनाऊँगा
1: हाँ ठीक है नहीं।
0: ए बजा।

0: कश्यप का ना बोलिस ना
1: जयप्रकाश कश्यप।
0: तो जयप्रकाश कश्यप ये जोन बला बोलो तुझो जोन बजा तो बीती कला है बोले ने कहा सीखलीस कसन सीखलीस ना।
1: मैं बोले कला बोले घरे खिंडी खिंडी जानते रहे और असनी धीरे धीरे उम्र बढ़ते गेली दो के दोगुन दोगुन असन सीख ले मैं।
0: अच्छा तो ये चुकाज कहीं बल्ले कहीं गुरु असन कहीं असन धरु पड़ ली नहीं
1: नहीं ये चुकाज को नहीं गुरु नहीं लेकिन जोन मैं किसी को सीख रहे नहीं उन चुकाज को गुरु रलो।
0: अच्छा।
1: उनके दोकुन दोकुन चीज मैं सीख ले से
0: असन। अच्छा दोकुन दोकुन सीख लीस की मतलब उनका ही सीखा लो असन
1: नहीं उनका ही ना सीखा है हम सब दोकुन सीख लो।
0: अच्छा
1: कि कौन थाने बजा तो रहा है कौन थाने कौन रीड ने बजे हुआ उनके दोनों सीख लो हमें।
0: अच्छा तो जयप्रकाश ऐसा जैसन कि तुम चो परिवार ने बोले असन को नहीं आगे बोल रहा बजा तो
1: उन तो मालूम नहीं है मोके मुझ परिवार ने रख नहीं अरे लेकिन मोचो ये लेका से 10 साल चो हूं बजाए से ये
0: अच्छा
1: ढोलक के और तीन ठन विधि बाजा के और पेड़ बुलवा उनके उन सीखे से वे।
0: अच्छा नहीं मतलब तुझे जान तो बेराल को तुझे बाप नहीं तो कुछ दादा
1: नहीं मुझे जान तो हिसाब में ना जाने उनके
0: नहीं जाने।
1: हाँ।
0: अच्छा बोले तु खुद ही
1: में सीख ले।
0: हाँ तो बोले ने तू इतलो बाजा मन बोलिस ना जिसन के ढोल लका है बोलिस मेरे दे मोरा तो सब बजाऊ छी आज भी केसियो बोलिस केसियो बोले ना हारमोनियम बोल बजा
1: हारमोनियम
0: और कहीं फुक तो बीत बोल कहीं जाने
1: फुक तो बीत ना जाने मैं
0: फुक तो बीत नहीं जाने। अच्छा सो जे बजा तो
1: बीत बजा तो बीत
0: हां अब तक बोले ने कसन कसन जगह कहां कहां ठान मन ने बजा ली से
1: जाने एबे बल्ले हामी नहीं जसन गांव गांव ने प्रोग्राम मन मिरो है नहीं कला जता माध्यम ने तो हुन प्रोग्राम मन ने बोल जाऊं मत बजाऊं।
0: अच्छा
1: और असनी मंडी मेला ने दुख घर मन ने राति कालीन चो नाट हुआ है हुन तन जाऊ नाम बजाऊ।
0: अच्छा
1: बड़ा मतलब गुरु मन संगे ये सब प्रोग्राम मन ने हम बजाऊ।
0: अच्छा अच्छा नाट बल्लिस नाट तानो कोनी पाड़ के बजाऊ तक कोनी मेरा चो भेस
1: नाट तांच पाड़ नाट तांच पाड़ बोल ले ये भी नहीं जो कर्म नहीं करुआत
0: जो कर्म
1: हाँ जो कर्म उधर दाच पाड़ बजाएंगे।

0: अच्छा दक तुम चो जन पार्टी आए बोलू ये गुटुक अच्छा है कसम बल्ले समूह बल्ले ने सब जितलो बल 15 जन असन आसू बोल सिस तो
1: हाँ
0: एमन के खेने रोजगार असन मतलब
1: रोजगार
0: ऐसे
1: मिल रहा है।
0: है कि नहीं।
1: हाँ
0: हाँ तो ये चुका जैसन कि तुम घेन लास जितो बोले वाद्य यंत्र मन घेन लास तो तुम खुद पैसा पाड़न घेन लास कि कहीं।

0: आधा पैसा हामी पाडून गेलो, मतलब छोटे सामान मतलब सुरु जुन स्टार्ट करू नाही उसलाई कम पैसा रली आमच्या लागे, दुई ठन नगरा और दुई ठन तासात ठनले आम्ही सुरू करलो. उंच बाद नाही बजाते बजाते गेले नाही आम्ही पूरा सामान घेते गेलो आम्ही.
1: अच्छा हो तो जे प्रकाशे सांग बोलले ने तुमचे जन ये बाजा तो बीती आय बोलू बे कुंतन हाक दे तो बीती होले ने कोन समय ने ज्यादा मांग रहे से ज्यादा
0: कोन समय में बोलले बे जसन शादी सीजन चले से जनवरी धरू अती मई महीना तक ये जितलो शादी सीजन है ने ये थाने पूरा बुकिंग मन रु है
1: अच्छा
0: एबे ये अप्रैल महीना ने बोले खूब बुकिंग आ से.
1: हाँ हाँ अच्छा हाँ. तो जसन कोनी ताने ने तो काजे बोलू बे जसन की ती तो रेट बोल लीस की 15,000 20,000
0: हाँ
1: बरोबर
0: हाँ
1: जसन तुम जो पूरा साधन के जोड़न बाती हुए से कि उन जो अलग रहे से ना.
0: साधन चलक रहे से.
1: अच्छा साधन
0: हाँ
1: अच्छा
0: साधन चे केवल हमी 15,000 जो चार सांगलू नहीं
1: हाँ
0: हूं हम चो बजातोर और माइक सेट चो आए
1: अच्छा
0: उन थाने गाड़ी के जोड़न बती है अलग सांगू से,
1: अच्छा उन
0: मतलब
1: अलग रहे
0: कितलो दूरी ने गाड़ी बीता धरे से उनके जोड़ सामने
1: अच्छा हाँ. बोले ने गाड़ी अलग और तुम चो बजाते
0: बजातोर
1: बीती
0: अलग.
1: अच्छा
0: हाँ
1: मतलब गांव ने आसपास पास होलेन तो और कम हो ऐसे कि नहीं
0: कम
1: कि
0: हुए ने
1: हाँ बाहरी होलेन कि नहीं ज्यादा रहे ऐसे
0: ज्यादा
1: हाँ
0: रहे से.
1: हाँ
0: जैसे ने भी हम 17-18 तारीख के मर्दापाल पड़ लियो हूँ
1: हाँ
0: तो हम एक दिन जो चार तो 35,000 धरू से
1: अच्छा एक दिन चो
0: एक दिन जो क्योंकि
1: हाँ.
0: दूरी बोले आए और नहीं सुबह धरून रात के 12 बजे तक आए.
1: अच्छा सुबह धरून रात 12 बजे
0: हाँ तो गाड़ी माइक सेट आराम से बोझा तो चार देखा है दिन जो 35,000 धरलू से.
1: अच्छा
0: हाँ
1: ये तो अच्छा है ना बल्ले ने सबू मतलब का है कि गोटुक जवान मतलब लेका मन जून
0: हाँ हाँ
1: बाती है कि नहीं.
0: हाँ
1: तो आलम गोटुक में गीत गाए से ले जा पर्व कातु बीती जालिया ना
0: हाँ हाँ
1: बजाऊं तक ना
0: हाँ ठीक है.

0: जी
1: सीडी मन थन तो ना बजा लेस के
0: नहीं
1: भी
0: बुझा जी।
1: मैं सन मौका ना मिल ली से
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ
1: बस असन लोकल प्रोग्राम मन ने बजाऊं से
0: हाँ
1: और उन्हीं भी मन वीडियो मन बाती यूट्यूब मन अपलोड होए से
0: अच्छा यूट्यूब में बोलो अपलोड
1: हाँ
0: कर साथ। अच्छा
1: हम से यूट्यूब चैनल वाला से
0: अच्छा
1: उन
0: भले
1: तानिया
0: ने खाली ऐसे बाजा की कर सास की
1: हाँ बजा तो ही है हम चो
0: बजाती है।
1: हाँ अच्छा पहले हम प्रोग्राम ने बजा थ्रू
0: हाँ
1: उन प्रोग्राम मन जो बोले यूट्यूब ने अपलोड आ से हाँ
0: अच्छा हाँ, तो ये छो प्रचार प्रसार तुम कर सास
1: करूँ
0: यूट्यूब।
1: से हाँ
0: हाँ
1: शासन से जो प्रोग्राम बनी हुए नहीं हूँ मन नहीं
0: हाँ
1: जाऊँगा मैं
0: अच्छा तो भले ने जोन दिन ले तुम्ही ये जैसन की समूह बना लास बोले तुम चु कला के जोन उभार तो जोन काम होए से बोलू कसन लागेस ना तुम कसन लागेस।
1: मतलब सीजन ने हम के बोल तो काजे अच्छा लग हुआ है हम
0: हाँ
1: उसको हम जो इंजॉय बोल हुआ है बजा तो काजे
0: हाँ
1: मतलब हम जो कला सीख लो से उन जो माध्यम ने हम बजाऊं से दुई
0: हाँ
1: पैसा पैसा मेरे से हम के
0: हाँ
1: तो उन का बहुत अच्छा लग हुआ है हम के
0: अच्छा
1: लोग के हम के हम जो कला के दागत का अच्छा लग हुआ है
0: हाँ अच्छा तो बोले ने सबके खेने एक पैसा कौड़ी बोल मेरे से
1: हाँ
0: और फिर ए बाटू माटे
1: और कुछ हरी
0: दुखो
1: बल मिले
0: कुछ
1: से
0: को हरी बल लागे से
1: हाँ
0: बाकी समय फिर तुम जो काम
1: बाकी
0: कारवेस।
1: समय आने हम जो काम बोल ले मैं घरे छोटे मोटे काम करूँ मैं
0: अच्छा हाँ
1: हाँ
0: हाँ बोले कहीं खेती बाड़ी है
1: और
0: कि।
1: खेती बाड़ी बोले यार गोटो दुकान खोल ले नानी
0: अच्छा
1: माँ
0: दुकान वाल खोल ले से।
1: हाँ
0: हाँ हाँ तो बोले हम संग संगे बाकी समय ने ये काम
1: ये
0: है
1: काम है ये तो सीजन ने हम जे काम
0: सीजन
1: है
0: ने आए
1: हाँ
0: बोले। हाँ
1: मंडी मेला होली या फिर बिया सीजन ने ये भी मन होली
0: हाँ हाँ उन तो आए थी बोले ने कहीं बोल कला सीखू रहे जानू
1: हाँ
0: रहे ने गोटक माने चो गोटक अलग मान सम्मान बोले ऐसे
1: हाँ
0: है कि नहीं
1: हाँ
0: बोले ने बाठन बाट डॉक्टर बोले ऐसे कई लोग संग मिलवा मिसावल हो को ऐसे
1: हाँ
0: है कि नहीं
1: हाँ
0: उन बाट चो संस्कृति आए सब चो की जानुक लाए हो ऐसे
1: जानी वैसे
0: है कि नहीं। तो बोले ने ये बोले अच्छा है कोनी जोन फका आदमी कहीं सीखे से जाले तो दखना तुझ संगीत लो अच्छा प्रकाश गोटियालू मंत्र फिर आले जाते जाते गोटोक मैं गीत गाए से।
1: हलो ठीक है।

0: तो कलाकार भाई बहन मन एवे आमी सुनलू लखेसर खुदराम और हुनमंचो संगवारी मंचो गाव ले काय सुंदर गीत के दखा दाय मचो जातो समय होय से असनी मैं फिर के भई तुमचो संगे भेट होक लाय आइंदे। तुम्ही सपाय कलाकार भाई बहन मन नंगत रहा, स्वस्थ रहा, हरी कुदिम ने रहा और खूबे खूबे बाढ़ती उन्नति करा। अले विदा धरे से कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सपाय कलाकार दादा दीदी मन के भाई बहन मन के जातो पूरे में तारा करे से जुहार।
1: दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा द

शाम 5 बजे मीडियम वेव पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। FM 100.1 MHz पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। अब हमें इजाजत दें, नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारा सांध्यकालीन प्रसारण आरंभ होता है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। युवावाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:10 पर। आज की युवावाणी हल्बी में होगी। नीला और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:35 पर। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर का प्रसारण हम करते हैं शाम 7 बजे। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम

समय होगा रात 9:30 का। लोकगीतों के कार्यक्रम कोदोमाली में आज रात 10 बजे आप सुन सकते हैं मणिराम मंडावी और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत। अब जानिए कल के कार्यक्रमों के बारे में। छत्तीसगढ़ साहित्य पत्रिका मोर भुइयां आप सुन सकते हैं 8:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर सुनिए 10 बजे। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे। कल हमारी पहली सभा में 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन 6:20 पर। श्री रामचरितमानस का गायन 6:25 पर हम प्रसारित करते हैं। कृषि सामयिक की बेड़ा खाड़ा चुगोट का प्रसारण किया जाएगा 6:35 पर और दिन में 1:05 पर। हुलहुली में 6:40 पर आप सुनेंगे पाट भैरम पाड़। वादक कलाकार होंगे भारत और साथी। दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर का प्रसारण किया जाएगा कल 7:05 पर। इसमें कल कथा लोक के अंतर्गत आप सुनेंगे कहानी मेले का तोरण, जिसे सुनाएंगी उर्मिला आचार्य। साथ ही सुनेगा फिल्मी गीतों की मधुरिमा। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी का प्रसारण समय होगा 9:00 का। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुनते हैं 9:30 पर। इसमें कल आप सुनेंगे खाकी फिल्म के कुछ गीत। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में कल 10:00 डमरूधर और साथियों के गाय हल्बी लोकगीत आप सुन सकते हैं। 11:00 प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। कल का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित होगा सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका गीता दत्त पर। लोकवाद्य धुनों के कार्यक्रम पाड़ में 11:30 पर प्रसारित किया जाएगा बोहरिया माता पाड़। वादक कलाकार होंगे भागीरथी और साथी। कल दिन में 12:00 आप सुनेंगे रूपक रैला गीत। लेखक है डॉक्टर सतीश, निर्देशक बलबीर सिंह कच्च। घर द्वार ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल दिन में 12:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन आप सुनते हैं 1:10 पर। कला और कलाकार ये कार्यक्रम आप सुनते हैं 2:30 पर। कल शाम 5:05 पर होगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम गोंडी बोली में भारत सरकार आपके द्वार। युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण हम करेंगे 5:10 पर। शाम 6:35 पर पार्वती और साथियों के गाए धुरवी लोकगीत आप सुन सकते हैं। बस्तर के स्वर ये दैनिक कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय होगा कल शाम 7:21 का। रात 8:00 प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम शिक्षकों के लिए। इसमें कल आप सुनेंगे वार्ता बालिका शिक्षा। वार्ताकार होंगी संगीता कश्यप। इसके बाद देशभक्ति गीत का प्रसारण किया जाएगा। पीला मन काजे गोट ये दैनिक कार्यक्रम सुना जा सकता है रात 8:30 पर। कल रात 9:15 पर होगा कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत आप सुनेंगे कल रात 9:30 पर। लोकवाद्य धुनों के कार्यक्रम पाड़ में कल रात 10:00 आप सुनेंगे भीमा देव पाड़ और कासन पाड़। वादक कलाकार होंगे भारत और साथी। ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5:10 होते हैं। अब प्रस्तुत है नौजवान श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

0: शुभ संध्या नमस्कार आमचो युवाणी कार्यक्रम के सुनतो सपाय संजौरिया और सियान सजन बड़े नानी मन के मचो बाटले नमस्कार। मैं आप मंचो कंपियर संगवारी दिलबत्ती सेठिया
1: और मैं आए सेमलवती पटेल आमी दोनों करूं से सपाय लोग के जुहार।
0: तो संगवारी मन आमी आशा करूं से कि आप मन नंगता साथ होती और आमी बले नंगता सुने कसन सेमल तुई नंगतासी कसन सांगू तक
1: मैं बले नंगतासी दिलबती तुई सांग खुबे दिन बाद भेटोलीस
0: हो सेमल कसन खुब।

0: दिन बोलसित कालिज तो भेटघाट होऊन रहू काय वॉकथन कार्यक्रम ने तुई नी इलिस कसन
1: एवन रहे काय कसन नी येते इतरो इतरो बड़े दिन ने कसन तुके धकते कितरो लोग मन भीड़ बड़ा का रहोत इतरो भीड़ ने कसन तुके धकते
0: सत्य ऐसे मल मके बले काली खूब बेहरिक लागली
1: तो आज छो सफलता छो विचार ने काय गोट आनलू से एक तो सांगू दिलवती
0: हाउ से मल सफलता चो नवा परिभाषा है ने आज जो समय ने सफलता चो परिभाषा और अर्थ बल्लो ने खाली धन पद और नाव कमातोर नु है ने
1: हाँ
0: बल्कि एगोटोक मानसिक शांति और आपन चो काम बुता ने संतुष्टि पावतोर है ने
1: हाँ।
0: और खुद के हरी कुदिम ने संगातोर
1: हाँ।
0: होय से ए चो संगे संगे आप मन चो जीवना के ऊपरे उठातोर और आप लो जीवना के बराबर बनाउन संगातोर चो प्रयास होय से ने
1: हाँ आज चो समय ने सफलता चो मतलब ने खूबे परंपरा ले आगर बदला होली से
0: हाँ।
1: ये चो मतलब खूबे आगे बढ़ ली से ये चो चो समय ने ये चो खूबे बदला होली से कसन दिलवती
0: हाँ सत्य है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बले रतोरा ने सफलता के पावतर काजे आपन चो मन मन के और शरीर के स्वस्थ संगातोरा है और आपन चो मन के हल्का दुनिया भर चो तनाव धरतोर नु है ने
1: हाँ आमचो जीवना के खूबे अरे कुदिम ने जीवतोर ची हाय असली हाँ। सफलता हाय
0: हाँ
1: हाँ
0: हाँ सत्य बल्लीस सेमन मानसिक और आपन चो शारीरिक स्वास्थ्य नंगत रलो ने आमी आमचो जीवना के और नंगतले जीवक सकुआ ने
1: हाँ दिलवती
0: सफल होवा ने
1: हाँ
0: सत्य आय तो एचए काजे तो बोलुआत लोग मन सेमल ने स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है माने आमचो शरीर स्वस्थ रहे दे आमचो दिमाग बले स्वस्थ रहे दे तेबे आमचो दिमाग बले अच्छा काम करे दे ने
1: आओ सत्य आए व्यक्तिगत संतुष्टि आम के बाहरी चो दुनिया के दक्तोर ले आगे आपन चो मन के संतोष करतो राय
0: हाँ।
1: और सबले पहिल आमचो मन चो खुशी के प्राथमिकता देतोर आपनो चो आपलो चो हाँ। असली सफलता आए
0: हाँ हाँ सही मन आय सत्य आय जोन लोग मन आप मन चो जीवना ले संतुष्ट रुहात हुन मन के हमेशा सफल होवात ने
1: हाँ, हाँ।
0: खुश रहुआत हुनी काजे आप मन चो पहिल संतुष्टि संगातो राय मन के
1: दूसर चो जीवना ने बदलाव आम के दूसर चो जीवना ने खीत्रो सकारात्मक बलाय
0: हाँ।
1: और विचार देव सका से और समाज के सफल बनातर चो योगदान देवाय
0: हाँ।
1: ये बले गोटोक सफलता चो गोटोक पीढ़ी है
0: सीखतो हाँ। आए ने सीखतो हाँ। बलाय सफल हो तो काजे सीखतो जो प्रक्रिया ने आपन जो हर सफलता ले असफलता ले सीखतो राय ने
1: हाँ।
0: और रोजे रोजे प्रयास करतो राय और खुद के बेहतर बनातो काजे नवा नवा सीख मन के सीखतो आय होय से ने
1: हाँ।
0: तेबे सफलता मिरे दे सीखुन भांति आगे बढ़तो असली सफलता है ने और ये अनुशासन
1: हाँ।
0: अनुशासन बल खूब जरूरी है
1: जरूरी है
0: आम चो जीवना ने अनुशासन खूब कठिन है मानतर हाँ। एक रोज रोज मतलब समय ने काय तो कर लो ने
1: सरल होय से
0: हाँ तेबे बलुआत कड़ी मेहनत और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है बलुआत ने
1: हाँ, हाँ।
0: ए चो मतलब ए आए कि आम के सबले पहिल आपन चो जीवना ने अनुशासन होतो राय ने
1: अनुशासन नहीं रहतो बले जरूरी है ने
0: हाँ, हाँ। तो जीवना ने अनुशासन होतो राय अनुशासन में रलो ने आए समय ने मसागत करतो राय तेबे आमी आपलो जीवना के सफल बनावा ने
1: हाँ गोड तो सत्य बलिस दिलवती
0: हाँ
1: संगवारी मन आज चो गोट भात ने इतरी रो कार्यक्रम के आगे बढ़ू और जानू काय काय कार्यक्रम आनलू से
0: संगवारी मन आज तुम चो काजे आनलू से नए तराने जोन थाने आमी सुनाऊं दे तुमके नया नया गीत और सामुदायिक गीत ज्ञान ध्यान चो गोट एचो संगे संगे आनलू से वार्ता और रंग रंग चो गीत गोविंद मन
1: संगवारी मन आज चो पहली गीत है फिल्म अप्रिन ले ये गीत के स्वर दिला से के अंतरा मिश्रा गीतकार आत कौशिक आकाश संगीत दिला से प्रशांत इंगोले तो या सुनू ये गीत

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: तो संगवारी मन, एबे तुमी सुनते रह लास्ट फिल्म अफरीन ले। ए फिल्म गोटक हॉरर फिल्म रैली और यथा डरावना रहस्य देखुक मिल रैली
4: नाव दिलवती।
3: तो संगवारी मन कार्यक्रम ने आगे बढ़ूं और सामुदायिक गीत बाटे बढ़ूं। सामुदायिक गीतानलु से मलयालम भाषा में एचो रचनाकारात सतीश दास, तो या सुनू ये सामुदायिक गीत के।

0: तो संगवारी मन ए भी सुनते रहूं ये गीत के फिल्म दबंग 3 ले ये गीत आप लो मधुर आवाज ने रली जोन के ये जो मधुर आवाज रली सलमान अली मुस्कान और संगीतकार रहो साजिद वाजिद गीतकार रली समीर अंजाम। तो संगवारी मन आम चुला के कार्यक्रम और बला से तो कार्यक्रम के आगे बढ़ाऊं और सुनू वार्ता वार्ताकार आत नमेंद्र मौर्य। तो सुनू ये वार्ता के।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नमेंद्र मौर्य है और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ साइबर अपराध क्या है, ये क्यों हो रहा है और इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अब इंटरनेट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसमें अगर आप गैर कानूनी तरीके की एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए इंटरनेट का कोई भी दुरुपयोग ना करें और खुद भी सावधान रहें। तो पहले हम जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या है। इंटरनेट दिन प्रतिदिन पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहा है। हर उम्र के लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं जैसे शॉपिंग, ई स्टडी, ई न्यूज़, इंटरनेट बैंकिंग, ईमेल, लोकेशन का पता करना या किसी भी चीज़ के बारे में पता करना हो तो हम सबसे पहले इंटरनेट पर ही सर्च करते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दुनिया में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे भी, जो इंटरनेट के जानकारी चुराकर या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी इंफॉर्मेशन को हैक करके उसका गलत उपयोग करते हैं। तो उन हैकर्स के द्वारा की गई धोखाधड़ी या चोरी को हम साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर अपराध कई प्रकार के होते हैं जिनमें हम जानेंगे हैकिंग के बारे में। ये इंटरनेट की दुनिया में सबसे प्रचलित क्राइम है। हैकिंग शायद आपने भी ये नाम बार बार सुना होगा। अगर आपकी कोई वेबसाइट या ब्लॉग है और किसी हैकर ने उसको हैक कर दिया हो तो फिर वो उसमें अपनी मर्जी के अनुसार सब कुछ चेंज कर सकता है या आपको पूरे डाटा को डिलीट कर सकता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इस अटैक को भी वेबसाइट पर या वेब होस्टिंग पर ही यूज़ किया जाता है जिसमें यूज़र को दी जाने वाली सारी सर्विस अनअवेलेबल कर दी जाती है और फिर यूज़र चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। वायरस डिसेमिनेशन, इस शब्दों से तो शायद अच्छी तरह वाकिफ होंगे। जब आपको कंप्यूटर में वायरस आता है तो आपका कंप्यूटर अपने आप कुछ ऐसा प्रोग्राम रन करने लगता है जिनको आप रन ही नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से वेबसाइट पर भी होता है। जैसे ही आप किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं उसके साथ वायरस भी आ जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है जिसका हैकर अपनी मर्जी से गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। कंप्यूटर फॉर्जरी, अपने डिजिटल इंडिया की एक स्कीम डिजिटल लॉकर का नाम तो सुना ही होगा। ये ऐसी स्कीम है जहां हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करके इंटरनेट पर रखते हैं और उसके बाद हम उनको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं या किसी ऑफिस को भेज सकते हैं। यहां भी अगर सिक्योरिटी सही ना हो तो डॉक्यूमेंट्स चोरी हो सकता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, अब इंटरनेट का ज़माना है तो हम बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से ख़रीदते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से ही पे भी कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालते हैं तो हैकर उसे हैक कर लेता है और आपका सारा पैसा लूट सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम है। आप ऑनलाइन ख़रीदारी करने पर इन बातों का ध्यान रखें। प्रोडक्ट डिटेल जाँचें, सामान के दाम ऑनलाइन जांचें, साइट और यूआरएल जांच कर लें, अपनी जानकारी सेव ना करें, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें। फिशिंग, फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना और ये तरीका हैकर यूज़ करते हैं लोगों की आईडी और पासवर्ड पता करने के लिए। इसमें हैकर किसी साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का हूबहू एक दूसरा पेज डिज़ाइन कर अपने डिज़ाइन किए हुए साइट का लिंक यूज़र को भेजता है और जब यूज़र उस लिंक को ओपन कर उसमें अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालता है तो ये सारी जानकारी हैकर्स के पास चली जाती है। इससे बचने का तरीका है जब भी किसी साइट में अपना आईडी पासवर्ड डालें उससे पहले यूआरएल ज़रूर चेक करें, सही हो तभी अपना डिटेल डालें। जो वन टाइम पासवर्ड का यूज़ किया जाता है वो इससे बचने के लिए होता है, ताकि अगर किसी के पास आपकी आईडी और पासवर्ड चला भी जाए तो भी उनको आपके मोबाइल पर जो वन टाइम पासवर्ड आता है वो भी डालना पड़ता है। अगर आप गलती से किसी फिशिंग साइट पर अपनी डिटेल डाल दें तो उसके तुरंत बाद अपना पासवर्ड बदल दें। दोस्तों, ये तो थी बात साइबर क्राइम के बारे में। अब हम जानेंगे कि किन किन तरीकों द्वारा हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले हमें इंटरनेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इंटरनेट के प्रति जागरूकता हो। इससे बचने के लिए आप एंटीवायरस डाल सकते हैं,

0: जो बेस्ट हो। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे एंटीवायरस को इंस्टॉल कर दें जो आपकी ही इन्फॉर्मेशन किसी और को भेज रहा हो। इसलिए चेक करके रिव्यू देखकर ही एंटीवायरस यूज़ करें। क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन किसी भी अनसिक्योर वेबसाइट पर ना डालें। जो भी आपके कंप्यूटर में अननेसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उनको हटा दें। कभी कभी यह होता है कि हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके साथ एक दो और इंस्टॉल हो जाते हैं, तो जो काम के सॉफ्टवेयर नहीं हैं उन्हें हटा दें। समय समय पर पासवर्ड बदलते रहें। स्ट्रांग पासवर्ड का यूज़ करें। स्पैम लिंक्स पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन पेमेंट करते समय HTTPS का ध्यान रखें। पब्लिक वाईफाई का उपयोग ना करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।
1: तो संगवारी मन ये भी सुनते रह लास ये साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम असन है कि पूरा जानकारी धर लो बिना कहीं डिटेल धर भेज तो नु है को कह
2: और कितरो अच्छा जानकारी मन सांगला ने।
1: हाँ,
2: तो अगला गीत है फिल्म पीके ले। ये गीत के गावला से शान श्रेया घोषाल और संगीत दिला से शांतनु मोहित्रा और गीतकार स्वानंद किरकिरे। तो या सुनू ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: संगवारी मन, एबे तुम्ही सुनते रहलास फिल्म पीकेले। ए फिल्म ने काय सुंदर हसी मजाक और कॉमेडी फिल्म आए। ए फिल्म ने पीके नाम चो गोटोक एलियन पृथ्वी ने यू आए जोन था ने आप लोग ग्रह ने आपस नि जाओ सकुआ। संगवारी मन और आमचो लगे ज्ञान ध्यान गोट बले आसी उनके आमी सांगूंगी।
3: तो संगवारी मन ज्ञान ध्यान गोट ने आसे छत्तीसगढ़ जो लोकगीत आए पंडवानी ए थाने महाभारत जो पांच पांडव मंचो कथा के सांगला से अई काजे एके पांडव जो वाणी वल्ले पंडवाणी बोलो सत।
2: हाँ,
3: बांस गीत ले बनार लोर बीतीन मोहरी असन वाद्य यंत्र ले बजववात असने सुवा गीत ददरिया कर्मा गीत पंथी गीत ए सब गीत मन छत्तीसगढ़ ने अलग अलग तिहार मन काजे प्रसिद्ध से ने।
2: हाँ।
3: संगवारी मन, कोणार्क सूर्य मंदिर भारत चो उड़ीसा राज्य ने आसे।
2: हाँ।
3: ये मंदिर के उड़ीसा चो राजा नरसिंह देव प्रथम बनाला ने। ये मंदिर चो निर्माण सन 19वीं सदी ने होली और ये मंदिर के में सूर्य भगवान का जे प्रसिद्ध आसे। ये मंदिर नदी नद्रभंगा नदी चो रेठ ने आसे। ये मंदिर चो फीट ऊंचाई 229 फीट चो ऊंचाई ने बनली से।
2: छत्तीसगढ़ चो सबले बड़े मंदिर रायपुर चो टाटीबंद ने आसे। ये हाँ। मंदिर श्री राधा रास विहारी मंदिर 6 एकड़ चो जमीन ने हासे। ये चो अलावा जसपुर जिला ने बले आसे। जोनाय मधेश्वर महादेव चो मंदिर ये दुनिया भर ले सबले बड़े प्राकृतिक मंदिर आए। संगवारी मन, ज्ञान ध्यान चो गोट ने इतरी रो और तुम जो काज गीत बले आन लुछी। अगला गीत आए फिल्म टू स्टेटस ले स्वरदिला से अरिजीत सिंह चिन्मयी श्रीपदा संगीतकारात शंकर एशान लोय और गीतकारात अभिताम भट्टाचार्य। तो या सुनू ये गीत।

0: दिलवती
1: हाँ
0: गीत मन तो अच्छा अच्छा गीत रहे ने
1: हाँ
0: हाल तु बोले गोटो गीत सुनाओ दिस संगवारी मन के।
1: हाँ तो उसे मल अगला गीत आए फिल्म आशिकी टू ले। ये गीत के गावला से तुलेश कुमार, अरिजीत सिंह, संगीत तिलासत जीत गंगोली, गीतकार इरशाद कमिल। तो या सुनू ये गीत के।

0: तो संगवारी मन एबे तुम्ही सुन तेरा लाश फिल्म आशकी टू ले एक गीत ने प्रेम कहानी चो बनलो फिल्म आए आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर ए फिल्म ने प्रसिद्ध रला।
1: दिलवती आमचो जातो बेरा बलभली मंतर उंचोले पहिल और गोटो गीत बले आसे ने फिल्म आए बिल्लू ले ए गीत के स्वर दिला से सोहम चक्रवर्ती आकृति कक्कर मोनाली संगीतकार आत प्रीतम चक्रवर्ती गीतकार आत गुलजार तो या सुनू ये गीत।

0: तो संगवारी मन आज जो गोड बात इतरी रहो आमचो जात समय बोले होली से मैं आए तुमचो रेडियो संगवारी दिलवती सेठिया
1: और मैं आए तुमचो कंपेयर दोस्त सेमलवती पटेल आमी आमचो जात समय बोले होली ने दिलवती आम के दियास वे विदा शुभ संध्या जुहार।

0: अभी युवावाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया गया आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। शाम के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में होंगे हिंदी समाचार। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गौर स्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
1: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौता

0: सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.2 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6:05 हुए हैं

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही समय में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में समाचार। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर के
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री है आज रायपुर में 112 वाले 400 गाड़ी के संगे संग 32 ठिन फॉरेंसिक मोबाइल वैन ला हरा झंडी दिखा के करें रवाना। बस्तर जिला के गांव नेतानार में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र के करें उद्घाटन। प्रदेश के जनजातीय गांव मन तक सरकारी योजना मन के फायदा पहुंचाए बर आज ले जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान की शुरुआत। और महासमुंद जिला में आज पुलिस गाड़ी की जांच के दौरान एक ठिन कार ले 7.25 किलो ले ज्यादा के सोना के जेवरात करीन बरामद। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में 400 अत्याधुनिक डायल 112 और 32 ठिन फॉरेंसिक मोबाइल वैन ला हरा झंडी दिखा के रवाना करीन। संगे संग 33 ठिन विशेष निगरानी वाहन और 60 ठिन राजमार्ग गश्ती गाड़ी ला घलो रवाना करीन। एकर उद्देश्य राज्य के आपातकालीन सहायता प्रणाली के विस्तार करना और नवा आपराधिक कानून के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता ला मजबूत करना है। अभी तक प्रदेश के सिर्फ 16 ठन जिला मन में यह सुविधा मिलत रहीस, फिर अब राज्य सरकार है डायल 112 सेवा के विस्तार करके जम्मो 33 जिला मन में कर दे है। एक के नंबर सबो पर थीम ऊपर आधारित ये सेवा पुलिस मेडिकल इमरजेंसी आगजनी सड़क दुर्घटना और आपदा जैसन स्थिति में तुरते मदद दे जाही। अब राज्य के नागरिक पारंपरिक दूरभाष काल के अलावा 112 इंडिया अनुप्रयोग संकट संकेत सेवा AI आधारित संवाद प्रणाली ईमेल वेब अनुरोध के संगे संग सामाजिक माध्यम ले घलो आपातकालीन मदद मिल सकी। नवा आपराधिक कानून के तहत वैज्ञानिक जांच ला मजबूती देबर 32 ठिन आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन चला जाते। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संगे संग विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री घलो शामिल हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज बस्तर जिला के गांव नेतानार स्थित CRPF कैंप पहुंची, जहां उमन शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र के उद्घाटन करीन। ये मौका में उमन कीन की पाछू 6 दशक ले नक्सलवाद के स्थिति बस्तर के आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हो है, जिखर भरपाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में भाजपा सरकार पाछू 5 साल में करी। उमन कीन की बस्तर के जम्मो 196 में 70 सुरक्षा कैंप ला अवैया 1.5 साल में जन सुविधा केंद्र में बदल के ओला आदिवासी कल्याण केंद्र बनाया जाही। ही दिशा में आज ए जन सुविधा केंद्र के लोकार्पण करेगी। उन्हें केंद्रीय गृहमंत्री है इमली प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लेवत स्व सहायता समूह के माइलोगिन मल्ले गोट बात करें। जन सुविधा केंद्र के खुले ले दूर दराज में रहैया लोगन मल्ला शासकीय और डिजिटल सेवा जिमा नवा आधार अपडेट KYC मोबाइल नंबर अपडेट और ई आधार जैसन सुविधा मिल सकी। संगे संग गांव के लोगन मल्ला ऑनलाइन प्रमाण पत्र के फायदा मिली। केंद्र में जन्म आय जाति जैसन प्रमाण पत्र बनाए में अब लोगन मल्ला एती होती जाए की जरूरत नहीं पड़ी। केंद्रीय गृहमंत्री है जगदलपुर में स्थित अमर वाटिका में माओवाद के विरुद्ध संघर्ष में जान देवैया 1000 ले ज्यादा शहीद जवान मल्ला श्रद्धांजलि दिन। ये मौका में उमन कहन कि बस्तर के धरती ला शांति सुरक्षा और विकास को ती ले जाए में ये जवान मन के बड़का भूमिका है। इस दौरान गृहमंत्री है बीजापुर नक्सली हमला में शहीद जवान कालेन्द्र प्रसाद नायक और पवन कुमार मंडावी के परिवार वाले मल्ले मिलिन। केंद्रीय गृहमंत्री है सुरक्षा बल के जवान मल्ले गोट बात करके उखर साहस और समर्पण की प्रशंसा करीन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री घलो शामिल हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काली जगदलपुर में होवैया मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के अगुवाई करी। इमा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के संगे संग मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मन घलो शामिल हुई। केंद्रीय गृहमंत्री है कहन कि बस्तर के संगे संग अब भारत नक्सल मुक्त हो चुके हैं। नक्सल मुक्त के अभियान में हजारों जवान मन अपन बलिदान दे है। श्री शाह आज जगदलपुर में राखे गए उजर बस्तर बदलते बस्तर की नई पहचान कार्यक्रम ला संबोधित करें। ओमन कहिन कि जब केंद्र सरकार हर नक्सलवाद खत्म करे के संकल्प लिन तो उखर उद्देश्य सिर्फ माओवाद के खात्मा करना नहीं रहिस, भलुक बस्तर क्षेत्र के गरीब आदिवासी मन के जिंदगी में जम्मू सुविधा पहुंचाना रहिस जौन हा बड़का शहर मन में होते। ओमन कहिन कि अवैया 5 साल में बस्तर हा देश में सबले विकसित आदिवासी संभाग बनी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बढ़ो पांचे समाचार को दी। प्रदेश के जनजातीय गांव मन तक सरकारी योजना मन के फायदा पहुंचाए बर आज ले जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के शुरुआत होगी। 25 मई तक चलैया ये अभियान प्रदेश के 8,000 ले ज्यादा गांव मन में चलाया जाही। आदिम जाति विकास विभाग के ये अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ले जुड़े गांव मन शामिल करेंगे है। रायपुर जिला ला छोड़ के प्रदेश के जम्मू जिला मन में स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक सुरक्षा पोषण और पेयजल योजना मन के लाभ पात्र लोगन मन तक पहुंचाया जात है। अधिकारी मन गांव मन में जन सुनवाई करी और आदि सेवा केंद्र मन में शिकायत मन के निपटारा करे जाही। ऑनलाइन दवाई मन के बिक्री के विरोध में कतकोन केमिस्ट संगठन डहार ले 20 मई के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान करेंगे है। इला देखत प्रदेश के खाद्य और औषधि प्रशासन है जम्मू जिला मन में अधिकारी मन ला जरूरी जीवन रक्षक दवाई आपातकालीन स्वास्थ्य उत्पाद और चिकित्सकीय जिनिस मन ला राखे के निर्देश दे है। प्रशासन है बतैन कि आपातकालीन स्थिति में सरकारी अस्पताल जन औषधि केन्द्र धनवंतरी मेडिकल स्टोर और आने औषधि केन्द्र मन में दवाई मिली। प्रशासन है आम लोगन मन ले अपील करे हवे कि ओमन कोनो प्रकार के दवाई ला सकेल के झन रखें। महासमुंद जिला में आज पुलिस गाड़ी जांच के दौरान एक ठीन कार ले 7.25 किलो ले ज्यादा के सोना के जेवरात बरामद करी है। बरामद सोना के कीमत 9,17,00,000 रुपया आंके गए है। हमारे संवाददाता ले मिले जानबा के मुताबिक जिला के सिंघोड़ा थाना पुलिस डहार ले ओडिशा सीमा ले लगे रेहटी खोल नाका में जांच अभियान चलाया जात रही। यही दौरान ओडिशा कोती ले आवत एक ठीन कार ला रोक के तलाशी लेगीस। तलाशी के दौरान सोना के आभूषण जब्त करेगीस। पुलिस दस्तावेज पेश नहीं करे के सेती गुजरात के 3 जिन आरोपी मल्ला हिरासत में ले है। आयकर विभाग और राजस्व सूचना निदेशालय ला जानबा दे देगे है। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के एक दो जगह में हवा गरेर चले और गाज गिरे के संभावना जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल के खाड़ी और पश्चिम मध्य बंगाल के खाड़ी के ऊपर एक ठिन निम्न दाब के क्षेत्र बने हैं। संगे संग एक ठिन चक्रीय चक्रवात विस्तारित है। एकर असर ले बदली वर्षा की स्थिति बना थे। जगदलपुर के बालिंगा के तीर आज राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में बस के पलटे ले एक जिन यात्री की मौत हो गई। उन्हें 30 जिन यात्री मन घायल हो गए है जिमा ले 7 जिन के हालत गंभीर बताया जात है। ये बस रायपुर ले कोंटा जावत रही और कोरबा जिला के पाली थाना क्षेत्र के गांव भादा के जंगल में तेंदुपत्ता टोरे बर गे 2 जिन गांव के लोगन मन ऊपर भालू हमला कर दिन। ये घटना में घायल दोनों मनखे ला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। केंद्रीय गृहमंत्री आज रायपुर में 112 वाले 400 गाड़ी के संगे संग 32 ठिन फॉरेंसिक मोबाइल वैन ल हरा झंडी दिखा के करें रवाना। बस्तर जिला के गांव नेतानार में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र के करें उद्घाटन। प्रदेश के जनजातीय गांव मन तक सरकारी योजना के फायदा पहुंचाए बर आज ले जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के शुरुआत और महासमुंद जिला में आज पुलिस गाड़ी जांच के दौरान एक ठीन कार ले 7.25 किलो ले ज्यादा के सोना के जेवरात करीन बरामद। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार
3: आकाशवाणी का।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमन्त्री जोनास गहरस्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबन्धित प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। कांग्रेस नेता वीडी सतीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। पश्चिमबंग सर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य, महिला विरुद्धम अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषणायोगौ निर्मितौ। स्वास्थ्य परामर्शपत्रे उष्णतरंगस्य स्थितिं निवारयितुं आयुर्वेदादि विविध आयुष प्रणाल्याः पारंपरिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं एमए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमन्त्री जोनास गहरस्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबन्धित प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। स्वच्छोर्जायाः, नील अर्थव्यवस्थायाः, हरित संक्रमणस्य च क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं महत्वपूर्णं सोपानं लक्ष्यीकृत्य भारत नॉर्वे सम्बन्धं हरित सामरिक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकर्तुं उभावपि नेतारौ सहमतौ अभवताम्।
1: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और

0: कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनी ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
1: वार्तालापावधौ उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां सम्पूर्ण क्षेत्रस्य समीक्षाम् अकुरुताम्।
0: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य स्वीडन देशस्य द्विदिवसीया यात्रा समापिता। स्वीडन देशस्य प्रवासे अनेकानि महत्वपूर्णानि परिणामानि प्राप्तानि, येन द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु नूतना गतिः प्राप्ता इति श्रीमोदिना सामाजिकान्तर्जालीय पटले उक्तम्। सः अवदत् यत् तेषां द्वैपाक्षिक उपबन्धान् व्यूहात्मक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकरणात् आरभ्य संयुक्त नवान्वेषण सहभागित्वम् इत्यस्य द्वितीयो भागः अथ भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मार्गस्य आरम्भात् आरभ्य आगामिषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणीकरणस्य लक्ष्यम् अभवदिति। सः स्वीडन देशस्य जनेभ्यः स्वीडन देशस्य सर्वकाराय प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यस्मै च स्नेहाभिवर्षणाय धन्यवादभावान् प्रायच्छत्। आग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक आर्थिक विनिमयं द्विगुणीकर्तुं मेक इन इण्डिया, मेड विद स्वीडन इत्येतयोश्च उपक्रमयोः विशेषतः हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, उन्नत विनिर्माणम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं समग्र मार्गचित्रस्य लक्ष्यम् अस्ति इति सः प्रावोचत्। कांग्रेस दलस्य वीडी सदीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। राज्यपालः राजेन्द्रन विश्वनाथ आर्लेकरः श्री सतीशनं पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं कारितवान्। मुख्यमन्त्रिणा सह एकविंशतिः सदस्याः मन्त्रिपरिषदः कार्यभारं स्वीकृतवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गांधी, कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना राज्यस्य मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेशस्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु, केरलस्य भाजपा पक्षस्य राज्याध्यक्षः राजीव चन्द्रशेखरादयः नेतारः उपस्थिताः आसन्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिमबंगसर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य, महिला विरुद्धम् अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषण आयोगौ निर्मितौ। मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य राज्यमंत्रिमण्डलस्य अनुमोदनानन्तरं अस्य निर्णयस्य घोषणां कृतवान्। केन्द्रीय गृह सहकारिता च मंत्री अमितशाह अद्य रायपुरे राज्यस्तरीय कार्यक्रमे अत्याधुनिक डायल 112 इति आपत्कालीन प्रतिक्रिया वाहनानां आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल यानानां च ध्वज प्रदर्शन पूर्वकं शुभारंभं विहितवान्। राज्यस्य विभिन्नेषु मण्डलेषु नियोजनार्थं अद्य आहत्य 400 नूतनोन्नतापत्कालिक वाहनानि लोकार्पितम्। अस्मिन्नवसरे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभाध्यक्ष रमण सिंहस्य उपस्थिताः आसन्। सर्वकारः अवदत् यत् देशे तैलेन्धन शोधनागाराणि सामान्यरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। भारते च वर्तमानिक पश्चिम एशिया संकटेन आयात बाधायाः अनन्तरम् अपि पर्याप्तानि अशोधित तैलेन्धन भण्डाराणि सन्ति इति। पश्चिम एशियायाः साम्प्रतिक स्थितिविषये अद्य नवदिल्ली नगरे अन्तर्मन्त्रालयीयं विवरणं प्रायच्छन् पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीना सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, प्राकृतिक गैस इत्येतेषां पर्याप्त भण्डारम् अस्ति इति।
2: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स है और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
1: आयुष मंत्रालय अद्य वर्तमान ग्रीष्मकालाय अत्यधिक उष्णतायाः सह उष्णतरंगस्य च विषये विस्तृतं सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्शं प्राकाशयत्। परामर्शत्वेन मंत्रालयेन उक्तं यत् पर्याप्ततया जलग्रहणं व्यस्ततायाम् अपि सूर्यप्रकाशस्य प्रत्यक्ष संसर्गात् निवारणं विद्युद्श्लेष्यै समृद्धानां ऋतुकालिक फलानां द्रवाणां च सेवनं करणीयमिति प्राकाशयन्। स्वास्थ्य परामर्शपत्रे उष्णतरंगस्य स्थितिं निवारयितुम् आयुर्वेद सिद्ध योग यूनानी होमियोपैथी इत्यादीनां विविध आयुष प्रणाल्याः पारंपरिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् वैश्विक समस्याभिः सह अनिश्चिततासु अपि भारतं द्रुतगत्या प्रगतिं कुर्वदस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां भारत व्यापार महोत्सवस्य अन्तर्जालीय पटलस्य उद्घाटने श्रीगोयलः अग्रे गन्तुम् उत्साहः कदापि न न्यूनीभवति तथा च सर्वे अविरामं कार्यं कुर्वन्तु इति उक्तवान्।
3: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्विट्जरलैंड देशस्य जिनोवा नगरे आयोजिते 79वें विश्व स्वास्थ्य सभायाः अनन्तरं विश्व स्वास्थ्य संगठनस्य महानिदेशकेन सह मिलितवान्। सामाजिक पटले स्वास्थ्य मंत्रालयेन उक्तं यत् श्री नड्डाः पुनः दृढीकृतवान् यत् वैश्विक स्वास्थ्य समता परिवर्तयितुं भारतस्य प्रतिबद्धता अस्ति इति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अद्य वियतनाम दक्षिण कोरिया देशयोः यात्रायामस्ति। सः वियतनाम देशस्य हनोई इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। वियतनामदेशस्य प्रवासावधौ राजनाथ सिंहः वियतनामदेशस्य राष्ट्रियरक्षामन्त्रिणा जनरल फॉन वॉन जियांग इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। सामाजिकान्तर्जालीय पटले मन्त्री अवदत् यत् सः द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां व्याप्तिम् अधिकं विस्तारयितुम् उभयोः देशयोः भ्रमणार्थम् उत्सुकः अस्ति इति। सः अवदत् यत् सामरिक सैन्य सहयोगस्य गहनता, रक्षा औद्योगिक सहभागित्वस्य सुदृढीकरणं, समुद्रीय सहयोगस्य संवर्धनार्थं भारत प्रशान्त क्षेत्रे शान्तेः स्थिरतायाः च प्रोत्साहनम् अस्य केन्द्रबिन्दुः भविष्यति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स दलं एमए चिदम्बरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति इति वार्ताः।
4: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6:30 हुए हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए नीला और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे नीला और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही समय में विज्ञापनों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। इसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे हैं।

0: करनी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
7: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
8: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
7: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
7: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
10: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर जिले के नेतानार में जन सुविधा केंद्र का किया शुभारंभ, कहा कि अगले 1.5 साल में बस्तर में स्थित 70 सुरक्षा शिविरों को ऐसे सेवा केंद्रों में बदला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत 400 अत्याधुनिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। अब प्रदेश के सभी जिलों में शुरू हो गई है ये सेवा। महासमुंद पुलिस ने तलाशी के दौरान एक वाहन से करीब 9 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बस्तर जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। इस जन सुविधा केंद्र को आदिवासी जन नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर गुंडाधुर के नाम पर स्थापित किया गया है। ये जन सुविधा केंद्र CRPF के सुरक्षा परिसर में बनाया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आगामी 1.5 साल में बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के 196 कैंपों में से 70 कैंपों को इसी तरह के सेवा केंद्र में बदला जाएगा।
11: पूरे बस्तर के आदिवासी भाइयों बहनों को एक वादा कर जाता हूं, 1 साल में सरकार को हम रायपुर से आपके गांव तक लाएंगे, किसी को रायपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए एक कैंप की शुरुआत की है। बस्तर में अभी 196 कैंप है, उसमें से 70 कैंप को हम इसी प्रकार के सेवा गांव के अंदर 1.5 साल के अंदर परिवर्तित कर आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाने वाले हैं। हमने कैंपों को अच्छे तरीके से डिजाइन करने के लिए एनआईडी को प्रोजेक्ट देने वाले हैं, जिसके अंदर बैंकिंग की भी सुविधा होगी, आपका आधार कार्ड भी बनेगा, राशन कार्ड भी बनेगा, सरकार की योजना के पैसे यहीं से आपको मिल जाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 371 योजना का लाभ एक ही भवन में से आपको मिलेगा। ढेर सारी गतिविधियां यहां जोड़ी जाएगी, हमारे हर गांव में डेयरी भी आएगी और हर आदिवासी बहन को 2 पशु देने का काम भारत सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करेंगे।
10: केंद्रीय गृह मंत्री ने इमली प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रही स्वसहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की और उनसे जाना कि कैसे वे इमली की बिक्री कर अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं। श्री शाह आज जगदलपुर में आयोजित उजर बस्तर बदलते बस्तर की नई पहचान कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों, सुरक्षा बलों के जवानों के साथ ही नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प लिया था तो उसका उद्देश्य केवल माओवाद का खात्मा करना ही नहीं बल्कि बस्तर क्षेत्र के गरीब आदिवासियों के जीवन में वे सभी सुविधाएं पहुंचाना भी था जो बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध हैं।
11: अब हत्यारी नक्सल अभियान समाप्त हो गया है। मैं आज आपको विश्वास के साथ कहकर जाता हूं, पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में मेरा

0: 70 सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर प्रवास के दौरान आज जगदलपुर में अमर वाटिका पहुंचकर माओवाद के विरुद्ध संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बस्तर की धरती पर शांति, सुरक्षा और विकास स्थापित करने में जवानों का बलिदान अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस दौरान श्री शाह ने बीजापुर नक्सली हमले में शहीद जवान कालेंद्र प्रसाद नायक और पवन कुमार मंडावी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवारजनों के बीच बैठकर उनका दुख साझा किया और सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों के जवानों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया और उनके साहस तथा समर्पण की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 19 मई को जगदलपुर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 400 अत्याधुनिक डायल 112 और 32 फोरेंसिक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही 33 विशेष निगरानी वाहन और 60 राजमार्ग गश्ती वाहन भी रवाना किए। अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में डायल 112 आपातकालीन सेवा उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सकेगा। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। इस आधुनिक व्यवस्था के तहत अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी विकसित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमारे YouTube चैनल है छत्तीसगढ़ AIR News। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य और निर्बाध रूप से हो रही है। राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान ने बताया कि राज्य की मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान में हो रही आपूर्ति पूरी तरह से पर्याप्त है। नागरिकों को आश्वस्त किया गया है कि ईंधन को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेल कंपनियों ने नागरिकों से घबराहट में पेट्रोलियम उत्पादों की खरीदी न करने की अपील की है। प्रदेश के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हो गया है। 25 मई तक चलने वाला ये अभियान प्रदेश के 8,000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है। रायपुर जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पोषण और पेयजल योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अधिकारी गांवों में जनसुनवाई करेंगे और आदि सेवा केंद्रों में शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। ऑनलाइन औषधियों की बिक्री के विरोध में विभिन्न केमिस्ट संगठनों द्वारा 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसे देखते हुए प्रदेश के खाद्य और औषधि प्रशासन ने सभी जिलों में अधिकारियों को जरूरी जीवन रक्षक दवाइयां, आपातकालीन स्वास्थ्य उत्पादों और चिकित्सकीय सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में सरकारी अस्पतालों, जन औषधि केंद्रों, धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स और अन्य औषधि केंद्रों से दवाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि घबराहट में अनावश्यक दवाओं का संग्रहण न करें। महासमुंद जिले में आज पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कार से 7.25 किलो से अधिक सोने के जेवरात बरामद किए हैं। बरामद सोने की कीमत 9,17,00,000 रुपए से अधिक आंकी गई है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के सिंघोड़ा थाना पुलिस द्वारा ओडिशा सीमा से लगे रहटीखोल नाके पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान ओडिशा की तरफ से आ रही एक संदिग्ध कार को रोककर ली गई तलाशी में छिपाकर ले जाए जा रहे सोने के आभूषण जब्त किए गए। पुलिस ने वैध दस्तावेज पेश न करने पर गुजरात के 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आयकर विभाग और राजस्व सूचना निदेशालय को सूचना दे दी गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही एक चक्रीय चक्रवात विस्तारित है। इसके असर से बदली बारिश की स्थिति बन रही है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता के लिए प्रभात फेरी और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जगदलपुर के बालिंगा के पास आज राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर बस के पलटने से एक यात्री की मौत हो गई है, वहीं 30 अन्य यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 7 की हालत गंभीर बताई गई है। ये बस रायपुर से कोंटा जा रही थी। बिलासपुर के कोटा परियोजना मंडल परिक्षेत्र के तहत रतनपुर के जूना शहर क्षेत्र में वन विभाग ने जंगली सुअर के मांस की अवैध बिक्री के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भादा के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए 2 ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर दिया। इस घटना में घायल 2 ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर जिले के नेतानार में जन सुविधा केंद्र का किया शुभारंभ। कहा कि अगले 1.5 साल में बस्तर में स्थित 70 सुरक्षा शिविरों को ऐसे सेवा केंद्रों में बदला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत 400 अत्याधुनिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। अब प्रदेश के सभी जिलों में शुरू हो गई है ये सेवा। महासमुंद पुलिस ने तलाशी के दौरान एक वाहन से करीब 9 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम पंडकी बहन, राम राम
1: राम राम भगनी, राम राम
0: अमरली ने
1: हो काय अमरली
0: तो फिर आम इतने दोनों का भेट गाट हो लू
1: हो
0: एदाय गांव करी दा दीदी मन बोल भेट हूं
1: अले
0: तो एची संगे बस्तर के स्वर सुन तो सब पाए दादा दीदी सियान सजन संगवारी आया बुआ मन के मैं भगनी
1: मैं पंडकी
0: और आम दोनों करूं से
1: राम राम, राम। नानी नानी पिला मन के भूलक ली श्री
0: ना भूलगुरी
1: हाँ फिर
0: आमी दुनो चोघाई ले नानी नानी पिला मन के खूब
1: खूब माया एरी भगनी
0: ओरी
1: ए तुम जो गांव बट माता बाजार होली देखो जाओ रे
0: जाओ रे री खूब आरी लागली देव दादी मत को संद नाचते रहो
1: ओ देव दादी मन के देखो जाओ रे बिने ओ हुन फिर बाजार बल्ले सबले आगे तो देवी देवता चो जगह उन चो मिल तो मिस तो आईने
0: सत्य गोट के मुर कर लीस पंड की देव धाम ही बोल ले आम चो फिर बस्तर चो देवी फिर जानिस का आए
1: हो सबले आराध्य देवी बल्लो ने हुना है आम चो दंतेश्वरी आया
0: ने ये फिर कहाँ आ रहे से दंते

0: देवी देवी आए कि आम चो बस्तर चो ये चो बल खूबे माना से
1: ने हो हो तो ये देवी देवता मन संगे काया गड़ो आंगा देव बल रहे से ने हुन आंगा देव चो आगे पूजा हो से हुन पवित्र कर से हुन जगह के तार बाद हुता माता आए से असन बल सोचे ने
0: जो आदिवासी भाई बहन फिर ये के बले पूजा करे सो
1: पूजा करे सो
0: पूजा पाठ करे सो असनी असनी फिर तू दक्षिण कसन जल हम चो गांव गांव ने पले ए ग्राम देवता बल रहे से
1: ग्राम देवता माता गुड़ी उन सब पाए गांव ने गोटो गोटो माता गुड़ी आसे
0: हाँ सब पाए गांव ने गोटो गोटो गुड़ी आसे उन गुड़ी ये काज रहे से कि आप लोग गांव चो ए देख रख काजे कहीं फिर हो से तो उन जो काजे गुड़ी मन रहे से यार उन आम चो गांव चो पुजारी रहे से सियान सज्जन रहे सो तार हूं तापर पूजा पाठ करे सो गांव ने कहीं असन हो से दुख हो से तो फिर कहीं
1: अन्य कहा जावा माता लग तो जावा ने काके पूछुक जावा कहीं होले हसने चीज असन काया बेड़ा खड़ा चो बेरा आए हुन भीमा भीमा पूजा बल कर सोत समझ ली सुन पानी बरसा बेड़ा खड़ा फसल काजे भीमा देव के पूजा कर सोत हुनके सुमर सोत
0: सुमर तो तरसनी आम चो बोलो ए प्राकृतिक पूजा बोले आम चो माटी तैयार हो बोले
1: हो
0: तो कहीं छो फसल के पहला खातर आए बोले उनके देवी देवता लथन चढ़ाऊ से और उन चो बाद ने फिर आमी फिर करू
1: कसन बल्ले ने गोठ मन के सुरता कर लो ने बिना माता देवी देवता चो बिना पूजा करलार कोनी बीती काम के करूप नहीं होए होए
0: असली ची होए से हम जब बस्तर ने गोटक दशहरा बोले रे देवी देवता च
1: मिलन बस्तर दशहरा ने फिर सब फाए 75 दिन बना कोंटी चो देवी देवता मन आसुन मिसोत
0: रूंडून बातले ता फिर कितलो निको होय से ने दशहरा तैयार ए तैयार फिर असन होय से कि फिर देवी देवता के आप लो विधि विधान ले फिर पूजा पाठ होय से फिर असनी सरली जाल फिर उतलो दिन च सरली फिर उन च
1: विदानी होय से विदा
0: वाले कितलो हरिकले होय से ने
1: तो ए सब गोठ मन के काय नि भूलक तो राय माता मन के सफाई के सुरता करून ए मन जो बिना आम चो कोनी काम नहीं होय आय कि नहीं तो
0: ये गोट बात तो होली हो राम से लग पूरा निको गोट बला से एक बल सुनो
1: आले
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
1: हाँ तो फगनी
0: हाँ
1: ए गोट मन के तो सुन लू अदा आम चो लगे एक ठन भेट वार्ता बोले आसे तो ए भेट वार्ता के सांगतोत श्री लैखू राम बघेल
0: और भेट और करता है बलबीर सिंह कच्छ
1: हो अले की सुनो और दादा दीदी सुनो
0: सुनाओ
4: गांवकारी भाई बहन मन आज मैं गोट बात करें से ये रुक चो जिनिस बनाओ भाई संगे तो सब ले आगे हैं तुझ नाव आरु गांव चुनाव सांग ना
5: मुझे नाव लईकुराम भोगेल है
4: अच्छा
5: मैं जूनागुड़ा अनु है
4: जूनागुड़ा
5: जूनागुड़ा बस्तर
4: अच्छा जूनागुड़ा बस्तर
5: हो
4: अच्छा बल्ले ने तुमी लकड़ी रुक चो काम करू आस ना
5: हो
4: अच्छा बल्ले ने ये काय काय काम करू आस रुक लकड़ी चो
5: लकड़ी बोले हर प्रकार चो करुआ जसन मूर्ति बोले मूर्ति बनाऊ भगवान मूर्ति देव मूर्ति तो लकड़ी नहीं बनाओ उन पोखना वगैरह बनाऊआ
4: अच्छा
5: और जसन बोल भगवान भी जो बोल बोले उनको बनाऊ
4: अच्छा तो लेकिन हम ये सांग जसन की ये जो कला है बोलू ये कला के बोले ने तुम्हें कहाँ ले सिखलास ना परंपरा ले आए कि कोनीतान सिखला सके
5: नहीं परंपरा ले नू आए माता रे हम ची गांव लगे ये बाकी लोग मन बोल करते रहला तो हम ही बोले दकुन दकुन बारी नहीं नहीं ता बोले सरकारी अफसर हो ऐसे हम बोल सीख ले हो जैसे बोलते असन विचार मन नहीं लिया और थोड़े से आखिरी बोल ली बन
4: अच्छा तो ये कितलो दिन असन होली तुम चो ये काम करतो
5: मोचो ये 1997 वाले ये काम सीख ले
4: अच्छा तो खूब दिन होली बोलू ने तो ये भी कहीं असन दुकान असन खोल ला सा से बनात का जी
5: ओ ये भी ये ता गुड दुकान आसे तो हुन ताने ऑर्डर मन मीर से के ने काम करते जाऊं से
4: अच्छा तो ये भी मतलब दुकान ने कहीं असन समूह असन आए कि तुम जो एकला है बितिया जाली
5: नहीं समूह ने पहले रली मातर होता कुछ लोग मोरुन गेला कुछ लोग फिर आदो ये दुकान वगैरह चलो

0: लाइनी होय से ना हम चोन बहुत कठिनाई होय से ऐसा ना सातर पीतर दंड काय काय होय से हम के तुरते पैसा होतर आसे बोलते कुछ लोग गुजते गेला।
1: अच्छा
0: तो सुता एक जान उन फेर किनिक जोड़ी आलो और उन ये भी चला आए से बाहर ले बोला ड्रोबरा धरे से और फिर हम के बोले काम कराए।
1: अच्छा बोले तुम बोले उता बनाए सास बोले ने
0: हो
1: तो ये भी जुगे करुन काय जिनिस जो आर्डर ऐसे ना कसन लोग मन ऐसो
0: ये भी सोफा पलंग मुंशो आर्डर चले।
1: हाँ अच्छा तो ये भी तो आजकल बल्दे नवा हिसाब ने नवा डिजाइन हिसाब ने लोग मन कोई मांग करू आ
0: हो
1: तो
0: कर सोत काय
1: कर सोत
0: हो
1: तो हुनी हिसाब ने भी बनाए सास बोलू ने
0: हो जसन बोले कोनी एल्बो मान दे सो।
1: हाँ
0: मुके एल्बो चो हिसाब ने हो त्रास बोले उनके बोल दुखन बारी उसने ड्राइंग करुन बारी एल्बम ने बनाऊ से।
1: अच्छा
0: ये भी जो मैं ये भी बोल बूता करे से ये बोले एल्बम जो है मतलब फोटो दिला मैं उनके दुखन बारी बनाए।
1: अच्छा तो जुगे के चित्रकारी भी काय चीज जो मांग कर सो ना काय चीज चित्रकारी उतारो पलंग हो
0: चित्रकारी बोल ले ऐसा हम जो बस्तर चो परंपरा जसन आदिवासी जसन रहे सो काय है ये भी थी जो बस्तर आर्ट बोल ले नूनी आदिवासी सब चो बनाऊ से।
1: अच्छा तो बल्ले ने तुम चू जसन की पलंग आए नहीं तो सोफा सेट आए नहीं तो दीवान आए असन चित्रकारी भी थी बनाते रहे ने कितलो दिन असन लागे से जाना तुम के गोटो
0: नहीं ये भी थी कम से कम हम के एक आदमी के अगर अच्छा डिजाइन ले बनाता है बोले उन्हीं महीना दिन तक लागे से महीना बोलू 15-20 दिन बोल लागे।
1: अच्छा
0: ओ
1: तो बोले ने कौन रुक चो कि अच्छा फिनिशिंग बने जाले अच्छा बोले रहे से काय लोग
0: ये था तो दादा बनाए तो बोले 2-3 प्रकार से रुका से माता सबसे ज्यादा बनाए तो बोले साईगंजी बने।
1: अच्छा
0: सीवना च बोल बनवाए बीजा च बोल बनवाए माता हुन तान तान थोड़े खोदाई हो ग्रा ने कठिनाई हुआ है।
1: अच्छा
0: सीवना न हुआ है नरम लकड़ी आए लेकिन उनकी टूट तो ज्यादा चांस रुआ है पलंग वगैरह बन ले।
1: अच्छा
0: कहा घसरू दी ले थोड़े टूट तो डर हुआ है।
1: अच्छा
0: उनमें साइगन ने ज्यादा बना
1: ये किनिक मजबूत रहे से।
0: ओ
1: तो ता पालिस वगैरह लागे होती ना काय पालिस कसम
0: ओ पालिस बोले बनाऊ दादा।
1: अच्छा
0: पालिस भी था बोले आसो।
1: अच्छा अलग अलग सफाई आसाज बोलू
0: हो सफाई अलग अलग आसो बुढ़ई आसो थामी आसो।
1: अच्छा गोटक चीज के फिनिशिंग पूरा फिनिशिंग कर तो काजे मतलब काय काय मुरले लागे ना कसन कसन करू पड़े से घसानी काय काय पाली
0: सबसे पहले तो फारा वगैरह मिल ले गेन नानू से।
1: हाँ
0: उताले गेन आन लो पास फिर था काय साइज चुआ काय है बोलून फिर उन्हीं हिसाब ने नाप जोक करून भारी उन्हीं हिसाब ने फारा मन के कट फिट करून फिर उनके जोड़ तो हिसाब उन जो बाद में फिर फिटिंग वगैरह करून फिर उन जो आकार दे तो रहा है कसन टाइप से बना ले अच्छा दखे दे।
1: अच्छा।
0: और कसन कर लेने ज्यादा मार्केट में चले तो बोलते असन फिर विचार बनाओ।
1: अच्छा और फिर उन रेत माल काय काय घसाई पाली सो कसन की तार लागे सारी
0: ये बोल लेने ये पूरा खोदाई हो लिया दादा। और ये फिटिंग वगैरह हो लिया पाचे एक काय कर सो कि यदाए उन पालीस ने मतलब खर्च वगैरह नहीं है एक यार फिटिंग वगैरह होलो पाजी उनके फिर खोलून भरे फिर रेत मल वगैरह घिसन फिर पालीस कर पड़ा।
1: अच्छा
0: ओ ये दोबारा खर्च नहीं हो और खर्चा बोला और दोबारा नहीं हो बोलते रहे।
1: अच्छा
0: ओ
1: आगे पूरा फिट कर उन दक्षास फिर उसके खोलून बात फिर उतलो ने फिर उनके पालीस वगैरह लगाए साथ।
0: ओ उन लगे अच्छा दखे से नहीं दखे से फिर उनके फिर थोड़े सुधार करूँ फिर पाचे पाली सोगरा सब आए।
1: अच्छा तो ये मंचो रेट कसन हिसाब ने जाए ना बिक तो बीती कितना कीमत ने अलग अलग चीज मंचो
0: ये अच्छो जसन 6x6 आए उनचो कीमत है लगे 40-45,000 तक नहीं जाए से।
1: अच्छा
0: और उता फिर सब चो चार जो ओगरा लगे से बुढ़ई चो आए खोदाई चो आए फिर पालीस बीता चो आए मटेरियल चो आए ये सब के निस्काउंस लकड़ी चो आए काय काय बोलन फिर उन्हीं साहब ने।
1: अच्छा। सबके जोड़न बात फिर उनचो रेट निकल रहा है साज
0: उनचे रेट निस्काउंस से। और ये जसन दुकान आ से ये चो बोले समझ उन जोन बोल दुकान बना लो उनके बोल तो 1,000 रुपया बोल चाहिए संग आए तो ने
1: उन तो चाहिए
0: तो 1,001 रुपया उनके बोले फायदा हो बोलते उन बोले उसे निस्काउंस।
1: अच्छा अच्छा

0: लैखु राम बघेल दादा, ये कोनी दूसर बिता घेनुक नील हुंचु काई रसी दोगरा बल देतो बीती पूरा व्यवस्था आसे।
1: हो दादा,
0: अच्छा
1: हुंचो पूरा मिल ले लकड़ी केन उस तो फिर हुंचो पूरा बिल दिया बोले बिल दे तो बीती आए। और नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा बोले फिर तू चो बिचारा है बोलू हम मातराम से दे तो ही काम है
0: दे तो काम है ने। नहीं आजकल उन जीएसटी बीती जो उन कर आए ये बीती बोले आसे व्यवस्था तुम चलो बना ला सा बिल ने होता
1: हो हो
0: हो ऐसे ने
1: हो ऐसे।
0: अच्छा बोले ने कोनी घेन तो बीता बाहर ही ने तो काजे बोले रसीद वगैरह जो व्यवस्था से कहीं तकलीफ नहीं हुए बोलू ने तो बीता ने।
1: नहीं नहीं तकलीफ नहीं हुए उनके अब देव पड़े थे इतने भी बाहर ने थे नॉन फिर अब दसरे पटाए बोले दुई नंबर लकड़ी हुए थे।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ
1: ओ, काल दिन फिर राम के बोल फॉरेस्ट बीता परेशान कर दे।
0: हाँ
1: अरग लाग बोल परेशान कर
0: परेशान हो दे। हाँ तो लेखु दादा ये तो अच्छा तुम जो कलाकृति आए बोलू भी तुम बनाए सास भीख सास मांतर इच्छो ने बोलू भी काय तुम जो जीवना ने काय फरक पड़ ली ना तुम जो जीवना ने
1: फरक बोले उतरो मतलब एकदम नी पड़े।
0: हाँ
1: मांतर काय आई की ये था ज्यादा परेशानी बोल नहीं हो यार काय असन गाड़ी घोड़ा पाटे जाऊ क्लाई नहीं है बोल रहा घर बोसन काम करता रहे।
0: हाँ हाँ हाँ
1: हाँ
0: अच्छा नहीं
1: थोड़े बहुत परिवर्तन होली मतलब जसन की अच्छे काम चुनौती जा अच्छा हुआ है बुलुआ जी उसने प्रकार ये काम करते करते थोड़े से और दूसरा बुद्धि विकास होती जाए
0: विकास बोले जीवना ने बोले कहीं खान पान रहन सहन चो तकलीफ बोले नहीं हुई होती बोलू
1: नहीं हुए हो तो ने।
0: बोले ना सुना कोनी बोले कहीं ची बोले कला की सीखू रहे उनचो जीवना जीव तो काजे बोले ने खूब काम है ऐसे बोलू
1: हो
0: है कि नहीं
1: कला तो कला ची है फिर उनचो कला चो फिर कदर बोल कर तो लोग आसो ची।
0: हाँ हाँ उन तो आए बल्ले दूसर लगे मान सम्मान बल्ले गोटो मेर तो असन हुआ टाइप बोलू कोनी बोल कल आए कि नहीं।
1: हो
0: हाँ
1: हाँ मान सम्मान तो मेरे से ची मात्र राम के बाहर बोले ऑफर बोलने तेरे हुआ ये था ऐसा काम करु क्लाइया।
0: हाँ हाँ
1: सुनाए बोलते घर की परेशानी काय काय रहे से उन कारण हम बाहर बोल थोड़ी जाऊ नहीं सको।
0: अच्छा हाँ हाँ तो ये चे संग संग फिर और दूसर घर चो जो खेती बाड़ी उन बल काम है से होती
1: ओ उन बल काम है और जो हम किला जिला पढ़ाई लिखाई तब ये परेशानी रहे से।
0: हाँ हाँ अच्छा
1: उन कारण ने जाऊ नहीं हो बाहर
0: बाहर नहीं। हाँ बोले ने दख बाहर नहीं गेले बोले एता है तो तुम जो काम बोले दखा दे ऐसे है कि नहीं।
1: हो हो
0: तो आलना लेखुराम बघेल दादा तू इतलो अच्छा बोले तुम चो जोन बोले लकड़ी ले काय काय जीनिस मन बनाए सास तुम चो कलाकृति ये सपाय गोट के सांगरीस ना आल खूब खूब जुआर ना।
1: ओ दादा राम राम
0: राम राम।
2: हाँ तो फगनी
3: ओ इपनी की
2: भेंट वार्ता के तो सुन लू ने
3: ओ,
2: दादा दीदी मन बस सुन
3: लगे
2: और अच्छा सीखला और मैं बोलते रहे कि एक गोट मन अच्छा नगद गोट मन के तो सुन लू तो गोटो गीत बोले सुनू और गीत गालो लोग मन चुनाव के गीत सुन लर पाछे सांगवा हम।

0: हाँ, ये
1: हाँ
0: पगनी
1: वही
0: मेघनाथ पटनायक रुनमंचो संगवारी मन संगे गायलो गीत के सुन लू
1: सुन लो। हो
0: और जातो समय बल्ले होली
1: से हो।
0: तो तू ये विदा मांग मैं मोडरा गडरा के सकले ने।
1: हाँ जा तो पूरे बस्तर के स्वर सुन तो सब पाए दादा दीदी सियान सजन भाई बहन आया बुआ मन के मैं फगनी
0: मैं पंडकी
1: आमी दोनों करूं से राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

बस्तर के स्वर आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से अभी इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। शाम के 7:21 होते हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम आम चौ गांव।

0: जुहार भगनी, जुहार
1: जुहार पंडकी, जुहार अमरलीस ने
0: काय
1: संवयंत मृग पडे से ने ज्ञान दियांचे गोड धरून
0: तो
1: एची संगे आमचो गाव सुनतो सपाय दादा दीदी सियान सजन भाई बहीन मन के मै फगनी
0: मै पंडकी
1: आम्ही दोनों करून से जुहार
0: और नानी नानी पीला मन के बले आमचे बाटले खूबे खूबे मया तो भगनी
1: ओए
0: तो समय ने अमरुन दादा दीदी मन के तो नगद गोट मन के सांतो रहा
1: पड़े
0: हो ने
1: हो
0: आजी काली चो लेका लेकी मन हुन आगले जमाना चो गोट बात मन के बल भूलक सोत
1: भूल के सो सत्य गोट के सांतो
0: तो आमचो दादा दीदी मन के हुन मन के सिखा तो

0: रहे
1: हाओ
0: आगे कौन कौन गोट बात रुसुम मन के करते रहला
1: हाओ
0: उन सफाई बानी मन के सिखा तो रहा है
1: सीखा तो रहा है तो
0: ने
1: यो ये बेचो सी आंसर जन सिखा ले तो पीला मन बल सीखू रो कोई ते ने
0: जसन आगे कोनी भिया टीका करतो राय हुन मन कितरो रुसुम रहे ने नेवता बाजाले धरुन सफाय बानी आई कि नहीं
1: रहे ने
0: तो हुन मन के आजकल जो लेका मन भूलक सुत ने और जसन कोरी कोनी घरे मरनी आए दुख आए कई होले ने काया गांव चो लोग सफाय रुंडा करुन हुन मन चो घरे नींद देतो रहत
1: हो सत्य गोट के सांगी से जैसे कि आमी आमी बोले गांव चो लोग मन ने गांव चो लोग फिर आप लोग गांव चो रुसुम मन के फिर जान लेते हो दे ऐसे नीचे यार गांव चो भाई दादा दीदी मन मिलुन मिसुन रोन बात ले आप लोग ऐसे नहीं आए कि आप लोग कहीं बिया आए टीका आए बोले हूँ ता फिर सपाय लोग रून रून बात ले उनके रुसुम मन के बनाए सो और उनके बनाए सो तरस नहीं बनाते बनाते फिर असनी पे ये बीच पीढ़ी दकूर ले बोले उनके पर आगे बोले
0: सीख दे
1: दे
0: और काया और नहीं सीख ले बोले नहीं हुन मन के काया एकला का रूप नहीं होए सब भाई रुंडा हो उन सब काम के कर ले ची हो है एकला करवाए बोले कोनी बुता के करूप नहीं होए
1: सत्य गुट के सांगले कि एकला कर ले बोले कहीं बुता नहीं होए ऐसे नहीं पर सब पाए गांव चो लोग मिलुन मिसुन बात हाँ। उन बुता के कर ले पर हाँ, सब के बल सरे से यार आप लो जो ने रीति रिवाज ले बोले होए हाँ। से
0: उनके सफाई सीख सोत बोले
1: बोले
0: और सफाई बुता झटके सरे से
1: सरे
0: और कसन बल्ले काया जसन गांव ने बोले कोनी झगड़ा लड़ाई कोई हो जरूरत तो उन मन के काया अधिक फिर बड़ा तुर न आए उनके आपन बसुन भाती सफाई समझाउन बुझाउन बड़े लोग मन संगे उनके मान तो रहे नहीं एकला एकला नहीं होतो रहे
1: उनके आगे नी ने शहर नगर नी जाओ बोलो ना आप गांव
0: पारा ने की सरा तो रहे उन पुलिस ने थाना ने नी ने तो रहे उन गांव ने ची सफाई बसुन
1: समझौता हो
0: समझौता
1: हो ये बोले हो कि आम चो जन गांव करी दादा दीदी मन पर सब सफाई मिलुन
0: मिलुन
1: समझे सो समझा
0: सो तो है कि सफाई एकता में रहते रहे ने अलग अलग नहीं रहते रहे सफाई मिसुन रले का है सफाई बानी सफाई बुता नगत हो दे आए कि नहीं
1: आई ची आई अरे बे तू दक्षिण का संचल आगे नहीं आगे आसन रहे कि सब जाति चो लोग कहीं तिया बिया टीका है बोले सब पाए लोग ये तेरो खातो पीतो काज बोले निको रहे सब एक समान रहे और आप लोग काहे तो ले
0: करते रहो तो ये बे ये बे क्या है कि दादा दीदी मन के सांग तो बीती कि उन आगे जो रीति रिवाज मन के नी भूल गोत और सफाई मिसुन एकता में रहो एक संगे रहो अलग अलग कोनी अलग नहीं रहो गांव ने सफाई संगे रहे का है हरी कुदिम रहु है
1: हरी कुदिम बल रहु है और कहीं बुता बल
0: झपके हो तो उन्हीं काजे का है सफाई मिसुन रले अच्छा है नगत है तो ये गोट मन के तो अमरा लू फगनी और आमचो लगे असने ची नगद गोट मन आसे हुन मन के बल अमरा
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
4: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा कर लो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेनतो लोग अरु सप्लायर्स चो चिपा गुचे दे एचई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल हो दे बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी अरु तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: दक भगनी
1: तो एगोट तो सुन लो ने
0: और हम कभी चो इले चुचाए हाते नियो
1: नियो हम चो मोनरान किनी कितनु करू है ने
0: तो आजी आचे आसे आमचो लगे नाटक हल्बी नाटक और नाटक आए वाट और नाटक के लिखला सोत
1: सदन सिंह नाग
0: हाँ और नाटक भीतरे भाग धरला लोकमन चुनाव के
1: पाचे सांग हाँ
0: अले
5: नहीं इतरो पैसा कौड़ी खर्चा करून पड़ालो काय मतलब दिली गुनुक ये साहब के आमचो असन अपर काम के करे दे मने उसन जाले पढ़ाई काय काज कर लीस तुके तुके जानू पीला बेराले भूती पठालन रखत रहती काका जे बोले इतरो पढ़ाले जाल में
6: आले ओ काय बोले रहा हो बोपड़ा पोड़ून भाती बारहवीं क्लास ने अच्छा नंबर आन लो से ए दे तुम के ही पारले बेड़ा खड़ा भूता ने सहा हो दे बोले से जल काय न साय से
5: काय न साय से मैं एक बेड़ा खड़ा ने चिकल माटे ने काम करे दे बोलो नितरो पढ़ाले से ने इतरो पढ़ोन लिखुन भाती नौकरी कर तो खिड़ी पैसा कौड़ी बोले घर ये थी आले समझाओ काय समझाओ जल तुई
7: ए देना बाबा आले खिंडी मोचो गोट के बोले तो समझून दखा ना
5: आले समझाओ काय समझाओ आज जाले
6: ए हो एक के हार पीरा के डराउन पकाय सास खिंडी कस्तीर ने सुनून बल तो दखा हुन काय बोले से आले
5: काय काय असने सुनवास रे मोचो तो मन के टूटोन दिलो इले का आले सांग बे
7: ए ना बाबा असन आय अरे नौकरी बोलले तुरते पढ़ते खन तो ककई नी लगे और ये मैं बारहवीं पास कर ले से मोचो विषय बोले हुनी खेती कमानी बीती रहे और ये बेड़ा कमानी ने नुआ उट ले कर लो ने अरे खूबे फायदा आसे अरे ये कि मैं तो जाने
6: लेका एक खार बोले से जाले खिंडे घुंचो गोट के बोले तो मानुन दखा हो सके हुन काई अच्छा करुन दखा दे होती
5: काई माटी के करुन दखा देता आमचो बेड़ा कमानी आए बरसाचो भरोसा और ये कमानी करते करते मैं डोकरा होले एबे फिर ये बैंडू करुन दखाय दे मने जाल मोके तो नी भावली
8: काय होली गुनुकना चैतन व्यात ले किलेर कालार सुना दे से कसन होली ले काके काय काजे असन खिस्सा सुन के
6: नी दखास मामा लेका बारहवीं पास हूँ बेड़ा कमानी ने संग दे दे बोले से तबे हुन के खिजे चकर सोत
8: आले बाबू रूप साय तू पढ़ लीस लिख लीस पढ़ा लिखा माने होलीस ना एबे कसन हिसाब ने बेड़ा कमानी चो गोट बोलसिस
7: ए दादी असन आय कितरे पढ़ा लिखा होलो ने बोले मैं आए तो किसान चो बेटा है नहीं
8: हाँ।
7: और ये बे पढ़ा लिखा होन भाती नुआ उट ले खेती कमानी कर तो गोट के जान ले से यही गोट के बाबा के समझातो के बाबा नी समझे से
8: असन आए जाले मैं तुझे बाबा के समझाए देना ए चैतन ढकना दिन बदले से जुग बदले से एबे कई नवा नवा वाट बननी कर ली से आरु रूप साय पढ़ा लिखा होन बोले खेती को मानी कर तो मन बना लो से बल्ले हो नगद गोटा तू ये मन के नी टूटाओ आरु एक जसन करे दे उसन उन्नत बाटले बेड़ा को मानी करुक देस मैं बोले से ना तुछ बेटा खुबे नगता है उनके तू समझ
5: आले ना बोडू ये भी तू ही बोल सी जाल में एक हो बोले से
8: हाँ।
5: आले दखाओ बे कसन करुन भाती बेड़ा उजराए दे और कमाए दे जाले
7: जुहार साहब जुहार
9: जुहार जुहार रूप साहब बस
7: साहब खुब्बे मुश्किल ने मैं मोचो बाबा के समझाले से साहब काय के सांगु हास्ता
9: रूप साय जूना बेरा चो कमानी करतो लोग के नुआ गोट के समझातो खिंडिक मस्किली चे होए से
7: हो साहब
9: तू ही फिकर नी कर जसन तुचो बुबा दखे दे कि तू ही एबे बेड़ा ने बोर चो वाट बना ली आरु लिखा पढ़ी करतो के हुन पास होली
7: हो।
9: एके दखून हुन खूबे हरी खोए दे
7: हाँ साहब ये भी बोर चो काम तो होली एदाएं बाटली साहब हुन बेड़ा रेटे रेटे नहीं हुन तार बाड़ी बना तोर हुन चो काजे बोले मैं उवाट के धर ले से आउर सिर मीट चो पोल के बोले आपने सिखुन भाती बना ले से इत्रो ने मुझे बेड़ा चमक नहीं होन जाए दे साहब कोनी बाटले चोर खंगार पशु जानवर चो काई चे डर नहीं रहे दे साहब
9: तू तो सब पाए बाटले नंगत वाट मन के धरुन काम करसिस रूप साय
7: हाँ साहब
9: असन काम करुन सत्य आए तुचो मसागत ले तुई गोटक दिने

0: दखलास तुम्ही लेका के बलते रहास कसन करून दखाय रे बोलू एबे दखा ए काय रसिया बोरिंग पंप ए काय रसिया तार चौबाड़ी बेड़ा बोले कसन सुंदर दखा देस ए साग मारी ने बोले दखा नी आ हा हा हा कसन मन के खरीक करून देस हो
1: सत्य बलसिस पाकली मैं अबुज माने लेका चो दिमाग के नी समझते रहे मैं काय जूना हिसाब ले कमाती करतो लोग काय जानी ये जैविक खेती की ये दुनिया जो टडम के
0: आगे हो पानी मार ले कमानी होते रली नहाले नहीं आय कसन ए बे काय रसिया लेका जान बोर कोड़ाउन दी रसे ते बे 12 महीना पानी और दखा लेका बले कितरो मसागत करे से
1: हो पाकली भगवान असन भाई मानी बेटा सपा के देव ए ना ए बाट पानी झपा हो ना ए बाट ले ए बाट ना ए बाटे ओय ओ बाबू
0: ए मैं बल जा से हो घर बाटे झप के रान दे ने जा से हां
2: हो जा जा
3: आले आले हो गए हां हां ए देख हो गए रहा हो गए रहा हो गए रहा आओ आले ये हां तो गांवकारी सियान सजन मन ये ध्यान देऊन सुना आज ही आमी सपाय एथा परगन भरचो किसान मन जुहलू से एथा नगद काम करतो किसान मन के पूरे करून जमाए किसान मन के बाट दिखातोर होए दे ए आले ते बे सपाय होगा हुन बस आए
1: हां वाले
3: ए दे ए बे ए ढोलू हां बसना एबे आम चो प्रमुख अतिथि काजे गांव चो बोंड का सियान के आमी पूरे बसालु से तो बोंड का सियान एबे आम के बाट दका तो हिसाब ने दुई शब्द बोल दे आले बोंड का सियान
4: आले ते बे ये गांव चो सरपंच पटेल कटवार सियान सजन सपाय लोग के मैं बोंड का करे से जुहा मचो असन अपर लोग के मान देउन पूरे बसाला तुमके जोहार लागो और मैं काय गोट के बोलेंता और मैं तो अपर माने कहीं कि तू नी जाने तेबले बोले गोटो गोट बोलें दे ए गांव चो बेटा रूपसाय पढ़ुन बाती खेती कमानी कर तो विचार कर लो हुंचो बाबीता चैतन हुनके रीस होलो तेबे हुनके खेती कमानी चो गुआट के मैं सुन ले समझातो के बाबीता मान लो और ए दे मैं दखे से रूपसाय इतरो बाढ़ती कर लो से कि हुंचो खेती कमानी के दख तो काजे लाभ पीले किसान मने ऐसोत और दखा आमचो गांव का जे बोले मानचो गोटाय कि रूपसाय के गोटो पुरस्कार हाय काहे पुरस्कार ना
3: हुनी फिर श्रेष्ठ कृषक पुरस्कार काय
4: हां और एबे मैं दखे से रूपसाय इतरो बाढ़ती कर लो से हुंचो खेती कमानी के दखतो काजे लाभ पीले किसान बने ऐसोत और दखा आमचो गांव का जे बोले मानचो गोटा कि रूपसाय के गोटक पुरस्कार हां काय पुरस्कार ना
3: हुनी फिर हुन श्रेष्ठ कृषक पुरस्कार काय
4: हां हां हां हां हुनी भी ती इनाम बोले मिरली से जसने बाबू आप लोग गांव चो नाव के जगा लो ए गोट का जे मैं खूबे हरी का से आज ही हरी चो दिना ए दिन ने आमी हरी कुदिम संगे आम जो काम कमानी करते रहूं।

0: तो फगनी
1: वही
0: ए नाटक वाट के तो आमी
1: सुनलू कितलो निकोरली ने
0: हो
1: ए ता मा ए माठी माए चो बलि रहे ने
0: हो दादा दीदी मन बस सुनला होती ने
1: हो
0: तो ए नाटक के लिखुरला श्री सदन सिंह नाग और ए नाटक भित्रे भाग धरलो लोकमनाथ श्री गेंदलाल नायक रमझम कच्छ नारायण सिंह बघेल और सुश्री सरस्वती।

0: गीत गीत नी करो रिफंड की तू बोल झूम जाते रहे इसका
1: हो काय भगनी फिर गीत बदले फिर लागू छे ऐसे
0: हरिक
1: जान
0: लागू है कहने हरिक लागू है मातर एक एक गीत के गाऊ।

0: तो बलबीर सिंह कच्छ, तो गीत तो होली आम से लोग पर गोड़ निको गोड़ बोला से एक बोले सुनो।
1: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना कि तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स किसी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी न सामान तपोर्रो इंजे ओंडोई 18% टैक्स किसी तोड़ इत बुताते यू सामान पाड़ा नोर और सामान तच ये नोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओया न बुता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का ना गाड़ी 1% जीएसटी मौला देने दोर किता अदेन के और सुबेर कम टैक्स तक गाड़ी बने मास मंता।
2: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: GST काउंसिल बुधवार नेटेन घोषणा कित्ता की सरकार सीमेंट तपोर्रो GST मोला 28% तुन कम कीस इंजे 18% की सिक्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे इलेकेन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओंडलेकटा बंडाकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% GST लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
3: ए फगनी
0: ओई
3: तो ए गोट मन के तो सुन लो लेकिन मैं बोलते ले गीत सुन ले फिर गीत सुनुक सुनुक भाई से तो गीत सुनु बोलते ले काय बोलसिस
0: ओ काय फिर गीत सुन लो नाल नी होई काय
3: हो तो ए गीत के सुनु और गीत गालो लोग मन के पाचे नाव के सांगवा
0: हां

0: तो भगनी,
1: ओए
0: ये जलधर और हनुमंचो संगवारी मनसंगे गाय लो गीत की सुन
1: सुन लो
0: मातर मुई बस
1: घड़ी गई दकले सामिया बोले होई
0: गीत सुन सुन नी रहूं दीदा मांगवे मैं सकला डकला करे से
1: जातो पूरे आमचो गांव सुनतो सब पाए दादा दीदी सियान सजन जुआन भाई बहन मन के मैं भगनी
0: मैं पंडकी
1: हमी दोनों करूं से जुहार।

0: ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौगाव अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। रात के 8 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम नानोली। इसमें लीजिए सुनिए गणेश मंडावी और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत।
3: तो

0: que vinci da ti no nuni e nuni levia
1: a gumo pere
0: gumo pere

Nuni leve,

0: వంతోడు
1: గుడారి వంతోడు నూనె ఏ.

0: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम नानोली में अभी आप सुन रहे थे गणेश मंडावी और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:30 होने को है। प्रस्तुत है हल्बी बोली में बच्चों के लिए दैनिक कार्यक्रम पीला मन काजे गोट।

पिलामन का जे गोट कार्यक्रम सुन तो सपाए नानी बड़े पिलामन के मच्छो बाटले खुबे खुबे मया और लाड़। कोनी कोनी पिलामन पड़ला सास होती और कोनी कोनी पिलामन पड़सास बल के आमचो भारत देश के अंग्रेज ले आजाद करतो काजे कितलो महापुरुष मन लड़ला और आमचो देश के अंग्रेज ले आजाद कराला। पिलामन उसने एकलो स्वतंत्र सेनानी तात्या टोपे रहो। ये मन आपलो जीवना भर ने केवल अंग्रेज मन संगे हार नहीं मानला। ये मन एकलाय ब्रिटिश सरकार चो सपाय सेना मन के डराउन रहो। कसन बल्लो ने तात्या टोपे युद्ध नीति बल्लो ने लड़तो बेरा चो असन असन नीति नियम वाट के जानते रहोत जोन एचो असन दूसर और कोनी लड़तो नीति नियम वाट के नी जानते रहोत। मने उनका जो बल्ला सोत तात्या टोपे आपलो जीवना ने के भय अंग्रेज मन संगे नी हारला सोत। पिलामन आजी चो कार्यक्रम ने तात्या टोपे चो जीवना चो गोट के खंडिक सांगे से एके सुना। तात्या टोपे चो जन्म पिलामन तात्या टोपे चो जन्म सन 1814 ईस्वी ने महाराष्ट्र चो पटोदा जिला ने येवला नाव चो गांव ने होन रेली। एमन चो बाबा चो नाव पांडुरंग त्र्यंबक और माय चो नाव रुक्मणी बाई आए। पिलामन तात्या टोपे चो बाबा पांडुरंग त्र्यंबक उदलदाय राजा पेशावा बाजीराव द्वितीय काजे बुता करते रहोत। राजा पेशावा बाजीराव पांडुरंग त्र्यंबक के खूबे मानते रहोत और भरसा करते रहोत। उनका जे एमन सपाय राजा चो दरबार ने रहते रहोत। पिलामन एंदा जानू तात्या टोपे चो पढ़ाई लिखाई कसन होली। तात्या टोपे चो जन्म देशस्थ कुलकर्णी परिवार ने होन रली। उनका जे एचो नगद पढ़ाई लिखाई और युद्ध विद्या बल्लो ने लड़तो बीती नीति नियम वाट चो पढ़ाई लिखाई खूबे नगद ऐसी कुक मिरली। पिला बेरा ले युद्ध विद्या बल्लो ने लड़तो बीती पढ़ाई वाट के सिखा तो बेरा खूबे अरिक होते रहोत मन खूबे लागते रहे। उनका जे तात्या टोपे गोरिला युद्ध प्रणाली ये बले लड़तो बीती उवाट आए ये उवाट के सिकुन रोत। तात्या टोपे गोरिला युद्ध प्रणाली उवाट ले ब्रिटिश सरकार चो सपाय सेना मन के डराउन रला। पिलामन एंदा जानू तात्या टोपे चो जो उपाधि आए कसन मिरली और ये उपाधि के कौन दिला। तात्या टोपे चो सत्य नाम रामचंद्र पांडुरंग एवलकर आए। जसन तात्या टोपे बड़े होला उसने नौकरी खोजुक मूर करला। सबले पहल तात्या टोपे ईस्ट इंडिया कंपनी जेला। तात्या टोपे पढ़ाई लिखाई ने खूबे नगत रहोत। उनका जे ये नौकरी बले झटके मिरली। मानतर तात्या टोपे के ये नौकरी में बले मन नहीं लागते रहे। उनका जे तात्या टोपे ये नौकरी बल छाणला। पिला मने ये नौकरी के छाण लो पाचे आपलो दरबार ने मुंशीचो काम करते रहोत। मुंशीचो नौकरी के खूबे नगत करते रहोत। मुंशीचो नौकरी करतो समय ने एकलो चोर के धर रला। ये चोर खूबे बरगले दरबार चो खजाना के छोड़ते रहे। मने उनका जे अरी कौन बाती राजा पेशावा बाजीराव तात्या टोपे के हीरा ले बनलो टोपी के मान हिसाब ने भेंट करला। बोलो ने मान हिसाब ने उन मन के दिला। तेबे ले ये मन चो नाम रामचंद्र पांडुरंग एवलकर ले तात्या टोपे पड़ली। पिला मन तात्या टोपे और रानी लक्ष्मी बाई एमन बले पिला बेरा ले जानते रहोत तो एमन चो गोट के बल कंडिक आले सुना। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मी बाई ए दोनों पिला बेरा ले जानते रहोत। दोनों पढ़ाई लिखाई संगे करला। रानी लक्ष्मी बाई के तलवारबाजी सीख तो खूबे मन रहे। मानतर सिखा तो लोग नहीं रहोत। फिर एक दिन तात्या टोपे और रानी लक्ष्मी बाई चो भेट गाटोली। उदलदाय लक्ष्मी बाई तात्या टोपे के बल्ला कि मके बले युद्ध पाए सेना मन डरते रहोत। उनका जे बलुआत तात्या टोपे युद्ध प्रणाली ले सबले नंगत आत। पिला मन एदा जानू कि तात्या टोपे कसन सेनापति बनला। बल्लो ने आमचो लड़तो चो जो मुखिया रहे से उन कसन बनला ये गोट के बले जानू। असन बल्ला सोत कि राजा पेशवा के रोजे बरक 8 लाख रुपया ब्रिटिश सरकार बाटले मिरते रहे। मानतर जेबे महाराजा के काई बीमारी धरली और राजा ये बीमारी ले लड़ूक नी सकला और मरुन गेला। ये गोट ब्रिटिश सरकार लगे अमरली। ब्रिटिश सरकार पैसा दे तो काजे मना करला और राजा पेशावा जोन के गोद धरला नहीं ये मनात नाना साहेब के बल्लो ने जसन पेशावा राजा मरुन गेला। उनका जे उताचो जोन उत्तरदायी बोलो ने उताचो जोन राजा होए मानते रहो तुन बोलो नाना साहेब के। मानतर ब्रिटिश सरकार
नाना साहब के राजा मान तो काजे मना करला और रोजे बरक जसन पैसा मिलते रहे उन पैसा बोल दे तो काजे मना करला। उन्हीं काजे नाना साहब रिस उन बाती ब्रिटिश सरकार संगे लड़ तो काजे तात्या टोपे संगे वार्ड बनाओ मुरियाला। पिलामन 1857 ने सपाय देश ने क्रांति चो लहर चलते रहे उदल दाए नाना साहब ने तात्या टोपे के सेनापति बनाला। उन्हीं समय ने अंग्रेज मन कानपुर ने बले हमला करला। ये लड़ाई ने बले तात्या टोपे खूबे मशागत करून लड़ू रला मांतर अंग्रेज मन के कानपुर कब्जा करतो काजे नी रुकूक सकला। तात्या टोपे चो गिरफ्तारी पिलामन तात्या टोपे के शिवपुरी चो पड़ोना जंगल बलोन रान ने बिसाते रहो उदल दाए तात्या टोपे चो जोन संग बीता रहे उनमन नरवर चो राजा मान सिंह तात्या टोपे संगे ठगा करला। मल्लो ने उमन के ठगला और बिसा तो खबर के नहीं अंग्रेज मन लगे अमराला। जसन अंग्रेज मन लगे एक खबर अमरली उसने तात्या टोपे के धरतो काजे अंग्रेज मन रान ने अमरला और जसन तात्या टोपे बिसाते रहोत उसने अंग्रेज मन उनके गिरफ्तार करला। तात्या टोपे चो मृत्यु बल्लो ने मरलो चो गोट पिलामन तात्या टोपे चो मरलो मल्लो ने शहीद होलो गोट के कोनी नगत नी सांगला सोत। गोटोक बाटे बोलसोत की तात्या टोपे जंगल रान ने बिसातो बेरा गिरफ्तार करला उदल दाए उनमन चो जोन आरोप रहे उनके सत्य होली तेबे तात्या टोपे के फांसी चो सजा सुनाला। फिर अंग्रेज सरकार 18 अप्रैल 1859 के तात्या टोपे के फांसी दिला। फिर दूसर बाटे बल्ला सोत की तात्या टोपे के जंगल ने बिसातो बेरा गिरफ्तार तो करून रला मांतर अंग्रेज सरकार के ठगुन बाती तात्या टोपे उताल पर आला। फिर के बे अंग्रेज मन के धरा नी दिला और एकलो टोपे चो जोन कुटुम बोलो ने उचाचो एकलो वंशज बोले सांगला सोत की 1 जनवरी 1859 ने अंग्रेज मन संगे लड़तो बेरा तात्या टोपे शहीद होला। उनका जे बलुआत की तात्या टोपे चो जो मरलो गोट के आज तक बले पता नहीं चल रही है। पिलामन तात्या टोपे चो गोट के तो सुन लास उसने तुम्ही बले नगद पढ़ाई लिखाई करून जोन काम ने मन लागे से उन काम के आम के जीवना ने आनुन खूबे मेहनत मशागत करतो राय तेबे काय तुम्ही तुम चो और परिवार संगे संगे देश पारा चो नाम के आगे बढ़ाक सकासे। पिलामन ये नगद गोट तो होली मांतर तुम चो लगे गोट गीत धरुनी ले से अले गीत के आमी सुनू।

पिलामन एंदाय मोचो जातो बेरा होय से मके विदा दिया जातो पूरे पिलामन का जे गोट कार्यक्रम सुनतो सपाय पिलामन के खूबे खूबे मया और

आप सुन रहे थे हल्बी बोली में बच्चों के लिए दैनिक कार्यक्रम पीला मन का जे गोट। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। रात के 8:45 होने को हैं। कुछ ही समय में आप सुनेंगे समाचार क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे।
2: चरण है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बड़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं, उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉ सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉ जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर

0: बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
4: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनी ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
3: Prime Minister Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
4: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस, और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
3: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India, in collaboration with the technology and the capital of Norway, Indian companies would develop global solutions. Norway will also be joining the Indo-Pacific

0: રેડિયો સંતો ભાઈ બહેન ખૂબે ખૂબે સેવા જોહાર. જીવના ચુસોર એ કાર્યક્રમને આમી આપણ મન કે કઈ કસન મહિલા સ્વસહાયતા સમૂહ દીદી મન સંગ ભલે ગોટ બાત કરું ભલેને એ જાણું છે કે ભલે હનુમન કસન સમૂહ બનાન બાતી ભલેને આર્થિક ઉન્નતિ કરશો આરુ ભલેને જોન ભલે હનુમન કે આમદની લાભ હશે ભલેને આપલો જીવનાને ભલેને કસન કામને એસે એ સબ ગોટ બાત કરું છે. તો અસની મેં આજે ફેર ગોટુક મહિલા દીદી સંગ ગોટ બાત કરે છે. સબલે આગે તુચો નામ આરુ ગાંવ છો નામ સંગ
1: સબ દાદા દીદી મન કે જય જુહાર. મચો મચો નામ શકુંતલા ઠાકુરાય ઓર મે ગ્રામ પંચાયત પરચનપાલ છો.
0: અચ્છા, તો શકુંતલા દક તુમચો સ્વસહાયતા સમૂહ આસે?
1: હા, સ્વસહાયતા સમૂહ બિહાન સમૂહ માં જોડલું છે.
0: અચ્છા, ભલે ને સ્વસહાયતા સમૂહ ભલે અલગ લે આસે?
1: હા હા, હોની સમૂહ આય છે કે?
0: અચ્છા,
1: મતલબ સ્વસહાયતા સમૂહ છે.
0: ઊંચો નામ આસે કઈ ના? કઈ નામ?
1: ઊંચો નામ આય સત્ય સાઈ.
0: અચ્છા, સત્ય સાઈ.
1: હા
0: હા, તો યે સમૂહ બનાલો કેટલો બરખ હોલી જાલે?
1: હોલી છે 7 સાલ હોલી.
0: 7 સાલ?
1: હા. અચ્છા, સમૂહમાં જોડલું છે.
0: હા, તો મોર ને જસન કે બનાતો બેરા જસન કે બનાલાસ તો ભલે ને આગે પૈસા વગેરે જમા કરવું પડલી કઈ કસન?
1: નહીં, આમ કે મતલબ બહાર છે દીદી મનીલા આર શીખાલા કે તુમી ઘર ભીતરે જ રહાસ તો બહાર નીકળું દખાશે શીખાશે સમૂહ જુડા બલ્લા દસ દસ જણ છો બનાલું સમૂહ. તો હું તો આમ પૈસા કોડિત નહીં લાગે, માનતર હર હપ્તા 20 રૂપિયા પૈસા જમા કરું. હા,
0: અચ્છા.
1: તો હું થાનલે 20 રૂપિયા જમા આમ તુમ કે કાય હોય દે બોલું હું બાટલે આમ કે કામ મન બલ મીરલી પ્રશિક્ષણ મન મન મીરે છે. તો આમી હું થાનલે જૈવિક ખાતચો બારે બલે બનાવું. હા, દવાઈ જૈવિક દવાઈ.
0: અચ્છા, તો જસન કે 7 સાલ હોલી બલસીસ તો મોર લેવલે ઉનિચ કામ આય કે કઈ દુસર કામ કરતરલા જાલે?
1: નહીં, મતલબ જસન સમૂહમ જોડલું તો આમ પહેલે 20 રૂપિયા જમા કરું સમૂહ થાને. તો હું ચલ આમ કઈ ફાયદા નહીં મિત્રે હું જમા હોત બી થોતે જ રહે. તો હું હિસાબ ને આમ કે ફેરે હું બાટલે મતલબ સમૂહ બાટલે આમ પ્રશિક્ષણ બલ મિરલી એ આમી કોની કોની તો આવર આવર કામ કરું આ તો મેં કરું આય જસન દવાઈ બનાતોર એ શાકસબ્જી કિસાન ભાઈ મન કાય તો શાકસબ્જી લગાવાત નહીં. તો હું થાને મેં દવાઈ બનાવાય.
0: અચ્છા,
1: એ જૈવિક બીતી
0: જૈવિક દવાઈ
1: દવાઈ બનાવાય.
0: અચ્છા, તો એ જસન કે દૈવિક જૈવિક દવાઈ આય બોલું બનાતો કાજે ભલે કઈ તું આગે અસન શીખ લીસ? કઈ નહીં,
1: આગે નહીં શીખે, મતલબ એ સમૂહ બાટલે આમ કે પ્રશિક્ષણ મિરલી 5 દિન ચો બસ્તર કોલિયાપારામ દિવાત. તો હું તા સર મન હોની કૃષિ વિભાગ લે દિલા આમ કે ચો ટ્રેનિંગ. તો હું તા શીખુની લેશે.
0: અચ્છા, જસન કે ફસલ મન ને તો અલગ અલગ કિસમ છો જોન બીમારી મન હોય છે તે છો કાજ બોલ કઈ અલગ અલગ દવાઈ અસન બને છે?
1: અલગ અલગ દવાઈ બનવાય બનતો મે ખૂબ સારા દવાઈ બનવાય, લેકિન એબે આમી બલે 2-3 ઠનસ ની દવાઈ મન બનાવન ભાતી કિસાન મન લગે છિડકાવ બલ કરાવ જાનો કિસાન મન બલ કરશો. જસન કે બ્રહ્માસ્ત્ર દવાઈ બનાવ હા આમી.
0: અચ્છા,
1: તો હું ચો દવાઈ નહીં આમી 5 પ્રકાર ચો પત્તા ધરું હા.
0: અચ્છા,
1: એ જોન કે ગાય બૈલા ની ખાવત એક ઠના નીમ પત્તા 2 કિલો આર એક એક પત્તા કરંજી પત્તા એ ફુંડેર પત્તા આર ચિતા પત્તા આર જામ પત્તા. તો હુંકે અચ્છા કુટું હા આર કુટુન ભાતી જસન કી ગૌમૂત્ર આય ગૌમૂત્ર કે એક ઠન હંડી મે મંડવ હા આઈક બારુન આર હું ધાન ફેર ચુડવ હા ગૌમૂત્ર લે ફેર હું પત્તા મન કુટલો બીતી ડાલ તોરાય.
0: અચ્છા,
1: તો ડાલુ આલે હું ફેર ઉબાલે દે 3-4 બાર ડંડા મે હિલોન હિલોન દખતો રાય 3-4 બાર ઉબાલી લી બલ્લે હું કે આમી મતલબ છાડું દી વહા એ ઢાકુન ભાતી છાડું દી વહા. તો હું ઠંડા હોય દે દિનભર રાતભર હું કે છાડત રાય આર દુસરા દિન હું કે છાનું વહા એક ઠન સૂતી કપડા ધરુન ભાતી છાનલુ આલ હું થાનલે ફેર નીકળું આય દવાઈ.
0: અચ્છા,
1: તો હું દવાઈ કે આય જ નહીં આમ કિસાન ભાઈ મન કે સાંગુ હા કે એ દવાઈ કે લગાહા એ કાય રાસાયણિક દવાઈ કે હુતરો યુઝ નહીં કરા તો એક લગાહા અમે શીખલું છે દેવિક જૈવિક બીતી આય બલતે. તો કોની કોન કિસાન ભાઈ મની વાત એ બરસાત તો સીઝન આય તો હું કે 50 ml દવાઈ કે 1 લિટર પાણી મેં થોડે બહુ સર્પ મેં છિડકાવ કરશો આમ ચો સામને છિડકાવ કરો હા. તો છિડકાવ કરાલો નામ બલ દખુસ કી હું अच्छा होय से कीड़ा काजे आम बल खुद जाऊन दखुस तो हुंच परिणाम बल अच्छा मिरेस तो आम के बल हरिक लागे से की आमचे बनालो दही आम्ही घरे रोलू तो आम के काही चो काय तो नी रहे जानकारी नी रहे समूह जुड़ तो काम की इतरो जानकारी मिरे से तो आम के बल हरिक लागे से की आमचे बनालो दही काम दे से किसान भाई के बलते
0: तो शकुंतला दक ये तो अच्छा गोट के सांगली समांतर जसन की तु पाना जोन पते जोन कर्तव्य थी बोले जोन गाय बैला निखावत असने ची पाना के बनाता
1: हाँ उसनी काय तो पिता भी थी पाना बन के बनाता है गाय बैला निखात भी थी मन के
0: अच्छा हाँ तो उनके बनान बाती बोले तुम कहीं असन सीसी हो रखा है
1: हाँ बाटल मन में भरू हाँ
0: अच्छा
1: बाटल मन में भरू हाँ उनके बनान भाती
0: अच्छा तो बोले ने कितला आन असन जसन की आधा किलो एक किलो सौ ग्राम असन कहीं बना
1: हाँ, उसने बनाओ से मतलब दस डिसमिल तक असनी आधा एकड़ तक तो बना लू से उतरो खूबे तो नहीं बना लू से नया नया ने
0: अच्छा।
1: मन बले उतरो मांग नहीं कर ला से पाँच पाँच आम चल प्रचार होले धर दे जानो भी आधा असनी छोटे मोटे किसान भाई मन के देऊ से तो हुन मन बल हरी खोस तार आम चलक मांग करू की बात के आम के दवाई बनाऊ दिया अच्छा होली बलते
0: अच्छा
1: आम के बल हरिक लागू आए आम घर भीतर रोलू एबे समूह जुड़न भाती नी करलू उतरी बल सीखलू आर कोनी कोनी बार जाऊ बले आम के बल प्रशिक्षण का झाक दी बात जाते चिरू वहाँ मीटिंग हाक दी बात सब चीज सिखाते रुआत हम को बल अच्छा लागे से
0: हाँ तो जसन की तुम ए बार ठुन बार जसन मीटिंग है बोल से बोले कहाँ कहाँ अब तक असन असन प्रशिक्षण मीटिंग वगैरह गेल साथ
1: हाँ प्रशिक्षण तो होता बस्तर दी बात और मतलब आम जो हर महीना जो जो नाम काम करू से तो आम जो एक ठन क्लस्टर आ से हर महीना हम कितरो किसान के दवाई दिलू कितरो छिड़काव करालू कितरो साग सब्जी लगा लू जैविक बीती तो हुन पूछू आता हम खुता
0: अच्छा।
1: तो आम च हर महीना बड़े से कि कम होए से हुन होता हुन मन जानू आता हम बल संग वहाँ
0: अच्छा।
1: तो असन दखुन दखुन दादा दीदी मन सीख सोची है बे
0: अच्छा।
1: तो एक जन घर गेलू दूसरा दख ले हुन बल बोलू एक नहीं मस्थान बल दिया बलते
0: अच्छा
1: असनी है बे बनाऊ से
0: बोले ने दखा दखिन तुम चु जो प्रचार प्रसार
1: प्रचार प्रसार ने दखा दखी में भी
0: अच्छा ये खाली मतलब जैविक दवाई ची बना हुआ की कहीं खाद बल बना
1: खाद बल बना हुआ
0: अच्छा
1: खाद बल बना हुआ जैसे की गोबर आए खाद बल खूब सारा आ से लेकिन हुतरत नहीं बना लू से गोबर खाद के 100 किलो गोबर में 200 किलो बेसन डालू हाँ 2 किलो बेसन
0: बेसन अच्छा
1: और 2 किलो गुड़ और एक पाव असन दीमक मिट्टी
0: अच्छा
1: तो उनके मतलब सबके मिला वहाँ और दो 10 लीटर गांव में उतर उन सबके मिला उन भाती आए नहीं असन दीवाल में हो चाहे बोरी में हो उनके गोल गोल बना उन सुखात रहा
0: अच्छा
1: और उनके मस्त भूर भूरा बना वहाँ सुख लिया ले और उन जब बात फिर हम बूटा मन ने खा ले दे तो रहा भूर भूरा बना
0: भूर भूरा बना
1: हाँ तो अच्छा। ये नहीं का पौधा के बड़ा तो काजे काम करुआ विकसित करुआ और जानू का है तो फपुंद नाशक फपुंद निधरे
0: निधरे
1: और फिर का है तो बोले दीमक नहीं लगे वर्मा नहीं लगे
0: अच्छा
1: हाँ ये भी बल बना लू से चार पांच किसान मन के दिलू से उनका देखिए और बल मांग कर सो बना दिया बोलुआ
0: अच्छा ये तो जसन की जैविक खाद बनाते भी तुम से गुटुक नया विधि आए बोलू भी
1: हाँ।
0: उनके बोले सुखान भाती फिर उनकी बीरा है
1: साथ आए
0: कि नहीं
1: सुखान भाती
0: बीरा हाँ। नहीं तो एक ठन असन बोल रहे से कि केचुआ खाद टाका बनान भाती
1: हाँ। केचुआ खाद बोले आए उनके बोले बना तो टाका बना भाती होता केचुआ खाद मतलब केचुआ छाड़ तो रहा है
0: तो एचो कहीं ट्रेनिंग वगैरह तुम धरला सर
1: तो नहीं धर ले से ट्रेनिंग लेकिन एचो बोले आए ची
0: अच्छा बोले ने ए बे बोले ने खाली दवाई बना तो
1: हाँ दवाई खाद
0: अच्छा
1: बनो हाँ ई खाद मन
0: हाँ
1: एक ठन फेरा और बनो हाँ दवाई बोले हूँ निमास्त्र भी दवाई
0: निमास्त्र
1: जैसन की मतलब ए बे ब्रह्मास्त्र के एक हफ्ता छिड़काव कर लू का तो दूसरा हफ्ता में निमास्त्र छिड़काव
0: अच्छा ये भी जो बना सांगली से उनका है ब्रह्मास्त्र
1: हाँ
0: अच्छा
1: तो निमास्त्र दवाई छिड़काव करता है हूँ थाने आए नहीं नीम पत्ता लगवाए 2 किलो
0: अच्छा
1: और का है तो गौमूत्र लगवा है 5 लीटर और का है तो लहसुन 250 ग्राम और का है तो का नाम लहसुन और हरी मिर्च 250 ग्राम तो एक बल उसने कूट तो रहा है और हम गौमूत्र में डालते रहे। एक बार उसनीज बनाते रहे जैसे ब्रह्मास्त्र बना लो, तो अगला हफ्ता ब्रह्मास्त्र दवाई छिड़काव करूँ हाँ, तो दूसरा हफ्ता एक करता रहा, हर हफ्ता दवाई छिड़काव कराता
0: रहा। अच्छा हाँ, तो ये जो सन की ये दवाई मन बना तो काज बोले ने कित दिन लागे से कित दिन ने बन जाए?
1: एक दिन ने बनवाए, हम पाना पत्ता इकट्ठा करता रहा से।
0: अच्छा,
1: तो आज ही बना लू तो उनके आज ठंडा होक देऊ दे और कालिक जानो उनके छान तो रहा।
0: अच्छा,
1: अरे दवाई मन 6 महीना तक काम करुआ है, बनो संग रुक सको।
0: अच्छा, 6 महीना तक काम,
1: 6 महीना तक काम करुआ है। तो आम के खूब अच्छा लागे ससन, थोड़े बहुत बल गांव से लोग बल मान सोत कर सोत खुद बल लगाओ से। अब रासायनिक खाद में तो बीमार सुमार बल ज्यादा होए से और महंगाई बल ज्यादा होए से, निका जा मैं जानू के देसी बीती के जैविक बीती खाद दवाई के यूज करू से।
0: अच्छा बोले तुम्हें बिकुन बाती पर खुद चो बेड़ा खड़ा बोले ऐसो काम आंसा सो?
1: हाँ हाँ, खुद चो बेड़ा खड़ा बल लगा वहाँ।
0: हाँ तो ये चो संग संग और बोल कहीं काम नाल समूह ने नाल व्यक्तिगत ने बोल कर सा?
1: हाँ, व्यक्तिगत तो कृषि करूँ वहाँ मैं।
0: अच्छा,
1: खेती करूँ? हाँ, खेती करूँ वहाँ।
0: हाँ हाँ,
1: तो करूँ हाँ। समूह बोले आमी लड्डू बनाते रहूँ समूह, जैसे 10 छन दीदी मन रहूँ एपे उनके बंद करूँ दिला साम चलग मशीन वगैरह सब आसे। ये मूंगफली चे लड्डू,
0: मूंगफली
1: हाँ मूंगफली और गुड़ लड्डू बनाउन भाती हम 10 दीदी मन मतलब आंगनबाड़ी मन ने पहुँचाते रहूँ।
0: अच्छा
1: हाँ, उनसे बोले आम के प्रशिक्षण मिलू रहे था जिला पंचायत में, उन प्रशिक्षण धरू रहू।
0: अच्छा,
1: उनके तहत बलाम के पैसा मिलत रहे जानो काम जो आजीविका आगे बढ़ते रहे, लेकिन अभी थोड़े बंद होली से।
0: अच्छा, बोले ने स्कूल मन ने देतो भी थे कि नहीं?
1: हाँ, आंगनबाड़ी मन,
0: आंगनबाड़ी मन के। अच्छा, तो शकुंतला दे जैसे खेती बाड़ी बोले, खेती बाड़ी ने एक बल तो कहीं आसे होती?
1: हाँ,
0: आसे काय लगा?
1: टमाटर लगा लू से।
0: टमाटर?
1: हाँ।
0: अच्छा, ऐसे निकाय ड्रिप सिस्टम ने आसे की?
1: ड्रिप सिस्टम में आसे।
0: ड्रिप सिस्टम?
1: हाँ।
0: कितलो संठान ने आसे?
1: 2 एकड़ में आसे।
0: अच्छा, तो बोले ने चो जो पाला है बोलू भी
1: हाँ।
0: तुम खुद बना लास की?
1: खुद बल बना वहाँ और मंगाऊ बोले हाँ जानो नहीं होलो ने।
0: अच्छा,
1: बरसात सीजन आए नहीं होए।
0: हाँ हाँ,
1: खुद बनाओ लाए उतरो।
0: अच्छा,
1: तो मंगाऊ बोले
0: हाँ हाँ हाँ। तो ये भी कितलो दिन आसन होली तुम?
1: ये भी होली से 1 महीना आसन होली।
0: अच्छा, ये भी लगा
1: लो? हाँ, ये भी लगा लो, अगस्त में लगा लो।
0: अच्छा हाँ हाँ, तो ये चो जो मंडा तो जो ढंग आए बोलू भी तुम तो लगा ला सास होती?
1: हाँ।
0: आगे बल लगा रहा?
1: हाँ, आगे बल लगा वहाँ।
0: अच्छा,
1: आगे बल लगा वहाँ। अरे मैं बल प्रशिक्षण जमा ये सब के बारे में सांगुआत।
0: हाँ,
1: ये कसन टाइप चल

0: लगात राय ये सब चीज सांग हुआ तो ताल बल सीखनी हुआ और मैं घरे सांग हुआ असन लगात राय बुलुन भाती।
1: अच्छा हाँ, तो 2 एकड़ तो खूब ठान ने आसे जसन की आगे बोल तुम लगात रलास।
0: हाँ
1: तो बोले नहीं एचो जसन होली जाल बिक्री भांजरी कहाँ कर सास
0: बिक्री भांजरी बल में बाहर लेवल घरे वाली बात तो मतलब परिचय होली से
1: हाँ
0: बिक तो बीती उनमें घरे वाली उन भाती निवात गाड़ी धरू निवात फोन ने बात हुआ है और निवालन फेरे था जगदलपुर मंडी में बलान वहाँ
1: अच्छा
0: उनके बिक तो काजे कसन बल्ले 2 एकड़ चखंड ज्यादा हो ऐसे
1: हाँ,
0: माँ होले खुद नहीं उन भाती बाजार ने बल बिक सके आगे थोड़े थोड़े लगातार हो जाए ना कैबर खिंड आगर लगाऊ से
1: अच्छा
0: आम के बल खिंड सीख लू गुनु
1: हाँ,
0: थोड़े थोड़े होते रहे तो खुद बल ने उनमें बिकते रहे बाजार में।
1: अच्छा हाँ, बोले नहीं बिकतर कहीं दिक्कत नहीं भाई बोलू
0: नहीं
1: ने।
0: बिकतर तो दिक्कत नहीं हुए।
1: हाँ, तो दक आए ऐसन की ड्रिप सिस्टम वगैरह बोले पानी चो बल कहीं सुविधा ऐसे होती।
0: हाँ पानी बल सुविधा से उनका है तो बोर करा लू से एक ठन
1: अच्छा
0: और फिर एक ठन उन क्रेडा विभाग बांट ले सौर ऊर्जा बल लगली सुनिष्ठा ने
1: अच्छा सौर
0: दोनों दोनों चीज यूज करूँ वहाँ।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ, बोले पानी से बोल कहीं दिक्कत नहीं
0: हाँ
1: आए।
0: पानी च बल दिक्कत नहीं आए पानी आस गुन तो लगाऊ से पानी रले नहीं रले फिर एबे बरसात बल तो उतरो नहीं हो आगे च
1: हाँ
0: महा
1: उन तो आए
0: जंगल
1: से।
0: झाड़ी बल नहीं आए आगे च महा।
1: हाँ, तो बोले ने 12 महीना कहीं ना कहीं फसल
0: हाँ
1: तुम
0: 12 महीना रुआ है मतलब
1: हाँ।
0: टमाटर सर ले फिर गर्मी सीजन में कहीं बल फिर लगाऊ ची यहाँ
1: अच्छा
0: हम कृषि कर तो लोग हाँ
1: हाँ, ये तो हाँ अच्छा यार। ये संगे संगे बोले ने पशु जानवर हिसाब ने बोले कहीं आसे।
0: पशु बले रोहत आगे पशु मन बले मतलब गाय मन आसोत
1: हाँ
0: तो गाय बले गाय चो दूध बल बिक्री होए
1: हाँ
0: गोबर गोबरी बल होए खुद चकाज बल गोबर काम है
1: हम्म।
0: लेकिन अब गाय मन खिंड कम होला 2 ठन आसोत
1: अच्छा
0: ज्यादा नहीं आत।
1: हाँ
0: गाय मन बले मतलब दूध निछाड़त रहे एक
1: हम्म।
0: ठन पका ले फिर एक ठन छोए तो दूध बल बिक्री होए जगदलपुर बलानू गांव में बल धरोत दूध च बल फायदा होए और
1: अच्छा
0: फिर गोबर
1: हम्म।
0: गोबरी खाद तो लगा वहाँ बेड़ा में अमी तो
1: हाँ
0: गोबर बोले घर से इकनी एबे
1: हम्म।
0: लेकिन थोड़े 2 ठन आस थोड़े कम होए से।
1: कम आसत
0: हाँ कम आसत
1: अच्छा हाँ। आजकल खेती बाड़ी कर तो काजे देखा कल मशीन जैसन की बोलूं से ट्रैक्टर वगैरह मन बोलो तो असन कहीं मशीन आसे।
0: हाँ ट्रैक्टर वाला से हम जो 17 आके ट्रैक्टर धोरुन दी रहोत
1: हाँ
0: तो उन्हीं हिसाब ने ट्रैक्टर चो जरिए घर चो काम चलू आए ट्रैक्टर वाले।
1: अच्छा, बोले ने कहीं जॉब तो उप तो काजे कहीं दिक्कत नहीं आए बोलू बोल
0: हाँ
1: खाद उद बेड़ा तक हमारा काज बोलू।
0: हाँ
1: हाँ, तो दक बोले तुम जो समूह जसन की बना लास उदल लाए ले
0: हाँ
1: कहीं बोले कहीं फर्क असन
0: हाँ
1: लागे सके।
0: समूह में तो फर्क लागे जैसन की आम के का है तो बेड़ा में लगात का जे सब्जी लगात का जे आम के पैसा बल नहीं रुआ है तो समूह ले मैं लोन बल धरुआ है बिहान समूह ले का है तो लोन बल धर उठावा है 10,000 15,000 फिर बैंक कल बल उठावा है तो उनके लगा रुआ होता मैं खेती में
1: अच्छा
0: पाचे होलन फिर उनके किस्त हिसाब देते जावा और
1: अच्छा
0: दूसरा लोग के मांग ले नहीं
1: नहीं
0: देवते
1: तो
0: बे को नहीं
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: समूह में खूब सहायता मिले शाम के बे
1: हाँ
0: समूह थान ले
1: अच्छा
0: समूह में जुड़ लो दिन ले।
1: हाँ, अच्छा बोले ने जितलो बोले महिला समूह आसे बोले कहीं ना कहीं जरूरत पड़ ले समूह ले तुम
0: हाँ
1: उठाए साथ।
0: समूह ले उठवा जरूरत पड़ लो ने।
1: हाँ, बोले ने पूंजी वगैरह चो बोले उतलो ज्यादा तुमके समस्या दिक्कत नहीं आए बोले।
0: हाँ नहीं आए समस्या
1: हाँ, तो आले शकुंतला दी तो इतलो अच्छा बोले तू चो समूह चो गोट आरु तुम चो खुद चो घर चो जन कमानी गोट के सांगली साल खूब खूब जुआर
0: जुआर
1: जुआर
0: दादा
1: जुआर।
0: दादा।

0: जीवना चो सोर। अभी इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे महिला स्व सहायता समूह की शकुंतला ठाकुर से बलबीर सिंह कच्छ की बातचीत। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। रात के 9:30 हो चुके हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए सुनिए समसामयिक विषयों पर आधारित भेंट वार्ताओं का कार्यक्रम भेंट घाट। इसमें सुनिए श्री बलदेव मौर्य से ली गई भेंट वार्ता। आपसे बातें कर रहे हैं बलबीर सिंह कच्छ।
3: रेडियो सुन तो भाई बहन मन, ये समय ने बल्ले ने कई कसन काम मन होते रहे से, जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता मन बोले कई काम कर सो, और बोले जो शिक्षित व्यक्ति मनात उनमन बोले समाज चो उनते बढ़ती काजे बल्ले ने काम कर सो, तो यही सब गोड बात बल्ले ने कहा कि ये समय ने कहीं बोले काम के कर लेने आमचो जीवना ने उन्नति बढ़ती करतो काजे बल्ले नंगत रहे से, जैसे कि आमी बोलों से कि बतर चुकली बल्ले ने आमी कितले बोले कहीं बोले काम कर लू बल्ले हुन दखा नहीं दे बल्कि घाटा हो सके, ये बतर चो बोले गोटोक महत्व है ऐसे जे कि हमें समय बोल सकूँ। ये सब गोड बात हमें करूँ दे श्री बलदेव मौर्य एवं सर्व आदिवासी समाज संभागी स्तर चो संरक्षक हाथ। तो बलदेव मौर्य दादा, सबले पहले तो मैं आज ही चु कार्यक्रम ने तुमके खूबे खूबे जुहार करें से, और जैसन की पूछूक चाहे से कि बल्ले ने आमचो बस्तर संभाग चो उन्ती बाढ़ती काजे बोलो भी तुम्हें सर्व आदिवासी समाज ले जुड़ला सास संरक्षक आस और कई काम बल कर सास, तो मैं बोलते रहे कि ये समय ने बल्ले ने काय काय उन्ती बाढ़ती चो काम के बल्ले ने पूरे नेतो काजे लोक के जना तो काजे बल्ले ने कर सा जाल।
4: सबके सेवा जोहार। पहले मैं ये बने से सेवा जोहार बोलते भी थी, हमन जन्म धरलू से सेवा करतो काजे,
3: सेवा करतो काजे,
4: माय बाप चो सेवा, पीला पिचका चो सेवा, भाईले पीला चो सेवा, समाज चो सेवा, और खेती बाड़ी वाले सेवा, तेवे हम चो समाज बाटले एक सेवा जुहार बोलते भी थी गोटा है नी। तो कहने का मतलब ये है हमन नहीं समाज बाटले पूरा संभाग स्तर में कार्यशाला लगूं से कि हमन मंचो रूढ़ी प्रथा, खासकर हमचो जीवना खावना कंप्लीटली रूढ़ी प्रथा में टिकली से कोनिज बेले कहीं करत रोलो ने हमी पितर डुमा के सुरता करूं से, देवी देवता के सुरता करूं से, हुंचो नहाल और हमचो आगे एक कदम बले बोलू नहीं सकू।
3: हाँ।
4: है कि नहीं?
3: हाँ।
4: चाहे हुन धान बुन तो बेरा हो, चाहे बियासी मार तो बेरा हो,
3: हाँ।
4: ये हमन मन के नी रूढ़ी प्रथा में उनके पूजा पष्टंग हमचो गांव चो माता माउली मन के सुरथा करुण बाती हमें बुझान बाती मन ये सब काम मन के मुरियावा,
3: हाँ।
4: चो आगे कोनी हमचो लोग मन नी मुरियावत,
3: हाँ।
4: तो बात ये आए ये बे बतर तुमन बोललास कि बतर है कि नहीं, हम चो बतर बोलते भी थी हम चो समाज ने हम चो संभाग में बतर चुकली ने फिर सब चुकुआ है नहीं।
3: हाँ।
4: तो ये बात आए कि बतर हिली से कि सेमी कुंडा लगा तो बाड़ी मन में आप लोग जीवना खावना का चाहिए भी लगा लिए, बतर ने लगा ले तो तेबे थुना के मेरे दे,
3: मेरे दे।
4: और बतर ने हम जोन बोले हम चो लोग मन कहीं लगौआ कहीं पौधा उधा बल लगा हुआ हुन पौधा मन पर लगाओ, ये भी शासन बाटले बल्ले फ्री ने बूटा मन दे सोत, अपलान अपलान जसन जसन जगह मन ने आसत होता होता लगाओ।
3: हाँ।
4: तो ये चीज हमने ये सरकार तो करे से, लेकिन हम जो पारंपरिक हिसाब ने आगत ले ये सब चीज मन आसे
3: आसे
4: हाओ। हाँ। जसन की ये गोटुक में गोटुक कहानी असन सांगे से हमन मही हुदल मरका पंडुंग बोलवात गोंडी में हम चो बाटले आमा नवा है नी हुनके जब तक गुटली ना हलोर हम चो लोग मन निखावत हुनचो हुनचो पाटकती एक मतलब आसे हुन गुटली होलो में हुनके चांद दे और खा दे और हुन बीचा के बाट बाट पका दे तेबे नोआ बूटा वकरे दे बुना आम बूटा करे दे हुन मतलब बले आए हाँ हुनचो पहले खातोर हमचो समाज में ये नियम नहीं आए उसनी प्रकार चो एबे खेती बाड़ी चो बोलतो नहीं साहब ने एबे नया नया तरीका मन सरकार बटले बे लीली से और हम चो लोग मन बोले खिंडिक नहीं हम गांव गोड़ान बल जाऊं से दुखू से खिंडिक खेती बाड़ी बोले खिंडिक अलग ही हिसाब ने करसोत जो खिंडिक कमहालों में जुगे फायदा हो
3: वैज्ञानिक बोल सो
4: वैज्ञानिक पद्धति ने बल करसोत और अपलान अपलान बल वाट लगा सो तुन मन सरकार से बोले वाट आसे और हुन मन चो खुद चो बोले वाट
3: आसे
4: ये भी जसन जोंदरा बल लगा सो है नी ये भी लेकिन एक बात आए समय के दखुन दखुन हम चो लोग मन बोले चेंज हो सोत कसन चेंज हो सोत कौन तान कूपे पैसा मिले से ना है नी हुन भी तिक लगाऊ कौन भी तीन मेहनत कम लागे से हुन हिसाब ने आजकल नहीं जोंदरा ने खूब क्या मेहनत कम लागे से धान बाटे बोले खिंडी के कम जासो खिंडी के भी असन असन समय ऐसे कि धान और ये जोंदरा बराबर का इतका ही नहीं हो जोन बोले चीज आसे समस्या उनके मुकाबला कर तो काजे हमके तैयार रहते रहे चाहे वो खेती बाड़ी में हो चाहे और कोई दूसरा समस्या हो हार नहीं मानते रहे के भाई हाँ सबसे बड़ी बात तो ये कि हार नहीं मान तो रहा है कर तो रचिया तेबे हुन जांगर बल अच्छा रहे दे काम धंधा बल अच्छा रहे दे है कि नहीं कसन बल्लो ने काम नहीं कर लो ने जांगर ठीक ही नहीं रहे हुन बीमार पड़े दे
3: पड़े दे
4: फिर अस्पताल जाओ पड़े दे और हम चुगुनिया लग बल जाओ पड़े दे अब हम चो लोग मन ये सर्दी खांसी हो लो ने हम चो लोग मन ये ना सिंगस आए ठीक ही आए उन बात तो हवा पानी मतलब सिंगस ही बल तो बीती है गोट आए अब सरकारी बिताब ने मौसम चेंज होली असन बोलून बोल सो है कि नहीं हम चो गोटने हुनके हम असन बोलूं से सरकारी ही गोटने के असन बोल सो है कि नहीं तो ये लेकिन एक समस्या खूब है ऐसे हम चो लोग मन रोपा बाट तो जा सो उनने फायदा बोले आसे फायदा का आया से कि एक हर रोपा लगा लेन हो ऐसे कितली हो एक बार कर लो नहीं हो ऐसे और बुन लो बीती हो ने दुई बार करूक पड़े से बियासी मारूक पड़े से बुनू पड़े से निंदाई करूक पड़े से खर्चा ज्यादा लागे से लेकिन खर्चा तो लागे से मैं बोले गांव गांव लोग मन के मैं गोटो का सलाह दें से कसन बोलो ने नहीं आजकल महंगाई खूब होली महंगाई इतलो ज्यादा होली से कि नानी किसान मन भूती दे तो काचे भूती दे तो काचे पैसा दे तो काचे बड़ा मुश्किल मोचो गोटो के सलाह है हम चो पुरखा पार्टी ने रूढ़ी प्रथा में चलते रहे गांव गांव ने ये ना गांव चो काम नी सरलो नालो दूसर गांव में जाऊं नहीं
3: नहीं जाऊं
4: इगोटक एक गांव गांव चो हर गांव चो लोग मैंने एक बैठक करा है कि नहीं और निर्धारित करा हम चो गांव ने कितलो भूती हो दे गोटक आदमी पूछे है कि नहीं और सरलोन बोलने फिर दूसर गांव में जहा नागर ने बोल मिले सलाकर ने जहा लेकिन गांव ने कसन बोलने में उनका आज बोलने से हम चो पांचवी शेड्यूल के हिसाब से हम जो बस्तर संभाग ग्राम गणराज्य में ये हुआ है ग्राम गणराज्य हिसाब ने तुमन उनके निर्णय को रुक सका तुम्हें कोई नहीं अलग हम गोटे कर गलत गोट सांगे बोलो नहीं बोला
3: नहीं बोला
4: एक हम जो संविधान ने बोले आसे है कि नहीं ये असन करलास बोले नहीं गरीब दुखी बल संगे जीवा अमीर बीता मनोज जी के संगे जीवा ये गोटक बात के अगर तुमन मचो गोट के मानला साल नहीं मके खूब हरिक लागती कायनु हाँ क्यों है बोले गलो नहीं ए बाबू खूब है भूती पैसा ना कसन करूं है ना नी मिरत ना भूती लोग नी मिरत ये सारे चीज में नहीं बड़ा परेशानी कुनी कुनी मन अब हुनता नहीं कहीं कुनी कहीं करूक नहीं सकते
3: नहीं सकता था
4: कोनी बिताते वे काई करे से चलो बड़ुन बाती आने से है अब हुन बड़ुन बिता नो तो ना नहीं बिता काई करू है
3: काई करू
4: तो हुन कारण ने बने से गांव गांव ने गोटक बैठक करा ये ना हम चो गांव ने इतलो भूती रहो हम चो गांव ने सरलो ने दूसर गांव भी तो जाए साल दूसर गांव ने अगर ने जाओ
3: जाओ
4: हुन चुका छाम चु मना नहीं है असन गोटक गोटक निर्णय धरा ये मचो बाटले एकदम प्रार्थना करूं बाती मैं स्मर मन के सांगे से गांव बिता मन एक ही खिंडी समझो। नहीं ये सही है कि
3: नहीं? नहीं नहीं सही है, है? बिल्कुल सही है।
4: आओ। अच्छा आजकल काम बुता तो ये भी तो भरमार होली से फुर्सत नहीं है,
3: नहीं है सत्य।
4: कौन चिंता कोनी कुता ने बेड़ा के की चिंता से कहीं काई को चिंता से अभी गोटोक फेर और गोटोक चिंता से लिखा ही पढ़ाई चो पीला मन खून मन बोल के तो खूब पढ़े
3: दे
4: नन नन पीला मन असोत उनके पढ़ोक लाए भेजू कसन बल्ले नहीं यही एक शिक्षा जो आए उन आदमी मर तो दम तक के रहुआ है।
3: रहुआ है।
4: और बाकी कोनी नहीं रहत
3: है
4: माए बाप बल नहीं रहत भाई बंद मन ले हम तो सेवा करते रहे माई इमन के सेवा करते रहे ये एक बात और मैं सांगे से सेवा जुहार ये सेवा मतलब का है सेवा जुहार मतलब यही है हम के हम ही मंझपुर में जमनम धरलू से सेवा करते
3: सेवा करते
4: हुनी का छामी सेवा जुहार बोलू से
3: हाँ हाँ
4: हाँ ये चीज के खिंडी समझा मैं आपरू ये कसन कोनी कोनी लोग मन आसन भाई कसन बीती है ना सेवा जुहार सेवा जुहार मतलब यही है हम ही पैदा होलू से सेवा कर
3: सेवा कर
4: गुड़ी पीढ़ी चो सेवा माए बाप
3: चो सेवा
4: ये के मैं इताय सांगे से
3: नहीं नहीं बलदेव दादा ये तो अच्छा गोट के सांगलास मंत्र तुम चो संग गोट बात तो करो आची मंत्र ये मंजी गत खिंडिक में बदलून बाती बोले तुम चो जो खिंडिक पढ़ाई लिखाई चो बोले गोट पूछे दे कि तुम चो जन्म कौन गांव होली कसन पढ़ा लिखा करलास इतलो दिन ले बोले काय काय तुम चो काम बुता रही जाले
4: अच्छा गोट के पूछलास सांग तो काज मके आई कि ने आसू नहीं कर लो सन लागे से हमें मैं मोरट पाल चो आए मोरटपाल चो जिमियार हैं हम चो पुरखा पार्टी ने हुंता ने हम चो कम से कम 100 एकड़ जमीन रली 100 एकड़ जमीन रली हम चो दादी मन चो सांग थो हिसाब ने अंग्रेज बेरा लगान नी दिले खूब दंड देवत मने तो हुन हिसाब ने उदल दाए रानी चो राज रहे मने प्रफुल्ल कुमारी चो राज रहे अकाल पड़ली खूब
3: अच्छा
4: खूब मच बाप दादा चो कहानी सांगिस्ता मैं हम चो बाप मन हम चो दादी मन हम चो बाप मन के नान नान रहोत मने उनकी जीव तो खा तो का अकाल पड़ते को पूरा हम चो बस्तर में पूरा जंगल जंगल गांव बाट बुलुक लाई गेला कुदल रहे पट्ठा परछा के हम चो दादी मन गोटोक और घरे दी उन दिला के संगौरा हो पीला मन के पोसुक न्याय से असन बोलून बाती हुन मन घरे दिला हुन चो बाद में हुन तान ले कितलो दिन चो बाद में कि 6 महीना साल भर चो बाद में फिर वापस सीला तुदल ना इतलो सत विश्वास रे एक दूसरे चुप रे हाले कालिक बल धर्म परान दिन के बल कागज धर्म कहां पर आइस था असनी बोलून बोलून बोलून बोलून हम चो आई दादी मन मरून गेला हम चो बाप मन नान नान रहो हुन मन के सांगला असन असन है बाबू तुम चो जमीन बाड़ी होता आसे पूछला हुन मन पूछ तो के ये मन बले हाले ठीक है दे जान खिंडी बाड़ू था तो ये असन करून बाती हम चो माए बाप मन जीवना करला और हमन खूब गरीब परिस्थिति में जीवना कर लू हमी हमन ये गवर्नमेंट सरकार बाटले हॉस्टल सब्सिडी नहीं होती नहीं हमन मन पढ़ुक लिखुक नहीं सकते हम ही मन लेंगुटी पिंधुन बाती स्कूल जाऊ उदल दाए न चप्पल नहीं न हाफ पेंट नहीं न कहीं नहीं असन करुन करुन मैं गरीबी स्थिति में खिंडी सोकार लेका मन संगे संगे संगे जाऊन जाऊन बाती हुन मन के दोकुन दोकुन मैं पोड़ लाई गेले गांव ने पोड़ बाती मैं बस्तर गेले बस्तर हुन ले पोड़ बाती फिर मैं 8वीं तक पढ़ ले होता हुंचो बाद में मैं आईटीआई गेले आईटीआई में मैं खूब ही अच्छा परसेंटेज में पास होले फिर मके पोड़ फावली मैं फिर पोड़ मुरियाले दंतेवाड़ में पोड़ मुरियाले होता ने हुन ले 11 तक के मैं पढ़ून बाती फिर बाद में मैं फेल होते के बाद में मैं के उदल दा एडवर्टाइजमेंट निकल ली आईटीआई पास बीता मन के बैला डीलान में धरोसो
3: अच्छा
4: तो मैं हुता गेले यार हुनता ने जाहुन बाती मैं इतलो अवनी अपने आप के बराई कर तो बीती गोटा ये आओ तो हम ही हुनता ने खूब मैं 40 साल असन काम कर ले मैं मख पता नहीं चली कि मैं नौकरी कर ले
3: अच्छा।
4: नौकरी करून करून मैं लोग मान सेवा बले करे मैं हुंता ने
3: अच्छा
4: आओ और हुंता ने सेवा करून करून मके मके पहला आदमी आए मैं एनएमडीसी में नेशनल अवार्ड मेरे हुंता ने मिल ली एनएमडीसी बाट ले
3: अच्छा
4: हाओ
3: काय काम काजे
4: गोटो असन काम आए हुन क्रेशर बोलते भी आए मशीन हुन पीसू आए लोहा के हुन खराब होली
3: अच्छा
4: 6-7 महीना खराब होली हुनके मके हुनता जीएम इंजीनियर मन पूछला आले एक कसन कर लो काय होय देहोर सांग तुई नहीं मैं कसम की नानी बीता है बड़े बड़े मन के पूछा नहीं नहीं हुन मन के मक विश्वास नहीं हुए तो मैं हुन मन के सांग ले मके मके के अवलोकन कर रुक दिया मके फिर मैं सांगे दे मके पता चल ली मैं जान ले उनके समझ ले कसन करूं है कसन कर लो बोल हुन के दोबारा रांची नेत्र का चे कम से कम जितलो बोले जिला आस उनके परमिशन धरुक पड़ू है 80 टन है उन
3: अच्छा
4: उन लोहा पिस्तू भी थी हैंडल 80 टन उनके नेतो रेवाट में आज के लिए नहीं आए तो मैं हुनके हुनिता ने हुन मन के एक महीना बनान दी ले अगर हुनके नेतर होला अतर होले कम से कम कई करोड़ रुपीस उनके आना जाना में लागती तो मैं एक महीने के अंदर में हुनके कंप्लीट करूं दी ले हम चो हुनता ने एक जनरल मैनेजर है पीसी गुप्ता बहुत ही अच्छा आदमी है हुन देख लो खूब खुश हो लो मैगजीन इंडिया में बिजनेस इंडिया में मैं चो फ्रंट पेज में मुझे नाम निकल ली कि बोले इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया बोलून बाती

0: तो ये हुन गोटो काम होली असनी कम से कम नहीं मैं असन मचू वाटले इंजीनियरिंग वाट ने करुण करुण सात आठ प्रकार चो काम मन मन के करुण दिले मैं हाउ गोटो कावरे का हुन और गोटो खुन की चलात बीती साफ टाइ हुन के बनात बीती हुन के आनुन बाती बना ला दुई फीट चो हुन चो डायमीटर आए
1: अच्छा
0: उन लोहा चो और कम से कम कुछ नहीं तो पांच छह मीटर लंबा आए हुनके बना तो रहे हुन चो बोले बना तो भी थी मशीन नहीं रहे हुन चो बोले मैं जुगाड़ करूं बाती बना ले लेकिन बना तो काजी बना ले हुन चे नाप तो काजी जीरो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन बोल लो बीती मतलब ये केस कसन के मेजरमेंट कर तो बीती हुन चो काजी गोटक इंस्ट्रूमेंट जरूरत आसे और सिर्फ बना हुआ है तो जापान बना हुआ है।
1: अच्छा
0: तो मैं हुनमन के सांग ले असन असन लागे दे ये तो छह महीना लागे दे असन नहीं हो फिर मैं वाट सांग ले नहीं हो मैं 500 रुपया में हुन इंस्ट्रूमेंट के बना दे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बनाए दे 500 रुपया खर्च करू पड़े दे बस। तो नानी बीती माइक्रोमीटर है उनके मैं काट ले कार्टून बात हूँ फ्रेम बना ले फरान फ्रेम बना बात ही उनके दुई फीट मेजरमेंट कर दो डायमीटर मतलब उनके माइक्रोमीटर बना ले। हाउ हम चो गोटो इंजीनियर रहे तो लोग खुश हो उन बात ही भले अरे उन्होंने बोले मिठाई उठाई ला के सबको बांटने लगा अरे अभी तुम ऐसे ही तुमने हमारा प्रोजेक्ट को इतना कर दिया बोले इतना में कर दिया ऐसे कई प्रकार का मिसाल का जो काम है ना तो मैं बता नहीं सकता। मैं अपने आप को भी मैं ये मालूम नहीं था मैं कैसा वो कर रहा हूं मुझे खुद को भी पता नहीं लगता था ये सारी चीज। और वहां पर मेरे वहां जितने भी चार पांच एमडी सीएमडी रहे बहुत ही अच्छा क्लोज रिलेशन था लोगों को वहां पर भर्ती करने के लिए भी मैं बोलने से हमारे स्थानीय लोगों को मैंने भर्ती कर देते थे। मेरे पास कई बार बोलते थे जब मैं नौकरी करता था भले इंजीनियर लाओ हमारे लोग तो इंजीनियर मुश्किल कोई पढ़ा ही नहीं था।
1: हाँ।
0: मैं जो नौकरी चालू आता बोले साहब हमको हमारे लायक का नौकरी आईटीआई वाले इनको दो। इस तरीके से उन्होंने बहुत हेल्प किया हमारे लोग को उस दरमियान में बहुत से लोगों को नौकरी मिला और इस तरीके से हमारा रहा। कुछ दिन के लिए मैं फॉरेन भी गया युगांडा वहां से फिर आने के बाद मैं फिर धीरे धीरे मेरे को समाज में सबसे ज्यादा झुकाव था। मैं अपना ड्यूटी भी करता था और समाज का भी काम करता था। मैं वहां पर सवेरे उठ के मतलब ड्यूटी जाने पर लेकिन मेरा एक टॉप प्रियोरिटी था फर्स्ट वर्क उसके बाद सोशल वर्क। जब हमको जो जॉब हमको अलॉटमेंट होता था वो पहले कंप्लीट होना है फिर उसके बाद दूसरा काम करना है। इस तरीके से मैं वहां मेरे नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हुए कि मैं अपने आप को कभी विश्वास नहीं करता कि मैं ये सब काम मैं असम कर ले
1: बोले इतलो अच्छा है बोले तुम चो जन बोले ने आगे ले गोटुक सेवा भावना चो मन तुम चो तान आसे और बोले ने बहुत काम जसन के सांगलास मंत्र एवे जैसन कि तुम रिटायर बोलोलास आरु सीधा सीधा समाज संग जुड़लास आरु समाज संगे जुड़तो के बोलुबे हम चो बल्ले ने बस्तर संभाग ने कतली असन शहीद मन बल होला आरु एवे ये शहीद मन चो जोन आय बोलुबे अब चो पीढ़ी बल्ले ना आले आगे चो जोन पीढ़ी मन बल याद कसन बल्ले कहीं ने उतलो लिखा पड़ी नी आए नी दखा दे तुहन कारण ने कहा है कि जानुक नहीं सकसत तो ये आमचो शहीद मंचो जोन बोले कर्म करला जोन बोले काम करला आमचो बस्तर का जे देश का जे तो ये मंचो जोन जानकारी आए बोलोगे समाज ने अमरा तो काम ये बोले तुम चो बाटले कहीं आसन हो से एबे।
0: हाँ हम चो बाटले एबे सर्वाद वे समाज बाटले हमन कमिश्नर साहब को कई बार लिख के दिए धावड़े साहब को और उन्होंने सर्वाधिक समाज का हमारे जो बहुत से स्वतंत्र सेनानी कभी हमारा कम से कम कुछ नहीं तो 1876 से भी आगे का वो चीज कुछ कुछ लोग को मैं भी नाम नहीं जान रहा हूँ क्या कुछ कुछ ऐसे मारिन मन है वो उन लोगों का पूरा निकाले उन्होंने और उन्होंने हमारे साथ में हम लोग भी समाज को ये सारे चीज को बताए कि ये हमारे स्वतंत्र सेनानी है इनको याद करो ये हमारे जो जैसा भी इन्होंने उस दरमियान में कैसी परिस्थिति रही होगी कैसे करके उन्होंने किया हुआ वो सोचने वाली बात है। अभी के हिसाब से मत सोचिए अब उस परिस्थिति में पहुंच के अपने आप को सोचिए अभी जैसे झाड़ा सिराह जी है नहीं
1: है।
0: उनका तो एक पेज में ही कंप्लीट होता है लेकिन उन्होंने कितना सेवा भावना किया वो तो देखो आप ये सोचना है उसमें कैसे रहे होंगे कैसे काम किए होंगे और वो हमारे समाज के लिए अपने आप को बलिदान दे दिए। तो ये है। उसी तरीके से हमारे गुंडा धुर जी है, डेबरी धुर जी है, उसी तरीके से हमारे अभी जैसे अपना इधर भूमकाल चौक बना हुआ है, भूमकाल चौक में हमारे 1910 में जितने भी शहीद हुए हैं 51 आदमी का उनका शिला लेख है। बहुत से लोग को मालूम ही नहीं है कि हमारे खानदान का है बोल के, ये हमारा रिश्ता है बोल के। हम लोग ने कई बार जाके बताया भी नहीं है, ऐसा है वैसा है। उनको इतना हमें इतनी सुनू रोलो ना, हम जो गोटुक बोलू रोलो मैंने असन असन रहे, वो उसके बाद कुछ नहीं जानते हो, उसके बाद कुछ नहीं जानते। तो उस टाइप के लोग भी हैं वहां पर कम से कम। इसीलिए हम लोगों का ये विचार है कि हमने दिया कमिश्नर महोदय के माध्यम से, बस्तर प्राधिकरण के से तरफ से उन्होंने के भी जिस जितने भी हमारे 51 मतलब शहीद हुए हैं और जिस गांव से हैं उस गांव के साला का नाम हो और उस गांव में उसका स्टेच्यू हो। अभी केदार जी भी आए थे अपना भूमकाल चौक का अनावरण करने के लिए, उन्होंने भी इनके सामने भी बोला गया है देखिए क्या होता है अभी आगे। हम फिर भी हम लोग जब तक जिंदा हैं ये सब चीज तो बताना तो छोड़ेंगे नहीं,
1: छोड़ेंगे।
0: हाँ, बताते रहेंगे कि हम लोग कौन, हमारे कौन लोग हैं, ये क्या किए हैं, कैसा किए। हम जहां जहां पर भी जाते हैं हम बताते हैं और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है। देखिए हम देश को सोचने वाले तो हैं, बहुत लोग हैं, हम छोटे स्तर में सोचें वही देश के लिए काम आएगा।
1: हाँ बिल्कुल,
0: है ना। हम उधर सोचने के बाद वहां जा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वहां क्या करेंगे। और हमारे निचले स्तर में हम काम करेंगे तो उसके हिसाब से वो थोड़ा आगे बढ़ेगा।
1: हाँ,
0: यही हमारा विचार है।
1: हाँ,
0: हाँ,
1: हाँ अच्छा। तो बल्ले दादा ये बोल मैं जसन की जानुक चाहे से जसन की असनी बुद्धिजीवी लोग पूरे उन बाती समाज के उठा तो काजे जसन की भी वन संसाधन बोले आमचो बस्तर न्यासे उनचो बोले सदी उपयोग करतोर खूबी जरूरी आए आमचो जीवना काजे। तो ये चो बोले कहीं काम बोले ने तुम चो वाटले वैसे
0: अभी ये दे आजी हमार द्वारे तुम्हार द्वार पौधा रोपण के ऊपर में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चल रहा है।
1: हाँ,
0: उसमें मैं पूछा ये कौन सा झाड़ है, कहाँ से आया, नहीं आंध्र प्रदेश से आया। अरे यार बस्तर में इतना सारा जंगल है कि बस्तर में क्या पेड़ नहीं है क्या, ये क्या है, ये गुलमोहरी क्या छाया पहुंचाएगा, ये क्या है, ये किसके मतलब। अरे आपको मैं मेरे से आप पूछते तो मैं बताता, सबसे अच्छा ठंडक पहुंचाने वाला कुमी का रुख है।
1: कुमी है,
0: हर समय हरा भरा रहता है।
1: हाँ,
0: उसको प्लांटेशन लगाओ और दिखने में उसका फल भी गोल गोल रहता है।
1: हाँ,
0: देखने में है तो उसका भी दवाई बनता है।
1: हाँ,
0: उसको उसका बनता है दवा भी बनता है।
1: हाँ,
0: उसी हिसाब से आप चार को लगाओ, टेमरू को लगाओ,
1: टेमरू
0: है कि नहीं।
1: हाँ,
0: और उसके बाद मैं यार दो चार और झाड़ बताया जो ज्यादा मतलब। हाँ, उसके बाद हो गया अपना क्या नाम का ये भेलवा हो गया,
1: भेलवा
0: वो पत्ता उतना झड़ता नहीं है वो।
1: हाँ,
0: वैसा वाला झाड़ को लगाओ जो पत्ता नहीं झड़ता है, जिसको फायदा भी हो।
1: हाँ,
0: तो ये कहने का मतलब ये अब जड़ी बूटी की बात है। बात यह है हमारे यहाँ जिस तरीके से जड़ी बूटियां तो बहुत सारे है ही है और हमारे यहाँ कॉमन यूज है भेलवा, है कि नहीं।
1: आया
0: कॉमन इतना हमारा, जैसे आदमी कुछ क्या लग गया है बोले डिटल लगाओ,
1: डिटल
0: ऐसा बोलते हैं नहीं। वही हिसाब से हमारे गांव वाले भेलवा जो है, कहां कट गया भेलवा लगाओ, कहीं दर्द हो गया भेलवा टीको, है नहीं। कहा वरान दिया ऐसा टाइप जो बात मना से।
1: हाँ,
0: तो वो वैसे चीज मन को हम लोग हमारे रूढ़ी प्रथाओं में भी ये जो चैलेंज है। और जड़ी बूटी का हिसाब से अभी देखिए जिस तरीके से हम लोग भी थोड़ा पढ़े लिखे होने के बाद भी बनने से सावन के महीने में जितने भी जड़ी बूटियां हैं बोलते हैं इस।
1: हाँ,
0: सावन के महीने में उगते हैं।
1: हाँ, हाँ,
0: और जितना भी प्रयोग इसी सावन के महीने में करते हैं।
1: हाँ, हाँ,
0: हमारे रूढ़ी प्रथा के हिसाब से भी थोड़ा गुनिया वनिया सीखने वाले जो होता है।
1: हाँ, हाँ,
0: देखिए हर चीज का दो मतलब है, गुनिया अच्छा भी है और गुनिया बुरा भी है, लेकिन हम लोग गुनिया को अच्छे ही समझ के उनके पास जाते हैं।
1: हाँ,
0: उन लोग भी अपना परीक्षा इसी आने वाले अमुस तिवार में इनका एग्जाम होता है कहते हैं।
1: हाँ,
0: हमारे सब देखे तो नहीं है।
1: हाँ,
0: ऐसा सुने हैं,
1: सुने
0: एग्जाम होता है।
1: हाँ,
0: तो ये सावन का महीना हमारे लोगों के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है।
1: हाँ,
0: तो अब यही यही चीज हरा भरा का टाइम है।
1: हाँ,
0: अब इसको इन्वायरमेंट डे भी आएगा अभी है नहीं
1: हाँ।
0: अभी इन्वायरमेंट डे सरकारी हिसाब से इन्वायरमेंट डे भी आएगा
1: पर्यावरण संरक्षण
0: तो ये सारे चीज जितने भी चीज है हमारी रूढ़ी प्रथा से कन्वर्ट करके क्या हुआ है हम लोग जो उस चीज को गहन ध्यान करेगा ना तो तब समझ में आएगा कि हाँ ये हमारा चीज है इसको ऐसा बनाया गया इसको ऐसा बना गया हमारा ही चीज है लेकिन अभी तक उसको ऐसा समझने के लिए अच्छा कार्यशाला चाहिए अच्छा कार्यशाला वो भी अदना आदमी कैसा होना चाहिए उसको दोनों को हम लोग को क्या दोनों को अभी इसीलिए सरकार अभी इसीलिए हमारे फिफ्थ शेड्यूल में है स्थानीय भाषा सीखा बोली सिखाना है बहुत से दवा दारू को हिंदी हिसाब ने नहीं जानते हैं हल्बी हिसाब ने गोड़ी हिसाब में जानेंगे तो उसको अपने जीवना जीवन के लिए दुख दर्द में शामिल करेंगे इस भाषा में बोल के इस तरह से है बोल के शासन भी उसको बढ़ावा दे रही है तो ये है जड़ी बूटी का अभी हमारे जानवर का भी अभी महीना आ रहा है उनको भी जड़ी बूटी खिलाने का अभी एक दो हफ्ता में आएगा ही है नहीं बहुत सारे जो चीजेस हैं तो जड़ी बूटी का कहने का मतलब है ना हमारे में ना बहुत ही है जड़ी बूटी का अब सबसे ज्यादा उन लोग को सीधा कुछ भी हो गया उनका जड़ी बूटी में ध्यान जाता है और गुनिया के पास ध्यान जाता है और हॉस्पिटल का ध्यान जाता नहीं है चाहे आप कितना भी कुछ करिए ये आप ठीक है डेवलप होना है डेवलप होना एक बात अलग है क्योंकि आज की परिस्थिति में ना हम लोग हॉस्पिटल में जाना है उनके माइंड में सीधा सीधा यही माइंड में घुसा हुआ है पैसा खर्च होगा है नहीं लेकिन सरकार बोल रही है निःशुल्क निःशुल्क बोलने से अब भाई इनको क्या है निःशुल्क देने के बाद इनको तो ये वहां हॉस्पिटल में नहीं कोई अनजान आदमी या गांव का आदमी हॉस्पिटल में जाता है 10 बार अंदर बाहर देखेगा मैं जाऊंगा तो मेरे डॉक्टर साहब क्या बोलेगा और क्या बोलूंगा कैसा अचानक आदमी जो जाएगा इसी स्थिति में हमारा कलेक्टर कार्यालय में भी है माहौल नहीं है ना वो माहौल हमारे में जनसंपर्क माहौल नहीं है अपने में सीमित रहते हैं खाओ कमाओ
1: कमाओ
0: है नहीं अब ये सारे चीज अब धीरे धीरे जो नए जनरेशन उनके बीच में जो पैदा होंगे पढ़ेंगे लिखेंगे वो उनके खत्म होते जाएंगे तब फिर वो एक प्रकार का है कि मतलब हमारा रूढ़ी प्रथा खत्म करने वाली बात है सीधा सीधा वो ऑटोमेटिकली भूल जाएगा वो उसे याद नहीं रहेगा आपको बोलते जरूर है कि बोले भाई अपनों की याद रखना चाहिए क्या रखेगा जब ध्यान उस तरीके से नहीं रहेगा तो कहां से याद
1: कहां से याद रहेगा
0: तो ये बात है
1: तो अले बलदेव मौर्य दादा दखा आज तुम संगीत लो अच्छा आमच पूरा संस्कृति जो जो गोड बात आए आमच शहीद वीर मंच बोले गोड बात होली अरे तुम चो संघर्ष जीवना चो गोट के बोले सांगला तो असन आए ये गोट मन के आम चो एप चो नवा पीढ़ी सुनला जाले जानला जाले उन मन की खेनिक बूझे दे आप लोग खुद चो बाढ़ते संग संगे देश चो बाढ़ते का जोल पूरे है दल जुआर सेवा जुआर
0: सेवा जुआर
2: भेंटघाट कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्री बलदेव मौर्य से ली गई भेंट वार्ता भेंट करता थे बलबीर सिंह कच्छ ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया रात के 10 बज चुके हैं
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
2: अब प्रस्तुत है बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम कोदो माली इसमें लीजिए सुनिए मणिराम मंडावी और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत

0: गली में डोहांदे
1: गली
0: रोए
1: में डोहांदे
0: रोए दुलसा गोरगा
1: गुरगा
0: डोंडा
1: डोंडा
0: पलंग
1: पलंग
0: गोरगा डोंडा पलंग
1: रे
0: दुलसा रे रे लोयो रे रे रे
1: रे

0: लोकगीतों के कार्यक्रम कोदोमाली में अभी आप सुन रहे थे मणिराम मंडावी और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में होंगे समाचार क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। रात के 11:10 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब समाप्त होता है। कल सुबह 5:53 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।